FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 जून सन 2026। अभी प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब प्रारंभ होती है।

ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचारों को हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोद्योमिर जेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

0: गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित कर रहे थे हिंदी में समाचार। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए पेश है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। शुरुआत इस देशवंदना से करेंगे।

0: भीमसेन जोशी के गाए इस कृष्ण भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना यहीं संपन्न हुआ। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं खेती की बात। आज का विषय है धान के नर्सरी प्रबंधन और उन्नत तकनीक। वाचन स्वर चित्रलेखा तिवारी का है।
1: किसान संगी हुआ राम राम, जय जोहार। किसान भाई बहनी वाला राम राम, जय जोहार।

जेला रोपा कहिथन, नर्सरी सही तरीका ले तैयार होही त मुख्य खेत में रोपाई के बाद पौधा जल्दी बाढ़ही और उपज घलो बाढ़ही। त ए बात किसान भाई बहनी मन ला सबले पहली जानना जरूरी है कि अच्छा गुणवत्ता वाले बीज के चयन करना चाहिए। जहाँ भी आप बीज ले जाता बाजार मा मंडी मा, तो सबसे पहली आप अपन भुइयां के अनुसार जो जमीन है माटी परीक्षण के बाद आपला पता चल जाही कि एमा कैसन हा बीज डालना है, तो वो बीज के आप चयन कराओ। और याद रखा बीज हा प्रमाणित बीज होना चाहिए। ओकर से का होते वो बीज के उपयोग करे ले रोग और कीड़ा के समस्या कम होते। नर्सरी बोवाई के पहली बीज ला नमक मा घोल विधि ले छाट सका था, नमक पानी में डारिया तो जतका बदरा मतलब जो बीज उपजाऊ नहीं है और ऊपर आ जाही, और जो ऊपर ऊपर तैरात रही बीज हर ओला अलग कर देवा, और जो डूबे हुए स्वस्थ बीज रही ओकर आप उपयोग करा। ये प्रबंधन आपला बहुत अधिक लाभदायक फसल प्राप्त करवाही। एकर बाद बीज उपचार कर लेवा, तो बीज उपचार जरूर कराओ, काबर के फफूंदनाशी या जैविक उपचार ले बीज जनित रोग जो होते वह कम होते। ओकर बाद पारी आते नर्सरी के जमीन तैयारी कैसे करना है। तो नर्सरी पर खेत ला समतल और पानी निकासी वाला होना चाहिए। प्रति एकड़ मुख्य खेत पर लगभग 20 से 25 किलो बीज पर्याप्त होते। हालांकि किस्म के अनुसार बदलत रहते, मात्रा कम ज्यादा होत रहते। और नर्सरी में सरे गोबर के खाद या कंपोस्ट मिलावा जेहा जरूरी है, और जरूरत के अनुसार नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास ये सब भी संतुलित मात्रा में उपयोग करा। आप बुवाई के बाद हल्का पानी देवा और खेत के जो जमीन है वह नमी बने रहा एकर चेत करा। ओकर बाद पारी आते उन्नत तकनीक के बारे में, तो कुछ उन्नत तकनीक के जानकारी दे दी। आजकल धान उत्पादन बढ़ाए बर कई ठन उन्नत तकनीक अपनाए जाते, जेमा पहली तकनीक है मैट नर्सरी। एमा पौधा चटाई जैसन तैयार होते, अब मशीन ले रोपाई करे वाले किसान मन बर ये तकनीक हर बहुत उपयोगी हावय। दूसर तकनीक होते धान के सीधा बुआई। जी हाँ, पानी के कमी होते उतका किसान सीधा बुआई तकनीक अपना के श्रम और पानी दोनों के बचत कर सकते। मतलब

0: मेहनत भी कम लगते और पानी भी कम होते। तीसर तकनीक होते SRI पद्धति। ए पद्धति में कम उम्र के जो पौधा छोटे छोटे पौधा होते और कम बीज और उचित दूरी में रोपाई करके अधिक उत्पाद आप मन प्राप्त कर सका था। और नर्सरी में कीड़ा और रोग प्रबंधन पर का सावधानी रखना है इहू चेत करके सुनाओ। नर्सरी के नियमित निरीक्षण जरूरी है। पत्ती में झुलसा झोंका रोग या कीड़ा के लक्षण दिखाए तो कृषि विशेषज्ञ के सलाह के अनुसार उमा नियंत्रण जरूर कराओ और जरूरत से ज्यादा पानी भराव ले बचाओ और खरपतवार के समय में नियंत्रण करो। का होते ना आजकल सबके खेत में बोर है तो गलगल गलगल पानी ला डाल देते हैं या पानी ला चालू करके भुला जाते हैं तो ये सबसे आप ला सावधानी रखना है। एकर से पानी के बर्बादी भी कम होगी और आपके फसल भी अच्छा होगी। और किसान भाई बहनी मन बार आखिरी में हम संदेश देना चाहबो कि स्वस्थ नर्सरी ही सफल धान उत्पादन के आधार है। प्रमाणित बीज बीज उपचार संतुलित खातु प्रबंधन और उन्नत तकनीक के उपयोग ले उत्पादन और आय में बढ़ोतरी हो सकत है। संगवारी हुआ आज के खेती के बात में अटके कल फिर नया विषय के संग उपस्थित होबो। तब तक के लिए राम राम जय जोहार।
1: धान के नर्सरी प्रबंधन और उन्नत तकनीक विषय पर आप सुन रहे थे खेती की बात। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। मुख्य गायक है श्रीकांत पारगांवकर। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का है।

वर के रूप में श्री राम जिस घोड़े पर सवार हैं, वो मानो कामदेव का सुंदर रूप धारी है, जो अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और मस्त चाल से सबको मोहित कर रहा है। भगवान शंकर श्री राम के इस मनोहारी रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र प्यारे लगने लगे। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु श्री राम के इस रूप पर मुग्ध हैं, किंतु ब्रह्मा को ये छवि देख पाने के लिए अपने मात्र 8 नेत्र पर्याप्त प्रतीत नहीं होते। इधर बारात के स्वागत को आतुर नगरवासियों में आनंद की लहर दौड़ गई है। चंद्रमुखी तथा हरिण की सी आंखों वाली स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर स्वागत गान गा रही हैं। इस अवसर की शोभा देखने के लिए इंद्राणी, शची, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती तथा अन्य देवांगनाएं आम स्त्रियों का रूप धारण कर महिलाओं के समूह में आ मिली हैं। कौन भला किसे जाने और पहचाने, महिला समुदाय के कमल जैसे

कौन भला किसे जाने और पहचाने, महिला समुदाय के कमल जैसे नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ रहे हैं और होठों पर मुखरित हो रहा है परिछन गीत।

0: रामचरित मानस गान अभी आप सुन रहे थे। मुख्य गायक थे श्रीकांत पारगंवकर और साथी। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं चिंतन। आज का विषय है स्वच्छता की अवहेलना ना करें। आलेख डॉक्टर NP नामदेव का है।
1: मानव को भले ही सर्वोच्च सभ्य प्राणी मान लिया जाए, परंतु उससे अस्वच्छता अपनाने की चूक हो ही जाती है। जनसंख्या वृद्धि ने तो इस समस्या को और विकराल बना दिया है। अंततः उसे इसका दंड सहना पड़ता है। स्वच्छता की अवहेलना रोगों को आमंत्रित करती है। हम कभी कभी प्यास की तीव्रता के वशीभूत होकर अस्वच्छ जल ग्रहण कर लेते हैं। निरंतर निर्मल जल के अभाव से आंत्रशूथ, पेचिस, डायरिया, ज्वाइंडिस, हैजा जैसे भयंकर रोग संक्रमित होते हैं। जल को स्वच्छ रखना और पीना जीवनदायिनी औषधि है, क्योंकि जल ही जीवन है। शारीरिक स्वच्छता आरोग्यता की महत्वपूर्ण घटक है। शारीरिक स्वच्छता की अवहेलना से दाद, खाज, खुजली, आलसी, एक्जिमा आदि अनेक चर्म रोग हो जाते हैं। इनसे मुक्ति पाने का एक ही सुगम उपाय है, नित्य प्रति स्नान करना। कई लोग घंटों बाथरूम में नहाते रहते हैं, फिर भी सर्वांग स्नान नहीं करते, अथवा चंद मिनटों में स्नान की रस्म पूरी कर लौट आते हैं। ये अनुपयुक्त है। मौसम के

0: अनुसार शीत ऋतु में हल्के गर्म जल से और शेष अन्य ऋतुओं में ठंडे जल से स्नान करना चाहिए। ग्रामीण लोग प्रायः प्रातःकाल में नदी अथवा सरोवरों में ठंडे जल से ही स्नान करते हैं, क्योंकि इस वक्त जलाशयों में जल साधारण गर्म रहता है। सामान्यतः जिन पोखरों सरोवरों में स्नान किया जाता है, वहां लोग दातौन करके कपड़ों की धुलाई करके गंदगी फैलाते हैं। गांवों के मवेशियों को सफाई के लिए वहां ले जाना तो और भी अधिक जल को प्रदूषित करना है। पशुओं के स्नान के लिए अन्य जलाशयों में व्यवस्था होनी चाहिए। हमें स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। निवास स्थान को स्वच्छ रखना उत्तम स्वास्थ्य की परम आवश्यक मांग है। आवासीय भूखंड सदैव स्वच्छ होना चाहिए, चाहे झोपड़ी हो अथवा 5-स्टार होटल। अगर स्वच्छता नहीं है तो वो जगह आवास योग्य नहीं है। क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं होता कि हम स्वच्छता का ध्यान रखें? पान खाकर यत्र तत्र थूके नहीं, जगह गीली न करें, स्वच्छ हवादार प्रकाशवान और सुगंधि युक्त वातावरण का सृजन करें ताकि मन निर्मल रहे, पवित्र विचारों का संचरण हो, सद्भावना का विकास हो। सामान्यतया हम अपने गृहों की स्वच्छता पर तो ध्यान देते हैं, परंतु सार्वजनिक अथवा शासकीय भवनों की स्वच्छता की अवहेलना करते हैं। इससे सीढ़ियों के आसपास कमरों के कोनों में या खुली छत पर गंदगी फैलती जाती है। पड़ोस के ही चौगड्ढे में कूड़े कचरे फेंक दिए जाते हैं, इससे वायु प्रदूषित हो जाती है और विषाक्त वायु वातावरण में फैल जाती है। अंतत्वगत्वा दूषित वायु सेवन से हम ही संतप्त होते जाते हैं। कचरे को फेंकने के लिए एक निर्धारित पर्याप्त जगह या कंटेनर रखे जाएं, जिसकी नियमित सफाई स्थानीय स्वशासी संस्थाएं करवाएं। यदि हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो आरोग्य रहने का मूल मंत्र अपनाएं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्याम मूल मंत्रयम।
1: स्वच्छता की अवहेलना ना करें, इस विषय पर आप सुन रहे थे चिंतन। आलेख डॉक्टर एनपी नामदेव का था। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:50 हुए हैं। आज के शेष और मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी हम देंगे कार्यक्रम विवरण के माध्यम से।

दोपहर 4 बजे संदेश टू सोल्जर्स, शाम 7:10 पर केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला जिसका विषय होगा विरासत, आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 8:15 पर 19 शासकीय भर्ती परीक्षाएं पास कर अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाली चारू पांडे से विशेष भेंटवार्ता हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। हर रोज की तरह सुबह 7:05 पर हम पेश करेंगे कार्यक्रम आज सुबह। सदाबहार नगमों को सुनिएगा सुबह 7:30 पर। माटी के स्वर कार्यक्रम हम पेश करेंगे सुबह 8:30 पर। सुबह 10 बजे आनंद लीजिएगा आपकी पसंद कार्यक्रम का। सुबह 10:30 पर हम तय करेंगे सफर नए तराने कार्यक्रम का। और हर दिन की तरह सुबह 11 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

संध्या 5 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। संध्या 5:05 पर किसान वाणी में आज के बात में चर्चा का विषय होगा सोयाबीन की वैज्ञानिक खेती और फोन इन कार्यक्रम में खरीफ मौसम में धान बीज उत्पादन तकनीक विषय पर श्रोताओं द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देंगे डॉक्टर तरुण कुर्रे। कार्यक्रम के संचालक होंगे पंचू भैया और प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। महिला सभा की ओर हम बढ़ेंगे। संध्या 5:35 पर सामायिक चर्चा का विषय होगा लंबे दिन की रोचक कहानी। क्रम होगा लोक संस्कृति का। प्रस्तुति होगी मोनाली ठाकरे की। शाम 6:20 पर एक्सटेंशन रिफॉर्म्स आत्मा के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय परिसर बिलासपुर में आयोजित जैविक कृषि कार्यशाला की रेडियो रिपोर्ट सुनेगा। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और संपादक होंगे रुपेश कवर। प्रस्तुति होगी नेमी चंद साहू की और कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन करेंगी। शाम 7 बजे आनंद लीजिएगा ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का। शाम 7:45 पर समय होगा चित्रपट संगीत का। रात्रि 8 बजे सुनिएगा श्रोताओं द्वारा भेजे गए पत्रों के जवाब कार्यक्रम चिट्ठी मिली में। शास्त्रीय संगीत की महफिल सजेगी रात्रि 8:30 पर। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत में और हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: विधास्यति। तृतीयदिवसे राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह पहाड़पुरे कौशलकेन्द्रस्य निरीक्षणं करिष्यति, सहैव रायरंगपुरे जनसभां च संबोधयिष्यति। चतुर्थदिवसे सात जून मासस्य एकविंशति दिनांके जबलपुरे अंताराष्ट्रीय योग दिवसोत्सवे भागं ग्रहीष्यति, सहैव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहे अध्यक्षतां विधास्यति। यात्रायाः चरमे सोपाने सा ख्यूनो राष्ट्रीय उद्याने सहरिया जनजातीय सदस्यैः चीता अन्वेषकैः च सह संवादं विधास्यति। संयुक्त राष्ट्र संघस्य खाद्य संस्थाभ्याम खाद्य एवं कृषि संघटनेन अथ विश्व खाद्य कार्यक्रमेण च विज्ञापितं यत् आगामीषु मासेषु युद्ध जलवायु परिवर्तन धन न्यूनता कारणात् विश्वस्य त्रयोदश प्रमुख क्षेत्रेषु बुभुक्षा संकटं अधिकं गभीरं भविष्यति। संयुक्त प्रतिवेदनस्य अनुसारं सम्प्रति जगति 66-200 कोटि जनाः तीव्र खाद्य असुरक्षया पीडिताः सन्ति। अस्यां सूच्यां सुडान, दक्षिण सुडान, यमन, फिलिस्तीन, नाइजीरिया, सोमालिया चेत्यादयः देशाः अत्यधिक संकटग्रस्ताः सन्ति। प्रतिवेदने चिंता प्रदर्शिता यत् 20-22 तः परं मानवीय सहायतायै प्राप्यमाणं धनं 60% न्यूनं जातम्। WFF संस्थायाः कार्यवाहक निदेशकः कार्ल स्काउ महोदयः अवोचत् यत् यदि शीघ्रं किमपि कार्यान्वयनं न क्रियते तर्हि कोटिशः जनाः दुर्भिक्षस्य गर्ते पतिष्यन्ति। हॉकी क्रीडायां नीदरलैंड देशस्य राइडरहेम नगरे प्रचल्यमाणायाः FIH प्रो लीग स्पर्धा मालिकायाः द्वन्द्वे भारतीय पुरुष हॉकी दलेन जर्मनी दलं 3-1 इत्यांकांतरालेन पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
2: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। इसमें ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने, डीप फेक और बच्चों के शोषण जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और

प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिसिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मैच में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। ये मनप्रीत सिंह का 413वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। उन्होंने भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का कीर्तिमान बनाया। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रम के लिए देश भर में 1,70,000 से अधिक आयोजकों ने पंजीकरण कराया है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि योग संगम स्वास्थ्य के माध्यम से एकता का उत्सव है। इसके तहत देश भर में हजारों स्थानों पर लोग एक साथ योग करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समाचारों को हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम आज सुबह की ओर।

0: आज सुबह।
1: कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का हृदय से अभिनंदन। कीजिए स्वीकार अपनी रेडियो साथी अपेक्षा शर्मा का स्नेहिल नमस्कार।

आज जब भोर ने धीरे धीरे रात की चादर समेटी, तो आसमान पर हल्के बादलों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। ऐसा लगा मानो प्रकृति स्वयं आने वाले मानसून की आहट सुन रही हो। सुबह की ठंडी हवा में एक अलग सी ताजगी घुली हुई थी। पेड़ों की डालियों पर बैठी चिड़िया अपने मधुर कलरव से वातावरण को संगीत से भर रही थी और हर तरफ जीवन की नई लय सुनाई दे रही थी। श्रोताओं, सड़कों पर अब रौनक बढ़ने लगी है। कोई तेज कदमों से मॉर्निंग वॉक पर निकला है, तो कोई पार्क में योग और व्यायाम के जरिए दिन की शुरुआत कर रहा है। बुजुर्गों की हंसी मजाक भरी बातचीत, युवाओं का उत्साह और बच्चों की चंचलता सुबह के इस नज़ारे को और भी जीवंत बना रही है। गर्मी की लंबी

छुट्टियों के बाद अब स्कूलों की घंटियां फिर से गूंजने लगी हैं। रंग बिरंगे बैग टांगे, साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहने, बच्चे अपने सपनों को साथ लेकर स्कूल की ओर बढ़ रहे हैं। श्रोताओं, इन दिनों मौसम भी जैसे करवट लेने को तैयार है। कभी हल्की ठंडी हवा का झोंका, तो कभी आसमान में उमड़ते घुमड़ते बादल ये संकेत दे रहे हैं कि मानसून अब दूर नहीं। धरती भी मानो पहली बारिश की बूंद का इंतजार कर रही है। पेड़ पौधे, खेत खलिहान और हम सभी बारिश की उस सौंधी खुशबू को महसूस करने के लिए उत्सुक हैं, जो अपने साथ लेकर आने वाला है ढेर सारी खुशहाली और हरियाली। तो श्रोताओं, इस खूबसूरत सुबह का आनंद लीजिए, प्रकृति के इन मनमोहक रंगों को महसूस कीजिए और दिन की शुरुआत कीजिए सकारात्मक विचारों के साथ।

0: बाबूजी के गुजर जाने के बाद ना बेटा एकदम अकेला पड़ गए थे, कभी कर्जा कभी ब्याज। फिर एको दिन लगा कि कोई अपना भी साथे खड़ा बा,
1: मुसीबत के टाइम भी,
2: बुआई और कटाई के टाइम भी,
0: बीच से लेके बाजार तक, बस ई साथ ऐसे ही निभाते रहिए।
3: 12 साल किसान कल्याण के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की किसान केंद्रित नीतियों ने कृषि क्षेत्र में रचा नया इतिहास। 4.3 लाख करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का फसल बीमा भुगतान, 8 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड और एमएसपी पर 26 लाख करोड़ रुपए से अधिक की फसल खरीद। ये उपलब्धियां किसानों के कल्याण और कृषि विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। SECL द्वारा जन प्रसार में जारी।
5: लीजिए पेश है आज का ट्रैफिक अपडेट।
6: नमस्कार श्रोता साथियों, अपने जिले की आज की यातायात व्यवस्था अर्थात ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर के साथ प्रतिदिन की तरह मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर नगर निगम अर्थात शहरी क्षेत्र की सभी सड़कों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी सर्वत्र सभी प्रकार के वाहनों का सुगम आवागमन बना हुआ है, जिससे बिलासपुर जिले का सभी स्थानों से यातायात संपर्क बना है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, शहर में छोटी से लेकर मध्यम दूरी की यात्रा के लिए डीजल, पेट्रोल या इलेक्ट्रॉनिक ऑटो एक सरल, सहज और उत्तम साधन है। यह लोगों की पहली पसंद भी है, किंतु विडंबना इस बात की है कि कुछ मात्र ऑटो चालकों को छोड़कर सभी हमारे स्मार्ट सिटी बिलासपुर की सुंदरता और व्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं। वस्तुतः इस समय शहर की हर सड़कों में सर्वाधिक नजर आने वाले वाहनों में ऑटो प्रमुख है। प्रायः सभी ऑटो चालकों के द्वारा शहर के सभी चौक चौराहों में अव्यवस्थित ऑटो खड़ी कर सुगम यातायात व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। इन चौक चौराहों में इन ऑटो के कारण कई बार जाम की स्थिति बन जाती है, लोग परेशान हो रहे हैं। इन ऑटो के चलते सड़क दुर्घटना की स्थिति निर्मित हो जाती है या शासकीय कार्य भी प्रभावित होते हैं। आम लोगों में ऑटो चालकों की इस क्रियाकलाप से असंतोष है। इन हालातों को देखते हुए बिलासपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं उप पुलिस महानिरीक्षक श्री रजनेश सिंह जी के द्वारा ऐसे ऑटो चालकों पर नियमित रूप से कड़ी कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है, जिस पर हाल ही में लगभग 1000 ऑटो चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार कार्रवाई कर उन्हें माननीय न्यायालय भेजा गया है। पुनः सभी प्रकार

0: के ऑटो चालकों को इस संदेश के माध्यम से सतर्क किया जाता है, अन्यथा विधि संगत कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। अपने ऑटो में आगे पीछे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तत्काल लगवाएं तथा सभी दस्तावेज जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिट, बीमा, प्रदूषण पूर्ण कर रखें। वर्दी धारण कर ही वाहन चलाएं। चालक के अगल बगल सवारी न बैठाएं, न ही ओवर सीट चलें, न सकर वाहन भूल कर न चलाएं और वाहन चलाते मोबाइल का प्रयोग न करें। किसी भी चौक में अव्यवस्थित वाहन खड़ी ना करें। नो पार्किंग में भी भूलकर वाहन ना खड़े करें। सवारियों से दुर्व्यवहार ना करें या किसी का सामान ऑटो में छूट जाए तो तत्काल नजदीकी थाने में जमा करें और हमेशा यातायात नियमों का 100% पालन भी करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: श्रोताओं, जब भी हम चाय की चुस्की लेते हैं, नाश्ता करते हैं या 2 वक्त का भोजन करते हैं, तो ये सोचते हैं कि ये भोजन अनाज हम तक कैसे पहुंचता है और हमारी थाली तक पहुंचने के लिए इसने कितना लंबा सफ़र तय किया होगा। शायद नहीं, और सच कहें तो हम में से अधिकांश लोग इसके बारे में सोचते भी नहीं होंगे। हमें तो बस बाजार में सब्जियां दिखती हैं, राशन की दुकान पर अनाज मिल जाता है और रसोई में खाना तैयार हो जाता है। लेकिन इस भोजन की कहानी हमारी थाली तक पहुंचने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। जरा सोचिए, जो गेहूं आज आपकी रोटी बना है, वो कई महीने पहले एक छोटे से बीज के रूप में खेत में बोया गया था। उस बीज ने मिट्टी, पानी, धूप और किसान की मेहनत का साथ पाकर फसल का रूप लिया। फिर कटाई हुई, मंडी पहुंचा, वहां से गोदाम, दुकान और फिर हमारे घरों तक। हमारी थाली में परोसा गया हर अन्न का दाना और फल सब्जियां अपने साथ एक लंबी यात्रा लेकर आता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस भोजन को तैयार होने में महीनों लग जाते हैं, उसे बर्बाद करने में हम कुछ मिनट भी नहीं लगाते। कभी प्लेट में ज़रूरत से ज़्यादा खाना ले लेते हैं तो कभी फ्रिज में रखी सब्जियां पड़े पड़े ही खराब हो जाती हैं। कभी किसी भव्य आयोजन में इतना सारा भोजन बच जाता है कि उसे कचरे में फेंकना पड़ जाता है। हम शायद भूल जाते हैं कि जो भोजन हम फेंक रहे हैं, उसके साथ सिर्फ खाना नहीं, बल्कि उस किसान की मेहनत, खेत का पानी, बिजली, ईंधन और प्रकृति के बहुमूल्य संसाधन भी व्यर्थ हो जाते हैं। जब हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अन्न का अपमान मत करो, तो उसके पीछे सिर्फ धार्मिक भावना नहीं थी, बल्कि जीवन का गहरा अनुभव था। वो जानते थे कि अन्न उगाना कितना कठिन काम है। श्रोताओं, भोजन की बर्बादी को रोकने और अन्न के महत्व को समझाने के उद्देश्य से हम हर साल 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, जिसे सतत खान पान दिवस कहते हैं, मना रहे हैं। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी का मतलब है ऐसा खान पान जो हमारी सेहत के लिए अच्छा हो, किसानों के लिए लाभकारी हो और पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचाए। यानी हम जो खा रहे हैं वो सिर्फ आज की ज़रूरत पूरी ना करे, बल्कि आने वाले समय में भी धरती पर भोजन, पानी और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता बनी रहे। श्रोताओं, दुनिया भर में लाखों लोग हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है, और दूसरी तरफ हर दिन बड़ी मात्रा में भोजन बर्बाद भी हो रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा खाना थाली में लेने की वजह से हम उसे नाली या कूड़ेदान में फेंक देते हैं। हम सिर्फ भोजन नहीं फेंकते, बल्कि उसके साथ खेत में लगा पानी, किसान की मेहनत, बिजली, ईंधन और प्रकृति के कई संसाधन भी व्यर्थ चले जाते हैं। और यही वजह है इस दिवस को मनाने की, ताकि लोग समझ सकें कि भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि ये पर्यावरण, कृषि और समाज से गहराई से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए भोजन करने से पहले कोशिश करें कि उतना ही खाना थाली में लें जो व्यर्थ ना जाए। किसी भी आयोजन में अगर ज़्यादा भोजन बच रहा है तो उसे ज़रूरतमंदों में बांट सकते हैं। श्रोताओं, कृतज्ञता एक शब्द नहीं है, बल्कि ये एक भावना है जो हमें विनम्र बनाती है।

जब भी हम भोजन से पहले मन ही मन उन सभी लोगों और संसाधनों को धन्यवाद देते हैं जिनकी वजह से भोजन हमारी थाली तक पहुंचा है, तब हमारे भीतर सम्मान का भाव जागता है और हम भोजन को व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। कई बार जीवन की भाग दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि हमें जो सहजता से मिल रहा है वो किसी ना किसी की कड़ी मेहनत का परिणाम है। इसलिए भोजन करते वक्त हर उस चीज़ का धन्यवाद करें जिसकी वजह से आपकी थाली भरी हुई है, और ईश्वर का आभार व्यक्त करें जिसने हमें ये भोजन प्राप्त करने का सौभाग्य दिया है। भोजन का स्वाद तो वही रहेगा, मगर उसे खाने का अनुभव बदल जाएगा।

बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। श्रोताओं, इन पंक्तियों को सुनते ही आंखों के सामने एक ऐसी वीरांगना की छवि उभर जाती है जिसने साहस, स्वाभिमान और देशभक्ति का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो आज भी हर भारतीय को प्रेरणा देता है। श्रोताओं, आज रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन कर रहे हैं। वो ऐसी महान वीरांगना थी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि के सम्मान की रक्षा की। श्रोताओं, रानी लक्ष्मीबाई का जीवन सिर्फ इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय नहीं है, बल्कि आज की हर नारी के लिए एक प्रेरणा भी है। उन्होंने हमें ये सीख दी कि नारी सिर्फ परिवार और समाज की शक्ति नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर अपने अधिकारों, आत्मसम्मान और देश की रक्षा के लिए साहसपूर्वक खड़ी भी हो सकती है। इन्हीं विचारों के साथ अब हमें दीजिए अनुमति, कीजिए स्वीकार अपनी रेडियो साथी अपेक्षा शर्मा का स्नेहिल नमस्कार।

कार्यक्रम आज सुबह अभी आप सुन रहे थे FM बैंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। आनंद लीजिए सदाबहार नगमों का। श्रोताओं, कहते हैं कि मानसून आने से पहले प्रकृति कुछ संकेत देने लगती है। हवाओं की तपिश थोड़ी कम होने लगती है, पेड़ों की पत्तियां जैसे किसी इंतजार में झूमने लगती है और आसमान में तैरते बादल मन को ये भरोसा दिलाने लगते हैं कि अब राहत भरे दिन दूर नहीं। श्रोताओं, बारिश हो या ना हो, मगर उनका एहसास अपने आप में एक मौसम होता है। और जब बात एहसासों की हो तो हिंदी फिल्म संगीत ने हर मौसम को अपने सुरों में बड़ी खूबसूरती से समेटा है। तो आज का हमारा ये संगीतमय सफ़र ले चलेगा आपको कल्पनाओं की ऐसी दुनिया में जहाँ होगी सुरों की फुहार, यादों की नमी और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू।

आपने सुना सुराग फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, कैफी आज़मी के बोल थे, बप्पी लहरी का संगीत था। आइए अब सुनवाते हैं आपको आनंद बख्शी की रचना आरडी बर्मन की धुन पर। लता मंगेशकर की गायकी है और फिल्म है बेमिसाल।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: कार्यक्रम में हम पेश कर रहे हैं आनंद बख्शी के बोलों को मोहम्मद रफी की मखमली आवाज में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज है और फिल्म का नाम है लोफर।

श्रोताओं आनंद लीजिए कैफी आजमी की इस रचना का, जिसे सुरों में बांधा है मदन मोहन ने। लता मंगेशकर के स्वर हैं, बावर्ची फिल्म है।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी नगमा हम सुनवा रहे हैं आपको आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वर में, सितमगर फिल्म से। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी हैं, संगीतकार आर डी बर्मन है।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सितमगर फिल्म का गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
5: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
6: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
4: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
7: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
4: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी

0: संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
1: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर्स दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
2: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सीकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
4: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं।
5: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
3: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
6: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से

0: मोदी सरकार बना है, तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता सीईटीए इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
3: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
4: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट एएफ थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन, फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक एक, रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक

0: तर्क वितर्क। केंद्र सरकार ने कहा, टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल। संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती, बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashwani presents Morning News. Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to attend VivaTech Summit in Paris with French President Emmanuel Macron. PM Modi to also address members of Indian community in French capital. President Draupadi Murmu to embark on a 5-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. Polling for 2 Rajya Sabha seats from Jharkhand and 1 from Mizoram to take place today. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement to come into force on the 15th of July this year. US President Donald Trump signs 14-point peace deal with Iran to end West Asia conflict. And in men's cricket, India beat Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the 3-match series to take unassailable 2-0 lead. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi arrived in Paris last night for the final leg of his visit to France. Upon his arrival in the French capital, Mr. Modi received a warm welcome from the members of the Indian community gathered at his hotel.
3: I feel India and France, it goes beyond geopolitics, education, culture, AI, innovation, it is everything.
4: So we are very thankful ki Modi ji aaye humse mile.
2: In Paris, Prime Minister Modi will attend the VivaTech 2026 alongside French President Emmanuel Macron. The VivaTech Summit is Europe's largest technology and startup event where Mr. Modi is expected to highlight India's growing innovation, ecosystem and technological advancements. Prime Minister Modi is also scheduled to address members of the Indian community during a special diaspora event. We hear more from our correspondent.
5: Today, the Prime Minister continues packed itinerary designed to supercharge bilateral trade and innovation partnerships. He will lead the charge by covering a specialized roundtable with top French and European business leaders, focusing on driving strategic investments into India's expanding industrial and tech corridors. The centerpiece of the visit takes place later today at VivaTech, Europe's premier technology and startup conference. Prime Minister Modi, alongside French President Emmanuel Macron, will lead a series of high-level engagements at the summit, culminating in a highly anticipated keynote address that highlights India's skyrocketing global digital footprint. The intensive diplomatic trip will wind down with a major community outreach initiative. The Prime Minister is slated to attend a massive diaspora reception featuring vibrant cultural performances that celebrate India's heritage. Mahesh Sopre, Akashwani News, Paris, France.
2: The Paris leg of PM Modi's visit is expected to further strengthen India-France relations, particularly in technology, innovation and people-to-people ties. President Draupadi Murmu will embark on a five-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. On the first day of her visit, President Murmu will attend a program on the empowerment of tribal society through spiritual awakening at Betul in Madhya Pradesh.

0: No tariff on key exports, writes the Tribune. Parliamentary board meet convened by Shiv Sena UBT today amid split rumours, says the Hindu. Delhi High Court seeks government reply as Telegram challenges ban over NEET exam, according to a report in the Times of India. 10-year wait ends as NSE files for IPO, while Reliance Jio set to file for IPO this week, reports Financial Express. And finally, in QS rankings, IIT Delhi tops India list for second year. Delhi University shines as well, says the Indian Express. And with that, it's back to you, Nishit.
1: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to attend VivaTech Summit in Paris with French President Emmanuel Macron. PM Modi to also address members of Indian community in the French capital. President Draupadi Murmu to embark on a five-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. Polling for two Rajya Sabha seats from Jharkhand and one from Mizoram to take place today. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement to come into force on the 15th of July this year. U.S. President Donald Trump signs 14-point peace deal with Iran to end the West Asia conflict. And in men's cricket, India beat Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the three-match series to take an unassailable 2-0 lead. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम माटी के स्वर। केदार यादव और साथी के स्वरों में हम लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ी लोकगीत पसंद आप सभी की। भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार वर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का, तन्मय गजभिये। बिलाईगढ़ से हमारे साथी हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, टिम्पल देवांगन। ग्राम बसीबार से शिव नारायण, नामदेव, सविता देवी, राम प्रसाद, आंचल, चंचल, चांदनी, विनय कुमार, वर्षा, मनोज कुमार, कंवर। शांति नगर पाली से विष्णु सिंह कोरम, संतोषी, आरती, पूर्वा, प्रतिभा, योगेश, नीलेश, चंद्रशेखर और समस्त कोरम परिवार। नवागढ़ कटी से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। ग्राम बुड़गहन से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से हमें फरमाइश आई है पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र सेन, खुशी और रौनक सेन के। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाउदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतिन बाई, मोतिम बाई मानिकपुरी, डोंडी लोहारा से। ततरिंगी भाटापारा से नोखेलाल वर्मा, हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि वर्मा। सिंगारबाड़ी घुटकू से भगतराम पटेल, किशन, सोनम और मानवी पटेल। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का पहला छत्तीसगढ़ी लोकगीत।

आपने सुना केदार यादव और साथियों की आवाज़ों में छत्तीसगढ़ी लोकगीत। अगले लोकगीत को पसंद आप सभी ने किया है। भाटापारा से दान सिंह रावत दानू, पद्मनी रावत, शुभम सौरभ रावत ने। ग्राम रसेड़ा अकलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, कीर्ति कुमार, संध्या, डिकेश कुमार, वासु, डॉली और पूर्वेश साहू ने। सुभाष वार्ड भाटापारा से एमएल यादव, अजय कुमार, अमित, अमीन, गिरीश, करण, युवान, ढावेश यादव। हदबन नेवधा से सेवक राम यादव, टुपेंद्र कुमार, तुलेंद्र कुमार, देव कुमार यादव। लुतरा खमरिया से हमें फरमाइश भेजी है नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम और मोहम्मद अजीज ने। भाटापारा से हमारे साथी हैं बच कामल, मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चुवाराम वर्मा, सूरज बारिकर, नारायण यदु, लेखराम यदु, राधेश्याम, लतेल साहू ने। मारवाड़ी कुआ भाटापारा से सियाराम, अश्वनी पांडे, सोनाडी से सुब्रत चौधरी, अनीशा और रायपुर से नीलू मेघ, बिट्टू कुमार। लुधियाना पंजाब से हमें फरमाइश आई है।

अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर की। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वली उल्ला फकीर, डब्लू उल्ला परवीन आसमा फकीर की। बुलंदशहर से हमारे साथी हैं बद्रू वली अंसारी, फर्जू वली, फर्जी वली अंसारी। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मयाराम रजक, पुनेश्वर फानेश्वर, मुकेश कुमार, हाव्या टानिया रजक। बलौदा अकलतरा से दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल। शांतिनगर भाटापारा से रमजान खान सिकंदर, अशरफ खान, नासिर खान, अयाज अल्फैज खान, हजीरुन्निशा, सादिया खान। बिल्हा से शेख नासिर और महजबीन बानो। इस छत्तीसगढ़ी लोकगीत के कलाकार हैं राम नारायण ध्रुव और साथी। तो आइए आनंद लीजिए आप सभी की पसंद पर इस लोकगीत का।

इस छत्तीसगढ़ी लोकगीत के कलाकार हैं राम नारायण ध्रुव और साथी। तो आइए आनंद लीजिए आप सभी की पसंद पर इस लोकगीत का।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: श्रोताओं, कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 18 जून 2026 को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय कोरबा के प्राध्यापक डॉ. तरुण कुर्रे उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा खरीफ मौसम में धान बीज उत्पादन तकनीक, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा खरीफ मौसम में दलहनी तिलहन बीज उत्पादन तकनीक। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665 और 3100026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 077752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 18 जून 2026 और 19 जून 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। ये सूचना यहीं समाप्त हुई। श्रोताओं, अब हम सुनवा रहे हैं आपको संतोष शुक्ला की आवाज में छत्तीसगढ़ी लोकगीत फरमाइश आप सभी की। इंदिरानगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम राजा की। रिंगनी से हमारे साथी हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। नैला बोरसरा से हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद, अमन कुमार, मीनाक्षी, उमाबाई, अंजुलता, ठगिया देवी, विष्णु प्रसाद तिवारी, मोंगरा देवी मिश्रा और प्यारे लाल मिश्रा की। शांति नगर भाटापारा से मिलव दास कुलदीप, संतोष दास, संदीप दास, अजीत दास कुलदीप, बिरजा संजना लक्की। सिहावा पर्वत बेलरगांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु, अंकित देवांगन। ग्राम दरचूरा से ददवा साहू, भूरी साहू, संतोषी, दुलौरिन, रेखा, मोतीलाल साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू। हथनीपारा भाटापारा से दुर्गा, दुर्गेश्वरी, गीतू, मुकेश वर्मा, हरीश, किरण और दुलारी वर्मा। बिरगांव तखतपुर से दिलीप कोल, जयमून नारायणी, रामायणी, भुवनेश्वर कोल। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश। मेहमदपुर भक्तिन बाजार अकलतरा से रमेश कैवर्त, राजकुमारी, आरती कैवर्त। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये छत्तीसगढ़ी लोकगीत।

माटी के स्वर कार्यक्रम का आखिरी फरमाइशी लोकगीत हम पेश कर रहे हैं सादरा मरावी की आवाज में, और इसे सुनना चाहा है हरदेव लाल पारा वार्ड सिमगा से रमेश कुमार यादव माया, रिंकू सन्नी और कोमल यादव ने। बेमे तरह से हमारे साथी हैं सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता, कमलकांत, वीरेंद्र वृजकांत सारथी, दत्रेंगी से विश्राम यदु, पार्वती प्रतिमा, लक्ष्मीना और रीना यदु, शिवाजी चौक राजम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार, कृष श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा देबू और लवी श्रीवास्तव, रुआ बांधा शनिचरी बाजार भिलाई से सुशील जैन, कल्पना सया, सौरभ शौर्य और शुभम जैन, ओवरेठी पारा भाटापारा से अनीता साहू, वीणा, नेहा, मोनिशा साहू, पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक, सीमा साहू, नेहरू वार्ड भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र, दुष्यंत, राघवेंद्र साहू, मोहनपारा अकलतरा से अभिनव साहू, अभिषेक और उमा देवी साहू।

सादरा मरावी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी लोकगीत। इसी के साथ कार्यक्रम माटी के स्वर यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली
0: गलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: श्रोताओं, आपको बता दें कि आज है संगीतकार दान सिंह की पुण्यतिथि। उन्हीं को याद करते हुए आज की फनकार कार्यक्रम उन्हीं पर केंद्रित रहेगा। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। इस कार्यक्रम को पुनः आप रात को 9:30 पर सुन सकते हैं और अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह की 9:30 पर यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। केंद्रित रहेगा संगीतकार दान सिंह पर। और आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, कुछ ना कहो। इस फिल्म से उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। जावेद अख्तर के बोल हैं, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: खुशखबरी
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 0224002466। तो उठाइए अपना टेलीफोन और

0: कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
3: वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।

इस ब्रेक के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत है। श्रोताओं, आपको बता दें, आज है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, यानी सेलिब्रेटिंग फूड हेरिटेज 2026 की थीम है इस डे के लिए। ये हर साल 18 जून को मनाया जाता है। भोजन विरासत का जश्न है इसका अर्थ है। इसका उद्देश्य पारंपरिक खाद्य ज्ञान, स्थानीय सामग्री और पर्यावरण अनुकूल खान पान को बढ़ावा देना है। सतत खान पान का मतलब है ऐसा भोजन चुनना जो हमारी सेहत के लिए अच्छा हो और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि भोजन कहाँ और कैसे उगाया जाता है तथा हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है। इसका महत्व ऐसा है कि हमें ध्यान देना होगा प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी और ऊर्जा की बचत की, और स्थानीय किसानों को समर्थन देना, यानी कि उन्हीं से मौसमी सब्जियां और फल खरीदना। भोजन की बर्बादी में कमी हो, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। पारंपरिक और क्षेत्रीय खाद्य संस्कृति का संरक्षण, ये भी तो हमारा कर्तव्य है। वैसे क्या करना चाहिए? स्थानीय और मौसमी फल सब्जियां ही खाना चाहिए और उन्हें किसानों से ही खरीदना चाहिए। भोजन की बर्बादी को बिल्कुल ना करें। दालें, बीन्स और हरी सब्जियां अधिक खाएं। जैविक कचरे से खाद यानी कंपोस्ट बनाएं। प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैले इस्तेमाल करें। इस दिवस का संदेश है कि छोटे छोटे टिकाऊ खाद्य विकल्प अपनाकर हम स्वस्थ जीवन और सुरक्षित पर्यावरण में योगदान दे सकें। और सुनिए ये गीत जावेद अली और सुनिधि चौहान की आवाज में, दावते इश्क फिल्म से। कौसर मुनीर के शब्द, साजिद वाजिद का संगीत।

0: जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा, Who is he?
1: कभी खुशी कभी गम इस फिल्म का गीत अलका याग्निक, सोनू निगम और करीना कपूर की आवाजों में समीर का लिखा गीत है। धुन बनाई है संदेश सांडिल्य ने।

Whatever.

0: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।
1: आंखें खुली हो या

फिल्म मोहब्बते से ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, उद्भव और कुछ साथी कलाकारों की आवाजों में, जिसमें शाहरुख खान, उदित नारायण, मनोहर शेट्टी, प्रथा मजूमदार और साथियों के स्वर थे, आनंद बख्शी के बोल, जतिन ललित का संगीत। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा आपकी रेडियो दोस्त पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर कर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। फिल्म संगीत संसार में कई ऐसे संगीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में नहीं की, लेकिन जो फिल्में की उनके जरिए फिल्मी गीतों की दुनिया में अपनी गहरी और बुलंद पहचान बनाई है। ऐसे कम चर्चित संगीतकारों की एक लंबी फहरिस्त है। इनका काम अपनी क्वालिटी की वजह से ज्यादा जाना जाता है, क्वांटिटी की वजह से नहीं। और ऐसे ही संगीतकारों की फहरिस्त में नाम आता है फिल्म जगत के नामी संगीतकार दान

डांसिंग का जन्म जयपुर में सन 1927 में हुआ था। कहते ये हैं कि उनके पिता एक अध्यापक थे और ख्याल गायकी में भी अपना दखल रखते थे। जाहिर है कि संगीत डांसिंग के खून में था। उन्हें खेमचंद प्रकाश के रूप में संगीत के अपने गुरु मिल गए और हुआ ये कि खेमचंद प्रकाश के साथ उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। तकरीबन 1.5 बरस बीत गया। डांसिंग खेमचंद प्रकाश के पास रियाज करते चले जाते और खेमचंद प्रकाश सिर्फ और सिर्फ राग भैरवी की प्रैक्टिस करने को उनको कहते। हुआ ये कि एक बार वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या मामला है कि आप लगातार मुझे एक ही राग की प्रैक्टिस करवाते चले।

जा रहे हैं, तब खेमचंद प्रकाश ने ये कहा था कि संगीत की ये साधना बहुत लंबी खिंचती है। उन्होंने अपने एक शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने भैरवी सीखनी शुरू की तो अब 8 साल हो गए हैं और वो लगातार सीखते चले जा रहे हैं। खेमचंद प्रकाश को पता था कि डांसिंग की प्रतिभा

आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि दान सिंह ने अपना करियर संगीत की दुनिया में आकाशवाणी जयपुर से शुरू किया था। बाद में जब उन्हें ये लगने लगा कि उन्हें ऊंचे आकाश की जरूरत है, अपने आयाम फैलाने की जरूरत है, तो वो मुंबई आ गए थे। थोड़े दिन तक वो खेमचंद प्रकाश के सहायक भी रहे और उन्हें इस समय में कुछ फिल्मों के ऑफर भी मिले, जैसे रेत की गंगा नाम की एक फिल्म उन्हें ऑफर की गई। ये अलग बात है कि ये फिल्म बन नहीं पाई। सन 1965 में दानसिंह को जेपी शर्मा की फिल्म मिली भूल न जाना। गोरा गोरा

यहाँ आपको बता दें कि असल में बी एन शर्मा जिन्होंने भूल न जाना का निर्माण किया था वो फ्लैट में दान सिंह के साथ ही रहा करते थे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म भूल न जाना भारत और चीन युद्ध पर बनी थी। दान सिंह ने बड़े मन से इस फिल्म के गाने तैयार किए थे और बहुत ही कमाल का संगीत था फिल्म भूल न जाना का।

फिल्म भूल न जाना, ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई इसलिए दान सिंह की उड़ान को वो आकाश नहीं मिल पाया जिसके दान सिंह हकदार थे। पर इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ी एक घटना आपको बताते हैं। सन 1964 मुंबई में ताड़देव का एक स्टूडियो, गीता दत्त डांसिंग का एक गाना गा रही हैं। ये वो समय है जब गीता दत्त की जिंदगी में, उनकी निजी जिंदगी में तूफान आया हुआ है, रिश्तों में दरार आ रही है और गीता दत्त ये गाना गा रही हैं।

लाइने गाते गाते अचानक गीता दत्त की रुलाई फूट पड़ती है। रिकॉर्डिंग के बीच में वो सुबकने लगती हैं। एकदम स्टूडियो के माहौल तनाव से भर जाता है। दरअसल डांसिंग का ये गीत गीता दत्त के दिल पर बहुत भारी पड़ा है। जरा सोचिए, इतना गहरा था डांसिंग के संगीत का असर। भूल ना जाना के अलावा डांसिंग ने फिल्म माय लव में संगीत दिया। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर के अभिनय वाली ये फिल्म असल में डांसिंग के गानों के लिए ही याद की जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में डांसिंग के सहायक के रूप में लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन और प्यारे लाल ने वायलिन बजाई। पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर बजाया इस फिल्म के गानों में और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने बांसुरी बजाई। यही नहीं, मनोहरी सिंह का सैक्सोफोन भी फिल्म माय लव के गानों की शान है। जरा सोचिए, इतने बड़े नाम जुड़े थे इन गानों की रिकॉर्डिंग में। आगे चलकर शिव हरि की जोड़ी फिल्म संगीत के संगीतकारों की सरताज तो बनी ही। पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने संतूर और बांसुरी की स्वर लहरियों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, देश और दुनिया में नाम कमाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी तो हिट फिल्में देने वाली एक बेमिसाल संगीतकार जोड़ी बनी। और सैक्सोफोन के सरताज मनोहारी सिंह को भला कौन नहीं जानता। फिल्म माय लव के गानों की बात चल रही है तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं।

जैसा कि हमने कहा कि डांसिंग फिल्म संगीत की दुनिया में जब बहुत ज्यादा नाम नहीं कमा पाए तो वो रेडियो से जुड़ गए थे। युवावस्था में उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत की कविता को संगीतबद्ध किया था और मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उन्हें गले लगा लिया था। डांसिंग बहुत ही गुणी संगीतकार थे, पर उन्होंने केवल 4 फिल्मों में संगीत दिया, माय लव, तूफान, बवंडर और भोभर। कुछ ऐसे संगीतकार होते हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पाता। हम संगीत के प्रेमी बस इसी विकलता में रह जाते हैं कि आखिर ऐसी प्रतिभाओं को और मौके क्यों नहीं मिले, ताकि हमें मिल सकते थे कुछ और बेमिसाल गाने। फिल्म भूल न जाना का मुकेश का गाया ये गाना सुनिए और दान सिंह की प्रतिभा की वानगी दे।

0: आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: समाचार
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। मुख्यमंत्री ने गरियाबंद जिले को दी 603 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात। और एसीबी ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में भ्रष्टाचार के मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सुबह एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे। अपने दौरे के दौरान वे बलबीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आचार्य पदारोहण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद शाम करीब 4 बजे शांतिनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री बिरला आज शाम दिल्ली लौट जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल गरियाबंद जिले को 603 करोड़ 46 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 76 विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इनमें सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और विद्युत से जुड़े कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने गरियाबंद के सर्वांगीण विकास के लिए आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया। पीएम सेतु योजना के तहत प्रदेश के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई को आधुनिक और उद्योग अनुकूल बनाया जा रहा है। योजना के तहत छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और ड्रोन जैसी नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही पुरानी मशीनों के स्थान पर आधुनिक उपकरण, डिजिटल कंटेंट और स्मार्ट क्लासरूम की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति की बैठक में पीएम सेतु योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कल प्रदेश के 3 अलग अलग जिलों में दबिश देकर भ्रष्टाचार के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने कल भिलाई नगर निगम से सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर को भ्रष्टाचार के एक मामले में हिरासत में लिया। इसके अलावा धमतरी में विद्युत यांत्रिकी विभाग में पदस्थ प्रोग्रेस मैन को 1 लाख रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं एसीबी ने जशपुर नगर में आरईएस विभाग के एसडीओ को भी 25,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जशपुर जिले में बीज गोला बनाबो जशपुर के जंगल्ला बढ़ाबो महाअभियान के तहत भैरव पहाड़, सोगड़ा, नुमान टेकरी सहित विभिन्न चिन्हांकित स्थलों पर लगभग 2 लाख सीड बॉल तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम ने सभी नागरिकों, प्रबुद्धजनों और युवाओं से इस अभियान में शामिल होने की अपील की है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने राज्य में अवैध रूप से स्क्रैप और प्रयुक्त बैटरियों के संग्रहण, भंडारण, परिवहन, पुनर्चक्रण और व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। मंडल के संज्ञान में आया है कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में बिना आवश्यक पंजीयन, प्राधिकार और वैध दस्तावेजों के स्क्रैप बैटरियों का संग्रहण, भंडारण, परिवहन और खरीदी बिक्री की जा रही है। मंडल ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की गतिविधियां पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन है और यह जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। इस संबंध में राज्य भर में विशेष निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। योग दिवस के आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राज्यपाल रमन डेका राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में सरगुजा जिले में सुबह 7 बजे सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू बिलासपुर, उप मुख्यमंत्री अरुण साहू दुर्ग, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कबीरधाम और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इस प्रकार अन्य जिलों में भी आयोजित होने वाले योग कार्यक्रमों में मंत्री, सांसद और विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। मुख्यमंत्री ने गरियाबंद जिले को दी 603 करोड़ रुपए से अधिक विकास कार्यों की सौगात। और एसीबी ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में भ्रष्टाचार के मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है।

अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को, FM बैंड 103.2 MHz पर। ये

प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजे हैं। आप सभी के फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद हम पेश कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं दिल है तुम्हारा फिल्म के इस गीत के साथ। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें हैं, समीर की रचना है, नदीम श्रवण की तर्ज है और पसंद आप सभी की। भाटापारा दत्रेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार वर्मा। महादेव घाट अम्बलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति, रियांश ठाकुर। डोंडी लोहारा बालौद से हमारे साथी हैं जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाउदास, जय दास, देवेश दास, धनवंतिन बाई, मोतिम बाई मानिकपुरी। राजनांदगांव डोंगरगांव से राजपाल गजभिये, राधिका अनिष्का, तन्मय गजभिये। बिलाईगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या, हेम लता, डिंपल देवांगन। सिंगारबाड़ी घुटकू से भगतराम पटेल, किशन, सोनम, मानवी पटेल। पहाड़ा अहिवारा से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति, छाया बंछोर। शांतिनगर भाटापारा से मिलव दास कुलदीप, संतोष दास, संदीप दास, अजीत दास कुलदीप, बिरझा, संजना लक्की। बेलर गांव से हमें फरमाइश मिली है मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु अंकित देवांगन की। मेहमतपुर भक्तिन बाजार अकलतरा से रमेश कैवर्त, राजकुमारी आरती कैवर्त। हरदेवलाल पारा वार्ड सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव। बेमेदरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा, हेमलता, कमलकांत, वीरेंद्र वृजकांत सारथी। और पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक, सीमा साहू की। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आप सभी की फरमाइश पर इस गीत के साथ।

0: कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना, दिल है तुम्हारा, फिल्म से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में।
1: पापा के गुजर जाने के बाद एकदम अकेला पड़ गया था। कभी कर्ज की चिंता, कभी ब्याज का बोझ, फिर पता चला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में, तब लगा कोई अपना भी साथ खड़ा है।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2,00,00,000 रुपए का फसल बीमा, 8,00,00,000 किसान क्रेडिट कार्ड और MSP पर 26,00,00,000 रुपए से अधिक की फसल खरीद से देश के किसानों को मिली मजबूती।
3: 12 साल किसान कल्याण के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा जन प्रसार हेतु जारी।
4: बदलो बदलो आदत बदलो।
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी है नेहरू और भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत राघवेंद्र साहू ने। मोहनपारा अकलतरा से अभिनव साहू, अभिषेक उमा देवी साहू। ग्राम रसेड़ा अकलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, कीर्ति कुमार।

कुमार, संध्या, डिकेश कुमार, वासु, डॉली, पूर्वेश, साहूनी, बलौदा अकलतरा से हमारे साथ ही हैं दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश, मयाराम रजक, पुनेश्वर, फानेश्वर, मुकेश कुमार हाव्या, टानिया रजक ने, भाटापारा से दान सिंह रावत दानू, पद्मनी रावत, नीरज शुभम, सौरभ रावत, पेंशनवाड़ा रायपुर से हमारे साथी हैं रोमनाथ यादव, वंदना, सूर्यप्रकाश, शीला, कनक, गुनगुन यादव, शांतिनगर भाटापारा से रमजान खान सिकंदर, असरफ खान, नासिर खान, अयाज, अल्फेज खान, हजरुन निशा, सादिया खान, बिल्हा से शेख नासिर, महजबीन बानो, भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चुवाराम वर्मा, सूरज बारीकर, नारायण यदु, लेखराम यदु, राधेश्याम और जितेंद्र साहू, मारवाड़ी कुआ भाटापारा से सियाराम, अश्वनी पांडे, सोना डी से सुब्रत चौधरी, अनीशा, रायपुर से नीलू मेघ, लुधियाना पंजाब से अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, आदिबा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वली उल्ला फकीर, डब्लू उल्ला, परवीन आसमा फकीर, बुलंदशहर से बद्रुवली अंसारी, फर्जुवली, फर्जीवली अंसारी, परसा टोला अंबागढ़ चौकी से हमारे साथी हैं ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी कुमेंद्र, तुषारिणी मसिया, अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान, सुभाष वार्ड भाटापारा से एमएल यादव, अजय कुमार, अमित, अमीन, गिरीश, करण, युवान, धावेश यादव, हदबन नेवदा से सेवक राम यादव, टुपेंद्र कुमार, तुलेंद्र कुमार, देव कुमार यादव और लुथरा खमरिया से नकुल शाह, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज। फिल्म का नाम है बॉर्डर। जावेद अख्तर की रचना को सुरों में बांधा है अनु मलिक ने, आवाजें अलका याग्निक और सोनू निगम की है।

0: टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: श्रोताओं, कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 18 जून 2026 को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय कोरबा के प्राध्यापक डॉक्टर तरुण कुर्रे उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा खरीफ मौसम में धान बीज उत्पादन तकनीक, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा खरीफ मौसम में दलहनी तिलहन बीज उत्पादन तकनीक। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665923100026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 18 जून 2026 और 19 जून 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। ये सूचना यही समाप्त हुई।
0: कुछ यादें अतीत की।
2: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
0: कुछ बातें वर्तमान की।
3: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
0: कुछ सपने भविष्य के।
4: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
0: कुछ किस्से अनकहे।
5: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
0: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से।
1: अगला गीत आप सभी ने सुनना चाहा है गोपी किशन फिल्म से, कुमार सानू और पूर्णिमा की आवाजों में। गीतकार समीर है, संगीतकार आनंद मिलिंद है और इसे सुनना चाहा है चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र, खुशी, रौनक सेन ने। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा, शारदा, दामिनी वर्मा। गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। नैला बोरसरा से हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद, अमन कुमार, मीनाक्षी, उमाबाई तिवारी, अंजुलता, ठगिया देवी, विष्णु प्रसाद तिवारी, मोंगरा देवी मिश्रा और प्यारेलाल मिश्रा। ग्राम दरचूरा से हमारे साथी हैं ददुआ साहू, भूरी साहू, संतोषी, दुलौरिन, रेखा, मोती साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदेव राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश। दतरेंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा, लक्ष्मीना, रीना यदु। ओवरेठी पारा भाटापारा से अनीता साहू, वीणा, नेहा, मोनिशा साहू। ददरेंगी भाटापारा से नोखेलाल वर्मा, हीरामणि, पारसमणि।

पुष्पेंद्र मणि वर्मा, ग्राम बुड़गान से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण चंद्रेश कुमार, चंद्रकला शशिकांता प्रजापति, इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम और आसिफ नईम राजा। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये आखिरी फरमाइशी गीत।

कार्यक्रम आपकी पसंद में अभी आप सुन रहे थे गोपी किशन फिल्म का ये गीत कुमार सानू और पूर्णिमा की आवाज़ों में। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। आइए शुरू करते हैं सफ़र नए तराने कार्यक्रम का।

आपने सुना कृष्णा कॉटेज फिल्म का गीत श्रेया घोषाल की आवाज़ में। निलेश मिश्रा के बोल थे और अनु मलिक का संगीत था। आइए सुनते हैं सईद कादरी की रचना को प्रीतम की धुन पर। गायकी सोहम की है और फिल्म है लाइफ इन अ मेट्रो।

0: बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, शहर में छोटी से लेकर मध्यम दूरी की यात्रा के लिए डीजल, पेट्रोल या इलेक्ट्रॉनिक ऑटो एक सरल, सहज और उत्तम साधन है। यह लोगों की पहली पसंद भी है, किंतु विडंबना इस बात की है कि कुछ मात्र ऑटो चालकों को छोड़कर सभी हमारे स्मार्ट सिटी बिलासपुर की सुंदरता और व्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं। वस्तुतः इस समय शहर की हर सड़कों में सर्वाधिक नजर आने वाले वाहनों में ऑटो प्रमुख है। प्रायः सभी ऑटो चालकों के द्वारा शहर के सभी चौक चौराहों में अव्यवस्थित ऑटो खड़ी कर सुगम यातायात व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। इन चौक चौराहों में इन ऑटो के कारण कई बार जाम की स्थिति बन जाती है, लोग परेशान हो रहे हैं। इन ऑटो के चलते सड़क दुर्घटना की स्थिति निर्मित हो जाती है या शासकीय कार्य भी प्रभावित होते हैं। आम लोगों में ऑटो चालकों की इस क्रियाकलाप से असंतोष है। इन हालातों को देखते हुए बिलासपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं उप पुलिस महानिरीक्षक श्री रजनेश सिंह जी के द्वारा ऐसे ऑटो चालकों पर नियमित रूप से कड़ी कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है, जिस पर हाल ही में लगभग 1000 ऑटो चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार कार्रवाई कर उन्हें माननीय न्यायालय भेजा गया है। पुनः सभी प्रकार के ऑटो चालकों को इस संदेश के माध्यम से सतर्क किया जाता है, अन्यथा विधि संगत कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। अपने ऑटो में आगे पीछे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तत्काल लगवाएं तथा सभी दस्तावेज जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिट, बीमा, प्रदूषण पूर्ण कर रखें। वर्दी धारण कर ही वाहन चलाएं। चालक के अगल बगल सवारी न बैठाएं, न ही ओवर सीट चलें, नशा कर वाहन भूल कर न चलाएं और वाहन चलाते मोबाइल का प्रयोग न करें। किसी भी चौक में अव्यवस्थित वाहन खड़ी न करें। नो पार्किंग में भी भूल कर वाहन न खड़े करें। सवारियों से दुर्व्यवहार न करें या किसी का सामान ऑटो में छूट जाए तो तत्काल नजदीकी थाने में जमा करें और हमेशा यातायात नियमों का 100% पालन भी करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: पेश है श्रेया घोषाल की आवाज में सईद कादरी की रचना। धुन बनाई है रूप कुमार राठौर ने और फिल्म का नाम है जहर।

0: श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: नमस्कार श्रोता साथियों, अपने जिले की आज की यातायात व्यवस्था अर्थात ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर के साथ प्रतिदिन की तरह मैं हूं उमा शंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर नगर निगम अर्थात शहरी क्षेत्र की सभी सड़कों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी सर्वत्र सभी प्रकार के वाहनों का सुगम आवागमन बना हुआ है, जिससे बिलासपुर जिले का सभी स्थानों से यातायात संपर्क बना है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि संपूर्ण

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: कार्यक्रम के आखिर में हम सुनवा रहे हैं आपको गैंगस्टर फिल्म का ये तराना, जेम्स की आवाज में।

गैंगस्टर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे जेम्स की आवाज़ में। इसी के साथ नए तराने कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
3: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
2: ग्वालियर सुरेश खुराना, पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
3: आज जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोताओं, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओ, लेगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लेगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लेगून सामान्यतः उथला होता है, यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून हैं, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, तो आपको बता देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत

0: बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहाँ तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओ, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओं, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओं, क्या आपने बोईता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम? तो आपको बता दूं कि बोईता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोईता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्यौहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्योहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओ, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओं हमारी आज की जानकारी विश्व विख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बात

बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनत के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वो खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो ना। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
0: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
1: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है।

0: तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों ना रहो?
1: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
0: प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहां ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
2: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
1: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? दो दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
0: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो हा? तुम मुझे नहीं जानती हो?
1: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो
0: हा?
1: मैं तुम्हें नहीं जानती।
0: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
1: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है। तब मुझे जाने दीजिए।
0: चिड़िया तो मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ।
1: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी।

0: मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा मालामाल होना चाहिए?
1: अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है। तू सोना नहीं जानती? सोना, उसी की जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
0: वो सोना क्या चीज होती है?
1: तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूं, उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया? तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
0: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं। पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
1: ठहर ठहर ठहर। इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रह।
0: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती। इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है, और मैं राह भूल जाऊंगी।
1: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
2: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झट

0: पट भाग कर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
1: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना।
0: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
1: सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
2: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
1: हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है।
2: सेठ मुझे देर हो रही है।
1: देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
2: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
3: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
4: जी मालिक।
0: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
1: हाथ से निकल गई।
0: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा,
5: क्या है बच्ची? क्या हुआ बेटा, बता बेटा। ना, ना, ना।
0: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM बैंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 11:30 होने वाले हैं। आइए अब पुनः जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने मिर्जा गालिब का ये कलाम सुना, और आइए अब सुनते हैं संत नानक देव का ये शब्द। गायिका हैं दिलराज कौर।

0: पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: कार्यक्रम में अब सुनिए आयुष्मान खुराना की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत। इसे लिखा है रोचक कोहली ने।

ये स्वर था आयुष्मान खुराना का, और आइए अब सुनते हैं तनिष्क बागची का लिखा और संगीतबद्ध किया हुआ ये गैर फिल्मी गीत। आवाजें गुरु रंधावा और निकिता गांधी की।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं अरमान मलिक की आवाज में कुणाल वर्मा का ये गीत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 11:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। समाचार।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। एसीबी ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में भ्रष्टाचार के मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग के अनुसार मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सुबह एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे। अपने दौरे के दौरान वे बलबीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आचार्य पदारोहण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद शाम करीब 4 बजे शांतिनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री बिरला आज शाम दिल्ली लौट जाएंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कल प्रदेश के 3

अलग अलग जिलों में दबिश देकर भ्रष्टाचार के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने कल भिलाई नगर निगम से सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर को भ्रष्टाचार के एक मामले में हिरासत में लिया। इसके अलावा धमतरी में विद्युत यांत्रिकी विभाग में पदस्थ प्रोग्रेस मैन को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं एसीबी ने जशपुर नगर में आरईएस विभाग के एसडीओ को भी 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कोरिया जिले की कलेक्टर रोकतिमा यादव ने एक आदेश जारी कर महल पारा बैकुंठपुर नौगई के साथ ही कटघोड़ी स्थित एक क्रेशर प्लांट एरिया में धारा 163 लागू कर दी है। जारी आदेश के अनुसार किसी भी प्रकार के हथियार और विस्फोटक सामग्री पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जुलूस, धरना प्रदर्शन और आम सभा पर प्रतिबंध लगाया गया है। गौरतलब है कि कोरिया जिले के कटघोड़ी गांव में भाजपा नेता भरत सिंह सहित 3 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। योग दिवस के आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राज्यपाल रमेन डेका राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य अतिथि में सरगुजा जिले में सुबह 7 बजे सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू बिलासपुर, उप मुख्यमंत्री अरुण साव दुर्ग, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कबीरधाम और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर अमर सिंह राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इसी प्रकार अन्य जिलों में भी आयोजित होने वाले योग कार्यक्रमों में मंत्री, सांसद और विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राजधानी रायपुर में पहली बार ईस्टर्न स्लैम 2026 का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत 22 से 27 जून तक बूढ़ापारा स्थित स्क्वैश कॉम्प्लेक्स में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसमें सिंगापुर सहित भारत के 21 राज्यों से लगभग 350 जूनियर और सीनियर खिलाड़ी भाग लेंगे। टूर्नामेंट के लिए 2,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा 19 शासकीय भर्ती परीक्षाएं पास कर अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाली चारू पांडे से लिए गए साक्षात्कार का प्रसारण आज किया जाएगा। इस विशेष भेंटवार्ता को रात 8:15 से 8:30 तक सुना जा सकता है। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आज ऐसा ही मौसम रहेगा। बेमेतरा जिले के शासकीय पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में आज एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेले में विभिन्न प्रतिष्ठित निजी संस्थानों द्वारा 1600 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं धमतरी के कंपोजिट भवन स्थित जिला रोजगार कार्यालय में 23 जून को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा 690 पदों पर भर्ती की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। एसीबी ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में भ्रष्टाचार के मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार और मौसम विभाग के अनुसार मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
1: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सेंट गोबा के चेयरमैन

0: सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर विस्टाल एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित। ये पेरिस, फ्रांस से महेश सोपड़े।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर हैं। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नागपुर के अंबा झारी स्थित आयुध कारखाने में यंत्र इंडिया लिमिटेड की 10,000 टन क्षमता वाली एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड घटकों के आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से हुई। भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराया। इसके अलावा भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस सभा में, इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है दोस्तों। और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं मशहूर यानी जाने माने संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम दिल की राहें, गीतकार नक्श लाहिलपुरी।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म दिल की राहें का ये गीत सुना। गीतकार नक्श लायलपुरी और संगीतकार मदन मोहन थे। आइए अगला गीत सुनते हैं। इसे लिखा है राजा मेहदी अली खान ने, स्वर लता मंगेशकर का, और फिल्म का नाम वो कौन थी।

0: इनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत सुनिए, आवाज मोहम्मद रफी की, और ये फिल्म है शराब।

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने फिल्म शराबी का ये गीत सुना। आइए इसी आवाज में अगला गीत फिल्म नौनिहाल से हम आपको सुनवा रहे हैं। गीतकार हैं कैफी आजमी और संगीतकार मदन मोहन।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और आशा भोसले को, फिल्म का नाम है जहां आरा, रचना राजेंद्र कृष्ण की और धुन मदन मोहन की।

लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाजों में यह था फिल्म जहां आरा का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत कैफी आजमी का लिखा हुआ, मदन मोहन का संगीतबद्ध किया हुआ है लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म हंसते जख्म से हमने लिया है।

0: में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली पेशकश मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है, आवाज लता मंगेशकर।

0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली पेशकश मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है, आवाज लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है दस्तक।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिसम ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मदन मोहन के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी का लिखा गीत, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है महाराजा।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म महाराजा का ये गीत सुना। गीतकार थे कैफी आजमी। और आज इस कार्यक्रम में हमने आपको मदन मोहन के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत सुनवाए। और अब यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर बस कुछ ही पलों में।

तो प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार जी। तो बताइए श्रोताओं, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है जिंदगी का सफर? अच्छा चल रहा है ना? आहा, कभी कभी नाव हिचको लिखा जाती है ना? कोई बात नहीं, यही तो जिंदगी का असली सफर है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सफर कैसा होना चाहिए तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप यही कहेंगे जो मैं कह रही हूँ कि सफर तनाव मुक्त होना चाहिए, रोमांचक होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए और साथ में एक प्यारा सा हम सफर भी होना चाहिए ताकि जिंदगी बहुत मजे से निकल जाए, क्यों, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर, क्योंकि इधर हम हैं और उधर आप, और मिलकर ये प्यारा सा सफर हम आज तय करेंगे। तो चलिए आज चलते हैं समुद्री यात्रा पर। नौका विहार करते हैं। डरिए नहीं, डरिए नहीं भाई, आज के समय में भी समुद्री यात्रा खास तौर से आज के समय में काफी सुरक्षित और आसान हो गई है और ये यात्रा करना बहुत रोमांचक हो जाता है। एक शानदार अनुभव हमारी जिंदगी से जुड़ जाता है। नीला पानी, ताजी हवा और प्रकृति की विशालता का एहसास होता है हमें। बस थोड़ा सा मानसिक रूप से हमें मजबूत होना पड़ता है। तो चलिए हो जाते हैं तैयार और चलते हैं आज नौका विहार पर, है ना? तो आप हमारा इशारा समझ गए हैं कि आज इस कार्यक्रम में हमने वही गीत चुने हैं जो नावों पर फिल्माए गए हैं और इन गीतों में मुख्य रूप से रोमांस, आशा या अपने प्यार की तलाश जैसा भाव छुपा है। तो जो श्रोता हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्होंने तो अपने विचार लिख दिए हैं और खुशी की बात यह है कि आज बहुत सारे गीत आपकी पसंद और हमारी पसंद के मेल खा रहे हैं। हाँ, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं, हमारे परिवार में शामिल होना चाहते हैं, वो www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर अपनी बात हमें लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नौका विहार।

नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में अभी आपने शकील बदायूनी का लिखा ये गीत सुना। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की थी। फिल्म का नाम था उड़न खटोला। तो भाई आज तो इस नौका यात्रा पर हमारे बहुत सारे श्रोता शामिल हो गए हैं और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत बड़ी नाव लेकर चलना होगा क्योंकि बहुत सारे श्रोता आज जुड़ गए हैं। तो चलिए इस नौका यात्रा पर जब हम निकल ही गए हैं तो डरना कैसा है ना भाई। ध्यान से रहिएगा, डरिएगा नहीं। सब अपनी अपनी भूमिका अच्छे से तय कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि भाई आज का ये पैराग्राफ मुख्य रूप से जो आपने लिखा है यानी मैंने जो इबारत लिखी है दार्शनिक और आध्यात्मिक भावनाओं से जुड़ी है जिसे काव्यात्मक और मनोरंजक शैली में पिरोया गया है। इसमें जीवन के उतार चढ़ाव को एक यात्रा के रूप में दिखाया गया है और आप लिखते हैं कि इसमें प्रमुख भावनाएं शामिल हैं वैराग्य, स्वीकृति, जीवन की अनिश्चितताएं और भी बहुत सारी भावनाएं, सहजता से स्वीकार करने का भाव, कठिन परिस्थितियां, तूफानी यात्रा में किसी योग्य गुरु मल्ला या आध्यात्मिक ज्ञान की जो हमें तलाश करनी होती है उसके बारे में भी इस इबारत में आपने लिखा है। तो हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात कही है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी की इस नैया को पार लगाने के लिए हमें न जाने कितने तूफानों का सामना करना पड़ता है। सुख दुख के थपेड़ों के बीच जब हमारी ये नाव डगमगाने लगती है तब दिल किसी मझधार या भंवर में फंसा हुआ महसूस करता है। ऐसे वक्त में जब दूर दूर तक कोई किनारा दिखाई न दे तो उम्मीद का दामन थामे रहना ही समझदारी है। इस जीवन रूपी कठिन यात्रा में सही राह दिखाने के लिए हमेशा एक कुशल मल्लाह यानी माझी या सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो इस कश्ती को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा सके।

जी तो हमारे श्रोता जो फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें हम आज की इबारत भी बता दें। हमने एक छोटी सी इबारत आपके लिए लिखी है जिसे आप आसानी से समझ सकें और अपनी बात लिख सकें। हमने आज लिखा था कि जीवन रूपी नैया और हमारा ये जीवन का भटकाव हमें ये बताता है कि जिंदगी के सफर में हम ता उम्र भंवर यानी मझदार में खुद को फंसावा पाते हैं। जीवन रूपी सफर में जब कोई किनारा नजर न आए तो हर पल को स्वीकारना ही इस नैया को पार लगाने जैसा होता है। जब भी जीवन रूपी नाव डगमगाए तो जान लीजिए कि इस तूफानी यात्रा को शुरू तो पूरा करने के लिए एक योग्य मल्लाह या आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। तो ये आज की इबारत थी जिसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हमारे द्वारा चुने गए गीतों से मेल खाता हो। आज हमने वो शब्द नहीं रखे ताकि आप श्रोता थोड़ा सा सरलता से गीत चुन सके, इसीलिए आप सबकी खातिर हमने आज थोड़ा सा इस इबारत को इस रूप में रचा। और एक शब्द नैया जिस पर आज हमने कार्यक्रम केंद्रित किया यानी कि सुरीला सफर हम आज इस नाव पर करने वाले हैं। जो गाने नावों पर फिल्माए गए हैं उसी पर आज हमने इस सुरीली यात्रा को रखा है। तो कैसी लगेगी आपको ये यात्रा तो ये कार्यक्रम के अंत में हमें पता लगेगा। इस बीच हम दो सवाल आपके लिए लाए हैं हमेशा की तरह। बहुत ही सीधे साधे सवाल

है कि आप किसी नौका विहार पर कभी गए हैं, हमारे एक दो श्रोताओं ने लिखा भी है, तो आप भी बताइए कहाँ गए थे, कैसे गए थे, क्या रहा नौका विहार का, वो वर्णन आप कर सकते हैं कम से कम शब्दों में, आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी बात कहनी है। और हाँ, नौका विहार पर फिल्माए गए गीतों में आपकी पसंद का कोई गीत जिसे आप बहुत पसंद करते हो, वैसे तो आपने बहुत सारे गीतों को लिखा है, लेकिन आप जो बहुत गीत को पसंद करते हो और आपकी नजर में वो गीत बहुत ही शानदार तरीके से फिल्माया गया है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करती हूँ कि मैं अपनी बात करती हूँ कि फिल्म कश्मीर की कली का गीत जो है ना, ये चांद सा रोशन चेहरा, तो वो गीत जो है मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि डल झील श्रीनगर की जो हसीन वादियों में शिकारा पर फिल्माया गया गीत है, और शिकारा की जो धीमी गति है, और बैकग्राउंड में आपने देखा खूब सारे जो है कश्मीरी हाउस बोट्स रखे हुए हैं, और वो अपनी बारीक हस्तशिल्प कला के एक शानदार नायाब नमूने हैं। तो कितना सुंदर समा लगता है इस गीत को सुनने के बाद, देखने के बाद, और शम्मी कपूर साहब के तो कहने ही क्या, जब वो जिस एक झटकते अंदाज में अपनी बात कहते हैं। तो इस तरह से आपको भी कोई गीत पसंद होगा उसका जिक्र करें। चलिए चलते हैं अगले गीत की ओर, आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की। ये फिल्म है सवेरा, गीतकार है शैलेंद्र और संगीत दिया है शैलेश ने।

अच्छा बताइएगा कि ये गीत फिल्माते समय आपको कौन से नायक और नायिका एक नाव पर बैठे दिखे, और साथ ही हमने आपको बताया था कि संगीतकार हैं शैलेश, ये संगीतकार कौन से हैं, इनका पूरा नाम क्या है, आपको ये भी बताना है।

गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शैलेश। इनका पूरा नाम आपको बताना है और साथ ही ये भी बताना है कि ये गीत यानी ये गीत जो फिल्माया गया है इसमें कौन नायक और नायिका एक नाव पर अलग से बैठे हैं और बाकी दूसरी नावों पर एक कोरस गान हो रहा है जो कि अभी आपने सुना था। हमारे श्रोता का कहना है कि जिंदगी तो एक नैया है जिस पर एक नाव को तूफानी दरिया में पार लगाने के लिए धैर्य संतुलन और सही दिशा की जरूरत होती है। वैसे ही जीवन रूपी नैया को संभालने के लिए कुछ बातों का संतुलन रखना पड़ता है। जीवन में काम परिवार और अपने व्यक्तिगत समय के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी हो जाता है। जैसे नैया पानी के बहाव के साथ चलती है जिंदगी में उसी तरह दिशा रखनी पड़ती है और इन सबको संभालने के लिए धैर्य सहन शक्ति की जरूरत होती है। जब जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो जाएं तो घबराने के बजाय धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें क्योंकि सिर्फ खेवैया है जो पार तो वो ऊपर वाले के हाथ में है। जीवन का ये सफर निश्चित रूप से कठिन है लेकिन चुनौतियों का सामना करने से ही अनुभव और मजबूती मिलती है। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता का लिखना है कि आज बहुत ही गहरी और दार्शनिक सोच के साथ गद्यांश को रखा गया है और सिर्फ एक शब्द नैया पर ही इसे सीमित कर एक बार फिर नई पहल की है। वैसे आपके नाम में भी नदी का रूप है। अरे वाह क्या बात है, आपको हमारे नाम का अर्थ पता है। आपने लिखा है कि जिंदगी के जल भ्रम में जब जीवन नैया फंस जाए तब जीवन में आए इस तूफानों से विचलित न हो और विश्वास साहस धैर्य सत्कर्म सकारात्मकता और सच्ची श्रद्धा की पतवार थामे तुम अपनी जीवन नैया को खेते जाओ। तब भगवान केवट बनकर इस भवसागर में जीवन नैया को जरूर पार लगाइए। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि प्रदत्त इबारत में संगीत में सुरीला सफर संजीवन भवसागर पार लगाने की महात्मय पर बखान है। सकारात्मक विचार को पतवार बनाकर जीवन नैया को खेते रहें। जीवन के ज्वार भाटा तूफानी थपेड़ों को सिर झुकाकर सामना कर जीवन नैया चलाते रहें। कभी भी यह सफर किसी भंवर में नहीं फंसेगा। सागर की तरह अपने आंतरिक तूफान को अपने तक हृदयंगम कर शांतचित रहना चाहिए। तूफान सामयिक होते हैं, स्थायी नहीं। नवकल्पना नई रूप की सुरीली सफर स्मरणीय होगी और क्यों न हो स्वयं मंदाकिनी साक्षात संग चलेगी। क्या बात है क्या बात है। और हाँ हमारे श्रोता तो भाई बड़ी अच्छी बात लिखते हैं और बड़े प्यारे अंदाज में अपनी बात कहते हैं। एक श्रोता लिख रही है कि आज तो बड़ी ही प्यारी इबारत के साथ आप आई हैं और हमें लग रहा है कि आज आप ही नाव में बैठकर आने वाली है। प्रोग्राम में अगर ऐसा है तो रास्ते में हमारा घर भी आएगा, हमें भी उसी नाव में बिठा ले रहा है। इस बार हम विविध भारती भी देख लेंगे और मुंबई शहर भी। हम इंतजार करेंगे, 1 बजे से पहले पहुंचना भी तो है। बिल्कुल सही कहा, हम नाव पर सवार ही हैं। आज हम सभी इस नाव पर और जीवन रूपी नैया पर तो हम वैसे ही भी सब सवार ही हैं, लेकिन हाँ इस कार्यक्रम में खास नौका विहार पर हम आज निकले हैं तो मजा लेते हैं इस नौका विहार का। और बताइए हमें कि भाई जो 2 गीत हमने आपको सुनवाए वो आपकी लिस्ट में शामिल थे कि नहीं। थे मुझे पता है क्योंकि मैंने देख लिया है। लेकिन जिन श्रोताओं की लिस्ट में वो गीत शामिल नहीं थे तो कोई बात नहीं, नौका विहार का तो हम आनंद ले ही रहे हैं, है ना।

लता मंगेशकर और साथी थे, फिल्म का नाम था चोरी चोरी। हमारे दो सवाल आपने नोट कर लिए होंगे कि आप कभी किसी नौका विहार पर गए, बताइए उसके बारे में, कब गए, कहाँ गए और कैसा रहा नौका विहार। और हमारा दूसरा सवाल ये था कि नौका विहार पर फिल्माए गए गीत जो आज हम बजा रहे हैं या जो गीत फिल्माए गए हैं, वो आपको सबसे, जो आपकी पसंद का गीत है वो कौन सा है और क्यों पसंद है, उसकी फिल्मोग्राफी, मतलब किस तरह से डायरेक्टर ने उस फिल्म को, उस गीत को फिल्माया है, उसके बारे में कम से कम शब्दों में बताइएगा। जैसे कि हमने आपको फिल्म कश्मीर की कली का उदाहरण दिया कि उसमें जिस तरह से गीत को फिल्माया गया है वो मुझे खासतौर से बेहद खूबसूरत लगता है।

हमारे श्रोता का कहना है कि जीवन रूपी नैया को पार तो सिर्फ एक खेवैया ही लगा सकता है और वो है हमारे प्रभु श्री राम, लेकिन ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं जो खुद अपना साथ देता है। इसलिए इस जीवन रूपी नाव को बड़ी समझदारी और सच्चाई से खेते जाइए और फिर हम पार हो ही जाएंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अपने पापा की पोस्टिंग के कारण मेरा बचपन प्रयागराज यानी तत्कालीन इलाहाबाद में बीता। प्रयागराज में यमुना जी के तट से संगम तक मैंने अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ कई बार नौका विहार का आनंद लिया जो बेहद मनोरम लगता है। पिछले वर्ष दिसंबर में चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के रामघाट पर पत्नी और बेटी के साथ मैंने नौका विहार किया है। इससे पूर्व भी चित्रकूट में कई बार हम लोग नौका विहार का आनंद ले चुके हैं। मजे की बात तो ये है कि आज के कार्यक्रम को पेश करने वाली भी वही है जिनका नाम चित्रकूट में, और एक क्या कहें आपकी तारीफ के लिए सर आंखों पर। और वही एक श्रोता ने लिखा है कि ये पंक्तियां जीवन के उस शाश्वत सत्य को रेखांकित करती हैं जिससे हर इंसान कभी न कभी गुजरता है। हम अक्सर जीवन को एक सीधी लकीर मान लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक अनिश्चित समंदर है जहां भंवर जिन्हें हम चुनौतियां कह सकते हैं और मजेदार जो असमंजस का पर्याय है का आना तय है। ये विचार हमें सिखाता है कि जब जिंदगी की नाव डगमगाए तो घबराने की बजाय अपनी स्वीकार्यता की पतवार को थामे और ज्ञान के मल्लाह पर भरोसा रखें, नैया पार लगी जाएगी। चलिए तो नौका विहार पर जब हम निकले हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म आवारा का गीत। क्या ये गीत आपकी लिस्ट में है? जरा खंगालिए। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और साथियों की, शैलेंद्र की बोल, शंकर जयकिशन की धुन।

हमारे श्रोता का कहना है कि नाव वैसे तो समुद्र किनारे रहने वाले मछुआरों की जीविका का प्रमुख साधन है, लेकिन फिल्मकारों ने नाव पर बेहतरीन गाने फिल्माए हैं। पाकिजा का चलो दिलदार चलो तो कश्मीर की गली का ये चांद सा रोशन चेहरा और जिस गली में तेरा घर, चिंगारी कोई भड़के, ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो सुनते सुनते कभी मन भरता ही नहीं है। आज नौकामय संगीत का सफर आनंदमय होगा ऐसा हम मानते हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि माँ जी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं, जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता का कहना है कि इस कश्ती की भी अजब बात है, अक्सर दूसरों को पार करवा कर खुद पानी में ही रह जाती है। इंसान और नाव में बस इतना ही फर्क है। क्या खूब बात कही है आपने। एक श्रोता लिखते हैं कि नदी के किनारे घाट पर बैठकर चांदी से चमकती लहरों के बीच धीमे धीमे चलती नाव देखने का जो सुख है वो अवर्णनीय है। ये पल बिल्कुल ऐसा है जैसे दिन और ढलती शाम के बीच कोई मीठी सी बात हो जो सिर्फ शांत लहरों के बीच सुनी जा सकती है। नदी की लहरों पर नाव में बैठे हुए अपनी परछाई इस खूबसूरत पल को चुपचाप निहारती रहती है। सब कुछ सादा और प्यारा, पेड़ों की धुंधली सी दिखाई देती पंक्तियां, गीली घास की गंध अंधकार को चीरता हुआ नदी किनारे स्थित मंदिर का कलश, ये सब नदी के हृदय है। और चप्पू चलाता मांझी पानी के सुर से सुर मिलाकर पूरी कायनात को जैसे संगीत से भर देता है। बहुत सुंदर क्लासिक लिखी है आपने इबारत। वही एक श्रोता लिखते हैं कि रामायण में जब भगवान श्री राम जी केवट की नाव में जाते हैं तो पहले माता सीता जी को हाथ पकड़कर नाव में चढ़ाते हैं, यानी कि कोई भी यात्रा हो धर्म पत्नी को आगे रखकर उसके बिना यात्रा पूरी नहीं होती है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज की जो इबारत है आध्यात्मिक चौखट पर लाने का एक अच्छा प्रयास किया गया है और इस भव सागर में विभिन्न प्रकार के भव जंजाल रूपी उर्मियों से ही हिचकोले खाती जीवन रूपी नैया को पार लगाने हेतु कुशल ही नहीं अपितु चतुर सेवक केवट जैसे मल्लाह की अपेक्षा की गई है। ये हर एक के हिचकोले खाती जीवन रूपी नैया को पार करते रहने का बहुत ही सरल उपाय है, किंतु इस दर तक भी कितने पहुंच पाते हैं, और वो भी जबकि हम केवल इतने शब्दों के बीच जीवन नैया पे ही उलझे रहेंगे, फिर मल्लाह के गुण और अवगुणों पर कैसे पहुंच पाएंगे। अरे भाई, इसके लिए हमें कुशल ही नहीं अपितु चतुर नाविक भी तो बनना पड़ेगा। बहुत सुंदर इबारत लिख रहे हैं हमारे श्रोता, हमें तो पढ़कर बड़ा मजा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि नैया जब पानी पर उतरती है तो लहरों से समझौता नहीं करती, उनसे रिश्ता बना लेती है, शायद इसलिए वो हर मुश्किल सफर को आसान बना देती है। किनारे पर खड़ी नैया सुरक्षित जरूर रहती है, लेकिन उसकी असली पहचान तो सफर से ही बनती है। एक श्रोता का लिखना है कि आज की इबारत तो सीधे तौर पर जीवन और अध्यात्म से जुड़ी है। जीवन की क्षणिकता, नश्वरता, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन जीने के साहस का प्रतीक।

ठीक है, मनुष्य जीवन एक कागज की नाव के समरूप है। मानव जीवन शरीर सांसारिक आशाओं का द्योतक है। जिस प्रकार कागज की बनी नाव का संसार रूपी सागर की अथाह पानी की अनंत गहराई में कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, उसी प्रकार मनुष्य जीवन भी क्षणभंगुर होता है। बहुत सुंदर, आपने आप सभी ने अपनी इबारत हमें लिख भेजी है। मन तो कर रहा है कि इन इबारतों को पढ़ते ही जाएं, लेकिन अब हमें थोड़ा सा संगीतमय भी होना पड़ेगा। तो आपके लिए लेकर आए हैं हम फिल्म उपहार का गाना, मुकेश और साथियों की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन। ये गाना भी आपकी लिस्ट में शामिल है, जरा खंगालिए है।

हमने आपसे सवाल किया था कि फिल्म सवेरा का जो गीत आपने सुना था ओ परदेसी, उसमें नायक और नायिका कौन बैठे दिखाई देते हैं नाव पर। आपने अभी तक जवाब ही नहीं दिया, हम तो ढूंढ रहे हैं। खैर, आपने जवाब दिया कि नहीं, हमें तो जवाब देना पड़ेगा। मीना कुमारी और अशोक कुमार एक नाव पर अलग से बैठे हुए दिखाई देते हैं। और हमने ये भी पूछा था कि इस फिल्म के संगीतकार कौन है, जिनका नाम हमने शैलेश बताया था। पूरा नाम है शैलेश मुखर्जी। अगर आपने सही जवाब दिया है तो हमें मिल जाएगा, तो हम जरूर उसको पढ़ेंगे। और अब हमने जो सवाल हमारे श्रोताओं से किए थे, श्रोताओं ने जवाब देने शुरू कर दिए हैं। आप लिखते हैं कि भाई मेरी लिस्ट में मुकेश जी के गीत बहुत ज्यादा हैं, जो मुझे बहुत पसंद हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाह वाह, गीत संगीत में ही खो गए हैं और इस गाने में ही नौकायन में हो गए हैं। माँ जी नैया ढूंढे किनारा, इस गीत से हमें बेहद मजा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि ऐसी कोई मौज नहीं जिसको कोई खोज नहीं, कोई ना कोई सबको लगता है प्यार, क्या कहना है इस गीत का। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि नौका विहार तो बहुत बार किया है, पर पन्ना सफारी के दौरान कैन नदी में किया हुआ नौका विहार ताम्र याद रहेगा। साफ स्वच्छ पानी, नीचे तक स्पष्ट दिखाई देती रेत और पत्थर, साथ में चारों ओर घना जंगल, आह क्या ही खूबसूरत नजारा था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि केवट बड़ा चतुर और होशियार था, उसने प्रभु राम से कहा कि हम और आप दोनों एक ही हैं, मैं नाव से नदी पार करता हूं और आप भवसागर से पार करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चेन्नई, गोवा, थाईलैंड, इजिप्ट सभी समुद्र से घिरे हैं और सब जगह घूम के आई हूँ। क्या बात है, थोड़ा सा बताते कैसा लगा आपको वहां घूमना, तो हमें भी अच्छा लगता, हम भी मन की आंखों से नौकायन कर लेते। वही एक श्रोता लिखते हैं कि कटी पतंग का जो गीत है वो मुझे बेहद पसंद आता है और ये जो गीत आपने बजाया मांझी नैया, ये गीत बहुत ही प्यारा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी 14 गीतों की लिखी हुई इबारत में पहले नंबर पर लिखा हुआ गीत शामिल हुआ है, मांझी नैया ढूंढे किनारा, तो बधाई हो आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे गाने हैं जो हमें पसंद हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बिहार से हूं, जहां नदियों पर पुलों की बहुत कमी थी। हमारे जमाने में गंगा नदी पर एक सिर्फ पुल, एक ही पुल था, इसलिए सभी गंगा पार नावों से ही करते थे। पर मुझे गंगा की वो शाम की याद आ रही है जब मैं और मेरा दोस्त नाव पर यूं ही सवार थे। सूर्य भगवान अस्ताचल में प्रवेश कर चुके थे, आकाश में लालिमा छाई हुई थी और हम दोनों और मेरा नाविक बस इतने ही थे। तभी मेरे दोस्त ने गुनगुनाना शुरू किया, वो शाम कुछ अजीब थी। उस समय मैंने फिल्म खामोशी नहीं देखी थी, लेकिन वो गाना मुझे उस समय बहुत सुंदर लग रहा था। और एक बात मैं आपको कहूं, हमारा अगला गाना भी यही है। हाँ चलिए थोड़े से और संदेश पढ़ लेते हैं, फिर आपको सुनवाते हैं फिल्म खामोशी का ये गीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारा गीत आपको याद है ना मंदाकिनी जी? याद तो है, लेकिन वो गीत आज हमने शामिल किया है कि नहीं, ये तो आपको अंत तक कार्यक्रम में सुनना पड़ेगा। वहीं श्रोता लिखते हैं कि नौका विहार करना मुझे बहुत पसंद है। हम जब कश्मीर घूमने गए थे तब हाउस बोट में 3 दिन रहे और शिकारे पर बैठकर लेक की सैर की। वहीं चार चिनार नामक स्थल देखा। जहां भी घूमने जाती हूं वहां झील होगी तो नौका विहार जरूर करती हूं। केरल में पेरियार नदी में, नैनीताल के झीलों में, अरे वाह आप नैनीताल भी गई, महाबलेश्वर जैसी बहुत सी जगहों का आनंद मैंने लिया है, बहुत खूब। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मैं पहले आसाम में रहता था, तब एक नौका में बैठने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। उस समय डर भी लगा, सोच रहा था कि उस समय पता नहीं नौका कैसे पार लगेगी नदी पर, साथ में और भी व्यक्ति थे, हौसला बना रहा था। पर उस समय मेरे मन में एक सवाल उठा कि पानी तो बहुत ज्यादा है, इतना जैसे दुनिया में पानी ही पानी है, जमीन तो दिखाई नहीं दे रही, इतना पानी तो शायद पूरी दुनिया को ही डुबो देता है, ऐसा मुझे डर लग रहा था। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारी जगह मैंने घूमा है, अभी 2-1 साल पहले ही भेंट द्वारका जाते समय नए समुद्री पुल के उद्घाटन से पहले स्टीमर से समुद्र पार कर बेट द्वारका गए थे और कन्याकुमारी में भी स्वामी विवेकानंद स्मारक स्टीमर से गए। भले ही अपने गंगा जी में नाव पर सवार न हुए हों, लेकिन अमरकंटक नर्मदा नदी पर जाना चाहते हैं। अच्छा, और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नौका विहार का सबसे अच्छा गाना मुझे लगता है फिल्म सफर का।

नदियां चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा। बहुत ही प्रेरणादायी शब्दों से इस गीत को लिखा है। आदमी कितना ही हताश परेशान हो, उस गाने को सुनकर नए उत्साह से आगे बढ़ने की और कूच कर देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आवारा फिल्म का गाना कम ही सुना है, सिर्फ देखते समय ही सुना है। कयास लगाना कठिन है लेकिन गाना बेहद सुंदर है। तो चलिए सुनते हैं फिल्म खामोशी का गीत किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार साहब की बोल है, हेमंत कुमार साहब की धुन।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि वो शाम कुछ अजीब थी, एक गाना जो अभी आप सुना रहे हैं, वो शाम कुछ अजीब थी मेरा सबसे पसंदीदा नौका विहार का गाना है, जहां प्यार की उत्कटता और विषाद को एक साथ दिखाया गया है और सिर्फ चेहरे के हाव भाव गीत के अनुपम शब्दों को सजीव कर रहे हैं। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दिल ने फिर याद किया फिल्म का शीर्षक गीत का सुंदर नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य के बीच नाव का दृश्य मन मोह लेता है। रहमान, धर्मेंद्र और नूतन की प्रभावशाली भूमिका वाली ये जो गीत है वो मुझे बेहद पसंद है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि परदेसियों से ना आंखियां मिलाना वाला गीत मुझे बेहद पसंद है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि करीब 2000 के आसपास मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स आते जाते और दूसरे दिन आपके हॉल के कार्यालय के पास के गोराई बीच से एसलवर्ड जाना हुआ था। अच्छा, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर में अभी तक जितने भी गीत बजे हैं उनमें से तो एक भी हमारी लिस्ट में नहीं है। अरे, फिर आपकी लिस्ट में कौन से गाने थे? वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म मिलन का गीत मुझे बेहद पसंद है। सुनील दत्त और नूतन जो नाव में बैठकर गाने गाती हैं वो गाना बहुत ही पसंद आता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप लोग जो गीत सुनवा रहे हैं वो बहुत ही बकवास गीत हैं। एक भी ऐसा गीत लोकप्रिय नहीं सुनवाया है जिसको सुनकर मन खुश हो। जब हमने विषय सुना था तब लगा था कि एक से बढ़कर एक मनभावन गीत सुनने को मिलने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल बेकार चयन किया गया है।

नहीं आपको आपकी पसंद और हमारी पसंद शायद नहीं मिलती होगी, यही कह सकते हैं, है ना। वही एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत ही शानदार है और वास्तविकता से जुड़ी भी है। है कौन यहाँ पर जिसकी जीवन रूपी नैया दुखों रूपी तूफानों से न डगमगाई हो, लेकिन जिसने भी सच्चे मन से अपने परम पिता परमेश्वर को याद किया, उसका जो है उसकी डगमगाती नहीं है, सही हो गई है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में कागज की नाव बनाते थे, अब नाती के लिए बनाकर फिर से बचपन को जी लेते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप बीच में जो चिंगारी कोई भड़के वाली गीत की धुन सुनवा रही है, उसमें बहुत ही आनंद आ रहा है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो आज जो गीत आप सुनवा रही हैं वो बेहद पसंद आ रहे हैं और आप ही के नाम पर आधारित नदी पर बात हो रही है, लेकिन हम अगर 1986 की बात करें तो रेलवे सर्विस की परीक्षा देने के लिए कलकत्ता गया था। आने जाने का रेलवे पास रेलवे डिपार्टमेंट ने ही हमें दिया था। परीक्षा देने के बाद भी वो पास 3 दिन तक मान्य था। इस दौरान मैंने कलकत्ता और हावड़ा शहर घूम लिया। इसी दौरान हावड़ा ब्रिज के नीचे बहती हुगली नदी में नाव की सवारी करने का मौका मिला, जो बहुत ही रोमांचित रहा। इसी तरह ब्रिज घाट गढ़ मुक्तेश्वर में नाव की सवारी करने का मौका मिला। इसके अलावा दिल्ली में यमुना नदी और कर्तव्य पथ इंडिया गेट के पास बहती हुई धाराओं में भी नैया में सफर करने का मौका मिला है। और उम्मीद करते हैं कि आज ये सभी गाने उन पुरानी यादों को ताजा कर देंगे। बिल्कुल ताजा तो कर ही रहे हैं, आपको लग ही रहा है कि आज हम जो गीत सुनवा रहे हैं आपको अपने उन बीते दिनों की याद आ गई है ना। चलिए सुनते हैं अगला गीत। मुकेश की आवाज, फिल्म का नाम कटी पतंग, आनंद बख्शी की रचना, राहुल देव बर्मन की धुन। आपकी लिस्ट में एक गीत था ना।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि दो लफ्जों की है कहानी ये गाना और कहां ले चले हो मुसाफिर दुर्गेश नंदिनी का, ये दोनों गाने अभी तक नहीं बजे क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने, दो लफ्जों की है कहानी तो हमने इसलिए नहीं बजाया कि हमने सोचा कि फिर आप श्रोता शिकायत करेंगे कि भाई कितनी बार तो ये गीत और सभाओं में बज गया है और आज फिर इस गाने को मंदाकिनी जी लेकर आ गई है, तो हमने उस गाने को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया। हाँ, दुर्गेश नंदिनी का गाना तो शामिल नहीं हुआ, चलिए फिर किसी और कार्यक्रम में इस गाने को हम लेकर आएंगे। ठीक है, वही एक श्रोता लिखते हैं कि अरे वाह क्या बात है, दो जासूस का गीत पुरवैया लेके चलूं वाला, ये तो अब अगला गीत है आपकी पसंद का जो आप सुनने वाले हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर से रोज नदी या समुद्र के किनारे दूसरे किनारे डेली अप एंड डाउन करते हैं, नौकायन से सफर करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कि लोग मुंबई में ट्रेन से सफर करते हैं, बसों से सफर करते हैं, ऐसे नौकायन लोग करते हैं, रोज नौका के द्वारा सफर होता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि जब हम कनाडा गए वहां गांव नाव में बैठे किसी जन्नत से कम नहीं लगा, हम उसे कैसे बयां करें समझ नहीं आ रहा है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो गाने आप सुनवा रही हैं हमें तो ये गाने बहुत पसंद आ रहे हैं। वही एक श्रोता ने लिखा है कि एक से बढ़कर एक गाने प्रस्तुत कर तीव्र गति से कार्यक्रम का संचालन प्रशंसनीय है। वही एक श्रोता कहते हैं कि आज वो शाम अजीब हो न हो लेकिन सुरीले सफर की दोपहर बड़ी ही सुंदर हो गई है नौका विहार करते हुए छोटी बहना के संग, क्या बात है, शुक्रिया। एक श्रोता लिखती है कि सिर्फ मुझे ही फील हो रही है आज, हर गीत सुन कम रही हूँ फील ज्यादा कर रही हूँ, हूबहू नाव वाला दृश्य जहन में और जल तरंग की ध्वनि गूंज रही है जैसे तिलस्मी इबारत है ये, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि एक गाना कश्ती का खामोश सफरिया आपने नहीं आज लिया, बिल्कुल नहीं लिया, अगली बार किसी कार्यक्रम में इसे जरूर शामिल करेंगे। वहीं श्रोता लिखते हैं कि मैंने कन्याकुमारी मथुरा थाईलैंड फुकेट दुबई यूएसए नायगरा फॉल पटना से गंगा जी और चंदोद में नर्मदा जी में सभी जगह नौका विहार किया है और मुझे सबसे अच्छा नायगरा फॉल बहुत ही पसंद आया है, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म नैया का गीत लेना था, तेरे आने से सज गई ये टूटी फूटी नाव, बिल्कुल सही कहा आपने, इतने सारे गीत हैं किसे लिया जाए किसे छोड़ा जाए समझ नहीं आता है, लेकिन आज हमने उन गीतों को याद किया ये क्या कम है। चलिए बढ़ते हैं अगले कदम की ओर।

लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह और साथियों को आपने सुना। फिल्म का नाम था दो जासूस, गीतकार हसरत जयपुरी थे और संगीत दिया था रविंद्र जैन ने। इस गाने के साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम की अब मैं आपसे चाहूंगी इजाजत, ये पूछते हुए कि कैसा लगा आपको आज का ये नौका विहार। अच्छा लगा ना? तो चलिए, याद रखिएगा इस नौका विहार को, मन में संजो कर रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये नौका विहार आपको पसंद आया होगा। अब इस कार्यक्रम से, यानी सुरीला सफर कार्यक्रम से, मंदाकिनी जोशी को दे दे इजाजत। फिर मिलूंगी किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जन्म का मतलब है एक अलग सीमित रूप में आना। जैसे हम जन्म लेते हैं, हम एक नाम, एक शरीर, एक समय और एक कहानी में बंध जाते हैं। ये आना अपने साथ एक वादा या सच्चाई लेकर आता है, वो ये कि ये देह रूप एक दिन चला जाएगा। इसीलिए जन्म के क्षण में ही मृत्यु का बीज बो दिया जाता है। जन्म मृत्यु की ओर पहला कदम है। ये जीवन का सबसे अटल और अनिवार्य सत्य है। हम सब इस हकीकत को जानते हैं, फिर भी मृत्यु के नाम से, उसके भय से ही हमें कपकपी महसूस होने लगती है। यूं देखा जाए तो हर व्यक्ति अपनी जिंदगी की यात्रा में अकेला ही होता है। सुख दुख साझा किए तो जा सकते हैं, लेकिन उन्हें भुगतना तो अकेले ही पड़ता है। जीवन की शुरुआत और अंत तय है, इसीलिए हर पल को पूरी तरह से जीना बहुत महत्वपूर्ण है।

हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों अस्थाई हैं। जो भी इस धरती पर आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अंत में हमारे अच्छे कर्म और दूसरों को दी गई खुशी ही हमारे साथ जाती है, बाकी सब तो यहीं रह जाता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हमारे वर्तमान कार्य ही भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छा समय हमेशा नहीं रहता और बुरा समय भी एक दिन बीत ही जाता है। धैर्य और सकारात्मकता ही जीवन के पहियों को चलाते हैं। मनुष्य का धर्म केवल अपने कर्तव्य को फल की इच्छा के बिना निष्ठापूर्वक करना है। जिंदगी का असली खजाना धन दौलत नहीं, बल्कि वो अनुभव और सबक होते हैं जो हमें हर अच्छे बुरे दिन से मिलते हैं। ये सच्चाई हमें सिखाती है कि दिखावे और अहंकार में जीने की बजाय वर्तमान में रहकर अपने कर्मों को सुधारना ही वास्तविक जीवन है। मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो जीवन हमें मिला है उसे किस तरह जीना है ये तो हमारे हाथ में है। इसीलिए जब तक हम जी रहे हैं और हमारे प्रियजन भी जी रहे हैं, तब तक इस जीवन के एक एक क्षण को जी लें और इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएं।

हम यही सुनते आए हैं कि इस संसार का संचालन और नियंत्रण एक सर्वोच्च शक्ति के द्वारा होता है। हर प्राणी में परमात्मा का अंश मौजूद है। संसार का नियम है कि जो इस संसार में आया है उसका अंत निश्चित है। सुख दुख, लाभ हानि और जीवन के उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। इन्हें समान भाव से स्वीकार कर लेना ही सच्चा ज्ञान है। हर एक चीज का आरंभ उसके अंत के साथ ही होता है। सूर्य का उदय होता है तो अस्त भी होता है। वसंत में नए पत्ते की कोपल फूटती हैं तो पतझड़ में पूरा पत्ता ही गिर जाता है। जब हमारा कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला जाता है तब जीवन में एक खालीपन आ जाता है जिसे कोई नहीं भर सकता। ऐसे में कई दुख हमें घेर लेते हैं और जीवन की क्षणभंगुरता को लेकर मन में कई सवाल उठ खड़े होते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27

0: में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल है, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारे की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा, मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाट बद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगे। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित

0: 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंग रोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ओआरएस, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुस जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
2: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमरीका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं।

0: शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत। यह आवाज़ लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है आरजू। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था आरजू।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम का अगला गीत सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा हुआ, स्वर लता मंगेशकर का है और फिल्म का नाम है चांद और सूरज।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली पेशकश अनिल बिस्वास का संगीत, शैलेंद्र के बोल, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें, फिल्म का नाम छोटी छोटी बातें।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म सिकंदर ए आजम से लिया है। गायिका लता मंगेशकर है, रचनाकार राजेंद्र कृष्ण और धुन हंसराज पहल की।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने कैफी आजमी का लिखा हुआ लिया है, इसे संगीतबद्ध किया है हेमंत कुमार ने, स्वर है लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम दो दिल।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनिए। आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है अकेली मत जाइयो।

0: सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का नमस्कार और आरती तुम्हें भी नमस्कार। हमारी बहुत सारी सखियां इस समय में सुन रही हैं।
1: बिल्कुल चंचल, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का बहुत बहुत नमस्कार।
0: अब बताते हैं कि भाई आज किन विषयों पर बात होने वाली होगी। तो जैसा हमारे सभी श्रोता जानते हैं, गुरुवार का दिन है और होता है कहानी पद्मश्री की। एक ऐसी महिला जिसने कुछ ऐसा काम किया है जिसे पूरे देश दुनिया में जाना गया, उन्हें मिलता है पद्मश्री, उनकी हम बात करेंगे। तो वो कौन है?
1: वो है बसंती देवी बिष्ट, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला जागर लोकगायिका हैं।
0: बिल्कुल, इनके बारे में आज बातचीत होगी।
1: हाँ।
0: और आज एक खास दिन भी है, सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाएगी।
1: बिल्कुल, और आज मुझे कुछ कहना भी होगा, तो उसके अंतर्गत हम बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा क्या रहा आपका।
0: बिल्कुल, सबका कुछ ना कुछ अनुभव रहा होगा,
1: क्योंकि शॉपिंग सभी करते हैं ऑनलाइन।
0: हाँ।
1: तो आपने अगर शॉपिंग करी है तो उसमें आपने ऐसी क्या चीज ली कि आपको पछतावा कि अब हम कभी नहीं ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे।
0: तो इस बारे में जरूर अपने अनुभव हमारे साथी हमसे साझा करेंगे। और कुछ उपयोगी टिप्स होंगे जो हमारी सखियां हमें बताएंगी कि खाना बनाते समय कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत उपयोगी हो सकती हैं। भाई खाना अगर जल्दी पकाना है तो क्या, तुरंत घर पे मेहमान आ गए तो फटाफट क्या बन सकता है, तो इस तरह के जो
1: भी क्या चीज अगर कुछ कम ज्यादा हो गया है तो उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं उसके बारे में भी बात।
0: इसके अलावा लंबे समय तक अगर आपको सहेज कर रखना है किसी खाने पीने की चीज को, चाहे वो पकी हुई है या कच्ची है, उसके बारे में भी उपयोगी टिप्स हमें सखियां बता सकती हैं। ये सारी बातें करेंगे विस्तार में, लेकिन पहले गाना सुन लें।
1: हाँ बिल्कुल, गीत सुनते हैं।

0: तो हम बात कर रहे हैं भाई
1: बसंती देवी
0: जो
1: बिष्ट
0: है उत्तराखंड की पहली जागर गायिका।
1: की।
0: और हम बता दें कि इनका जन्म हुआ 1953 में उत्तराखंड के चमोली जिले के लुबानी गांव में। और
1: जी
0: उनकी माँ बहुत अच्छा गाया करती थी, और अपनी माँ के साथ जो वो जो गीत सुनते सुनते बड़ी हुई, तो गांव में जो मेले लगते थे, जो त्योहार होते थे, तो माँ के साथ वो गाने भी गाया करती थी। और इसी दौरान गाते गाते उन्हें भी इन गीत से, उस संगीत से, जो लोक संगीत था वहां का, उससे प्यार होने लगा। और भाई जब आपके खून में कोई चीज रच बस जाती है ना, तो जब आप उस चीज को गाते हैं, तो वो बड़ी दिल से आवाज निकलती है।
1: बिल्कुल। और वो पूरा जो माहौल था ना, वो बचपन से उनको मिल गया था,
0: जी
1: और गायन के इस प्रेम की वजह से उन्हें पारंपरिक जागर गायन शैली को नई पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जागर गायन करने वाली पहली प्रमुख महिला कलाकार मानी जाती हैं। ये जागर कला उत्तराखंड की लोक परंपरा से जुड़ी हुई है, जिसमें देवी देवताओं और लोक देवताओं को याद किया जाता है।
0: और आरती, ये भी ध्यान देने वाली बात है

0: कि जो जागर शैली परंपरागत रूप से पुरुष पहले प्रस्तुत
1: हाँ
0: किया करते, जैसे आपने भी कहा ना कि वो पहली महिला गायिका है,
1: जी
0: तो महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में आ सके ना, इसीलिए इस परंपरा को तोड़ने वाली बसंती देवी ही रही। और तब से लेकर आज तक वो लोक गायन की ये जो परंपरागत शैली है, यानी कि जागर गायन की हम बात कर रहे हैं, इसको संरक्षित करने के प्रयास में लगी हुई हैं वो, और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए इसके भी प्रयास कर रही हैं। और उनके बारे में एक बात और भी गौर करने वाली है कि 5वीं कक्षा की जिला बोर्ड परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने वाली भी वो पहली छात्रा
1: मतलब
0: थी।
1: बहुत कुछ उन्होंने पहला काम किया
0: जी
1: है तो, और उन्होंने आगामी 3 वर्षों के लिए आगे की पढ़ाई के लिए प्रति माह 20 रुपए की छात्रवृत्ति से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन वो आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सकी क्योंकि उच्च विद्यालय उनके घर और गांव से बहुत दूर था और गांव के स्कूल में 5वीं कक्षा से आगे की जो पढ़ाई होती है वो नहीं होती थी, और यही मुख्य कारण था कि वो आगे की पढ़ाई इतनी जारी नहीं रख पाई थी।
0: और फिर क्योंकि पहले के जमाने में भी बच्चियों के विवाह भी छोटी उम्र में हो जाया करते थे, गांव में खास तौर पे ऐसा हुआ करता था, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ कि जब वो सिर्फ 15 साल की उम्र थी तो उनका विवाह हो गया, और तोपखाने के एक सैनिक में जो थे उनके साथ उनका विवाह हुआ, और जीवन का अधिकांश समय एक गृहिणी के रूप में ही उन्होंने अपना बिताया। पेशेवर संगीत करियर की शुरुआत उन्होंने की जब वो 40 बरस की हो गई थी, और अपने पति के साथ जब वो जालंधर गई तो वहां उन्होंने एक प्राचीन कला केंद्र में फिर से एक बार संगीत सीखने की शुरुआत की, और उनकी बेटी ने उनके शिक्षक के तौर पर हारमोनियम बजाने की शुरुआत की।
1: हाँ, उनकी बेटी के शिक्षक से उन्होंने उन्हें सिखाया था बजाना,
0: जी
1: तो यहीं से उनके करियर की शुरुआत भी हुई। बाद में उन्होंने भजन, फिल्मी गीत, त्योहारों जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में गाना शुरू किया। इसके बाद उनके पति सेवानिवृत्त हो गए और परिवार देहरादून में जाकर बस गया। बाद में उन्होंने 1996 में नजीबाबाद स्थित अखिल भारतीय रेडियो स्टेशन में काम करना शुरू किया, यानी वो रेडियो से भी जुड़ी हुई थी, और वो
0: और जुड़ी
1: आकाश
0: हुई नहीं, वो
1: जी
0: ए श्रेणी की
1: ए
0: कला
1: श्रेणी की कलाकार
0: जी।
1: थी। देखिए, मतलब जमीनी स्तर से उन्होंने अपना काम करना शुरू किया।
0: और साल 1996 की हम बात कर रहे हैं, तब वो पहली महिला प्रधान भी बन गई अपने क्षेत्र की। और कुछ समय के बाद जब उनको लगा कि बचपन में अपनी माँ और गांव के अन्य बुजुर्गों से जो संगीत की अनूठी शैली की जो प्रतिभा उन्हें मिली है, जिसे जागर गायन कहा जाता है, तो उन्होंने महसूस किया कि लोग इसको गा ही नहीं रहे, इसे भूल रहे हैं, और शास्त्रीय गीतों को खोज करने के लिए अपनी पुरानी धुनों में प्रस्तुत करने का दायित्व इन्होंने फिर संभाल लिया।
1: जी, और बसंती देवी बिष्ट की गायकी थोड़ी नाक से निकलने वाली आवाज और लय की धीमी गति के लिए जानी जाती है, जो उत्तराखंड की गढ़वाली गायन शैली का विशिष्ट रूप माना जाता है। बसंती देवी बिष्ट की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं गोरिया रे, धोखेबाज दगड़िया, न्योली, प्यारी सुमना, दाजीव बॉर्डरा और फोन करना, ओ सियाली साली रुकमा, पारा भीरा जादियो और देवारा जारे जू, और भी बहुत सारी हैं।
0: तो हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, अगर वो सुन रहे हैं और इस क्षेत्र के वो लोग हैं, तो वो जरूर जानते होंगे इन पंक्तियों को, जो तो आपने बताई भी कि
1: जी,
0: उनके प्रसिद्ध गीत कौन से हैं और ये किस तरह गाए जाते हैं, वो इस बारे में भी जानते होंगे
1: ये रुकमा वाला तो मैंने सुना हुआ
0: जी।
1: है
0: और बसंती देवी की जो उपलब्धियां हैं, उनके जो पुरस्कार हैं, अगर इनकी बात करें तो बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिले, और मध्य प्रदेश द्वारा सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मातोश्री अहिल्या देवी सम्मान से उन्हें नवाजा गया। लोक संगीत के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा, इसके लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो बात लोक धुनों की हो रही है, एक ऐसा गीत सुने जिसमें कुछ लोक धुन जैसी झलक मिलती हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती, ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में हम बात कर रहे थे ना कि भाई
1: बिल्कुल
0: सबका कुछ ना कुछ अच्छे के साथ साथ बुरे अनुभव भी जुड़े होते
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: बहुत सारे लोगों के रहते हैं अनुभव, कभी अच्छे भी रहते हैं तो बुरे भी रहते हैं।
0: और आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई बुरा अनुभव रहा और आपको पछतावा हुआ कि क्यों आपने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, इसे तो अच्छा होता कि थोड़ी से हम कष्ट लेते, बाजार जाते और वो
1: बिल्कुल
0: चीज खरीद लाते।
1: बिल्कुल, क्योंकि बाजार जाके उस चीज को छू के देखना, पकड़ के देखना, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना उस दुकानदार से, वो एक अलग बात हो जाती है। और जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम उस ऐप पे देखते हैं कि उसके बारे में क्या जानकारी दे रखी है, और पूरी दे रखी है भी कि नहीं वो भी हमें नहीं पता होता है।
0: कई बार तो हम सिर्फ लुभावने ऑफर देखकर वहां से शॉपिंग के लिए चले जाते हैं।
1: बिल्कुल, या हम देखते हैं कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है।

0: और जब सामान हमारे पास आता है तो या तो उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, या तो एक के साथ एक फ्री वाला जो ऑफर था ना,
1: हाँ
0: वो फ्री की चीज मिली नहीं और हमसे डबल पैसे में वो चीज
1: बिल्कुल
0: हमें सिंगल ही दे दी गई। तो
1: जी
0: इस
1: हाँ
0: तरह के अगर अनुभव रहे हैं तो इसके बारे में देखो ना कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत सुविधाजनक है, लेकिन कई बार लोग आकर्षक ऑफरों और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं होती, और बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या फिर बेहतर और कीमत से बेहतर नहीं होता, कीमत कहीं ज्यादा होती है तो पछतावा होता ही है। इसीलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी और उसके जो रिव्यू हैं वो कीमत की जानकारी अच्छी तरह कर लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है मेरे जो लिखते हैं कि बात कोई भी हो उसके दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू, उसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग के भी दो पहलू होते हैं। आप कोई भी चीज कहीं से भी कभी भी घर बैठे ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, डिस्काउंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अन्य खरीदारों के रेफरेंस पढ़ सकते हैं, फिर भी इसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। आप उत्पाद को फिजिकली देख कर या छू नहीं सकते, फिटिंग का भी पता नहीं लगा सकते। उसके अलावा आजकल ऑनलाइन फ्रॉड की ज्यादा संभावना रहती है, असली के बदले नकली उत्पाद भेज दिया जाता है, तब या कोई चीज पसंद नहीं आने पर वापस भेजने के बाद रिफंड प्राप्त करने में ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये प्रलोभनों से आप बच के रहिए।
0: बिल्कुल, हमें किसी ब्रांड नेम को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इतने बड़े ब्रांड का सामान हमें कम कीमत में मिल रहा है, लेकिन उसी की जो दूसरी तीसरी कॉपी होती हैं,
1: हाँ
0: अब दरअसल ये वो वाली कॉपीज होती हैं जिन्हें
1: बिल्कुल
0: सेकंड या थर्ड में हम कई लोग निकालते हैं। तो हमें सिर्फ फोटो देखकर अंदाजा नहीं हो पाता, और इस तरह की जो प्रलोभन है
1: बिल्कुल
0: उनमें फंसकर हम गलत चीज
1: बिल्कुल।
0: खरीद
1: और
0: लेते
1: कई बार
0: हैं।
1: ऐसा होता है ना, जो हम कपड़े मंगाते हैं उसकी फिटिंग उसमें दे रखी होती है जो वो नहीं निकलती,
0: जी
1: या रंग एकदम अलग होते हैं उससे,
0: हाँ
1: तो इस तरीके की चीजें भी काफी होती हैं। कपड़ा जो दिया होता है कि ये वाला कपड़ा है, वो कपड़ा भी नहीं होता, तो इस तरीके के फ्रॉड काफी
0: अब
1: होते हैं।
0: रंग की तो जब आपने बात कही तो मान लीजिए आपके और मेरे दोनों लोगों के हाथ में अलग अलग फोन है, एक ही रंग पर हम जब पिक्चर क्लिक करते हैं तो आपके फोटो से वो कलर अलग आ सकता है, मेरे मोबाइल से जब पिक्चर क्लिक की जाएगी तो उसका रंग थोड़ा अलग हो सकता है। तो इसी तरह की कुछ बातें होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, जो रंग हमें दिखते हैं वो असल रंग से थोड़े से भिन्न हो सकते हैं, और किसी भी तरह की चीज हम खरीद सकते हैं ना। तो
1: बिल्कुल
0: हमारे एक श्रोता जिन्होंने कुछ पौधे खरीदे वो अपना अनुभव लिख रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में पौधों की खरीदारी मैं करती हूँ, कुछ पौधे अच्छे मिलते हैं, कुछ खराब भी निकल जाते हैं, और कुछ पौधे जिनकी मैं खरीदारी करती हूँ वो आम नर्सरी में नहीं मिलते हैं तो ऑनलाइन ही हमें खरीदने
1: हाँ।
0: पड़ते
1: और
0: हैं।
1: लेकिन ये चंचल जी, हमने भी मंगाए हैं कई बार पौधे मंगा, जैसे पौधे जब हम मंगाते हैं तो ये देखना चाहिए हमें कि उसमें वो क्या दे रखा है, उसमें पूरी डिटेल क्या रखी, कि वो वापस हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि फिर हम बाद में से वापस करने की कोशिश करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि नहीं वापस नहीं हो सकता है ये।
0: इसी बात पर देखिए एक बड़ा अच्छा सा कमेंट है, नॉन रिटर्नेबल आइटम। आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि सामान पसंद ना आने पर पता चलता है कि इसे वापस या एक्सचेंज किया जा सकता है या नहीं, कई बार हिडन चार्जेस भी इसके लिए होते हैं और रिटर्न करने के लिए अलग से शॉपिंग चार्जेस भी देने पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इस
1: और
0: तरह की जो भी पॉलिसीज हैं आप उनको पहले से
1: पहले
0: पढ़कर
1: से पढ़ना
0: ही,
1: चाहिए।
0: ताकि आपके साथ में कोई धोखेबाजी दगाबाजी ना हो।
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि कई बार लोग आकर्षक ऑफर्स के और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या बेहतर कीमत कहीं और मिल जाती है तो उन्हें पछतावा होता है। इसलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी, रिव्यू और कीमत उस अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए।
0: और इसी में आगे एक और कमेंट हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा उम्मीद बनाम हकीकत, यानी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के बारे में लिख रहे हैं, इसका शिकार हमें होना पड़ता है। स्क्रीन पर दिखने वाली चीज, चमचमाती चीज, जब घर पे पहुंचती है तो वो पूरी तरह से अलग निकलती है। और नॉन रिटर्नेबल आइटम्स भी होते हैं, पसंद ना आने पर पता लगता है कि इसको तो एक्सचेंज किया ही नहीं जा सकता और अलग से हमें बहुत सारा भुगतान करना पड़ जाता है।
1: बिल्कुल। बहुत सारी चीजें होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, जब करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें कि आपको क्या खरीदना है, उसकी जरूरत है भी कि नहीं है, इस तरह से करें। और पढ़ लें पहले पूरी जो
0: जी
1: चीजें दे रखी हैं कि वो क्या चीज है, वो वापस हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पछतावा ना होता कि
0: कुछ बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हम तोहफे में देने के लिए कोई चीज ले
1: हाँ।
0: रहे होते हैं, हमने मंगाई बिना खोलकर भी नहीं देखा और वो जिस तरह की पैकिंग में आई थी उसी पर एक और गिफ्ट रैप हमने लगाया और हमने सामने वाले को तोहफे के रूप में वो दे दिया। जब सामने वाले ने खोला तब हमें पता लगता है कि उनके पास कोई अगर कम उच्च स्तरीय वाली चीज गई है तो वो जब वो शिकायत करते हैं या नहीं भी करते, सिर्फ कहकर उस बात को बता देते हैं, तो बड़ा अफसोस मन में आता है।
1: बिल्कुल, और अच्छा भी नहीं लगता है ना कि किसी को एक ऐसे उपहार दे रहे हैं हम और वो भी अच्छा ना निकले, तो जरूरी है। हम बेहतर होगा कि

0: जितना ज्यादा हम जा सकें बाहर वहां से खरीदें।
1: बिल्कुल, देने वाले की नीयत भले अच्छी थी, उसने उसके लिए कीमत भी अच्छी चुकाई, लेकिन कंपनी ने अगर कोई धोखा किया है तो आपके पास का कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वो निम्न स्तरीय सामान था। इस तरह की धोखेबाजी ना हो। और भी कमेंट्स हम पढ़ेंगे, पहले एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल एक गीत सुन लेते हैं।

0: अर्थ ये सही सही है कि ऑनलाइन शॉपिंग ने खरीदारी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन कई बार एक क्लिक के बाद में जो हम फैसला हमने लिया था और क्लिक कर दिया, वो पछतावे का कारण बन सकता है। और सबसे बड़ा पछतावा अक्सर वो चीज़ होती है जो तस्वीर या विज्ञापनों में बड़ी शानदार दिख रही होती है, लेकिन उम्मीदों पर हमें हमें खरीद नहीं उतरती जब वो हमारे हाथ में होती है।
1: बिल्कुल.
0: सेल देख कर खरीद ली जाती हैं चीज़ें, कपड़ों के रंग और गुणवत्ता जो है वो तस्वीरों से बहुत अलग होती है।
1: और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग से बड़ा में सबसे बड़ा पछतावा, भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. ये तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के निर्णय से पहले ही आपको सोचना चाहिए था. खैर कोई बात नहीं है, अब एक बार खरीद ही लिया तो मिले रद्दी के सामान को देख कर घबराइए मत, अभी तो उसे सीख लेकर अग्रिम खरीदारी बाजार बैठ जाकर ठोक बजा कर ही करिए. जैसे कि कोई सामान खरीदते हैं तो उसे अच्छे से देखभाल करके ही खरीदें, मगर लगता है कि इसके लिए महानगर

0: घरों में समय का भी अभाव है। और ऐसे में सब्जियों की ऑनलाइन शॉपिंग रात्रि 8 बजे की बात करें तो सस्ती और अच्छी सब्जी प्राय मिल जाती है। ऐसे ही विवेकपूर्ण वस्तुओं की खरीदारी ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन पके हुए भोजन की ऑनलाइन शॉपिंग मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए।
1: बहुत सही सलाह दी है उन्होंने। और ये बात भी सही है कि जो महानगरों की जिंदगी है, कई बार लोगों के पास काम के चलते समय नहीं होता, या त्योहारों का समय जब होता है ना, जब हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी होती है, खासतौर पर बाजारों में इतनी भीड़ होती है, तो उस भीड़ में जाने से बचने के लिए भी कई बार लोग ये काम करते हैं। और बहुत सारी चीजें अब ऐसी हो गई हैं जो घर पर 5 से 10 मिनट में जब हमें उपलब्ध हो जाती है, घर पर कोई है नहीं सामान लाने के लिए, तब तो उनमें भी धोखाधड़ी हो जाती है, चाहे वो घर के दूध, दालें, सब्जियां, ऐसी चीजें ही क्यों ना हो, तो
0: बिल्कुल।
1: सोच समझ कर ही
0: और
1: आपको करना
0: बहुत
1: है।
0: सारे लोग बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी चीज़ें जो इतनी ज़रूरी नहीं भी हैं आज ऑनलाइन मंगानी, वो भी ऑनलाइन ही मंगाने लगते हैं कि चलो हम क्या करेंगे,
1: जी
0: बाजार जाके यहीं से मंगा लेते हैं। तो फिर फ्रॉड होने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें पकी हुई जैसे इन्होंने बताया वो चीज़ें हमें नहीं मंगानी चाहिए ऑनलाइन। और जैसे कि और भी सामान है जो हम बाहर जाके ला सकते हैं आसपास से, तो वो बाहर जाकर ही खरीदारी करनी चाहिए।
1: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा होता है गलत साइज के कपड़े, खराब क्वालिटी, उत्पादों की तस्वीरों से बिल्कुल अलग दिखाई देना। इनसे बचने के लिए हमेशा ग्राहक समीक्षाएं यानी रिव्यूज जो होते हैं और जो रेटिंग्स दिए जाते हैं और रिफंड की जो नीतियां हैं, इन सब चीजों को एक बार जांच लेना चाहिए। केवल प्रतिष्ठित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करना है। यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग के मुख्य पछतावे से बचना हमें होगा।
0: बिल्कुल। और चंचल देखो, एक अंतराल का समय हो गया है,
1: जी

0: विविध भारती पर कार्यक्रम सखी सहेली चल रहा है और हम बात कर रहे थे ऑनलाइन शॉपिंग के बारे
1: हाँ
0: में। कमेंट्स और भी बहुत सारे हैं, बातें और भी हैं, लेकिन पहले एक गीत
1: गीत
0: सुनते
1: सुन
0: हैं।
1: लेते हैं।

0: याद रखोगे कि भूल जाओगे नजराने। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग के विषय में ही हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अभी फरवरी में छोटी बेटी की शादी थी, बच्चों को ऑनलाइन शॉपिंग करने का कुछ ज्यादा ही शौक होता है। शादी के कपड़े, बिंदिया, गहने, ड्रेस मटेरियल और भी बहुत कुछ उसने देखा और मंगवाया भी। इसमें से कुछ सामान ऐसा भी आया जो कि दिखाया गया वो नहीं भेजा गया, वापस करने की कोई सुविधा नहीं थी। कुछ कपड़े भी जिस साइज के मंगवाए थे उसे साइज में आए ही नहीं। जूते चप्पलों का भी यही हाल था। इसे नुकसान भी हुआ क्योंकि वापस भेजने की सुविधा नहीं थी। कुछ कंपनियों ने जैसा कहा था वैसा ही भिजवाया तब अच्छा लगा। तो मेरा तो अनुभव ये रहा कि सामान वही मंगवाना चाहिए जिसमें वापस भेजने की सुविधा हो, नहीं तो हमें धोखा हो सकता
1: हमारे एक श्रोता का कमेंट है, उफ, ये ऑनलाइन शॉपिंग,
0: है।
1: कभी खुशी कभी गम। अभी हाल ही ऑर्डर किया गया एक सामान है, उम्मीद है जो मंगवाया गया वही आइटम मिलेगा। मतलब इन्हें अभी तक उस सामान की डिलीवरी मिली नहीं है, उसके बारे में लिख रही हैं। और तब मुझे कोई पछतावा नहीं चाहिए। पिछली बार पछतावा मिला जब गोल्डन और व्हाइट पर्ल का ऑर्डर दिया था, मगर ड्रेस एक धुलाई में ही ऐसी निकली कि मेरे सारे अरमान
0: अरमान
1: भी
0: भी
1: धुल
0: धुल
1: गए हैं।
0: गए। तो वैसे एक हमारे श्रोता है वो लिखते हैं कि मैंने भी सभी बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी करें, और मैं भी सखी सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी भी ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद नहीं करते हैं।
1: आगे श्रोता लिखते हैं कि बेटे ने एक बार लैपटॉप, टैबलेट, स्क्रीन पर काम करने वाली स्टाइलिश पेन, इस तरह की कुछ चीजें मंगवाई थी जिनमें 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी थी। और जैसे ही इन चीजों को उपयोग में लाया तो पता लगा कि वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तुरंत संपर्क किया और बहुत तकलीफ हुई इन चीजों को रिटर्न करने में और अमाउंट को वापस अपने प्राप्त करने में। इसीलिए मैंने बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी किया करें। और जैसा कि आपने बताया था कि इनकी पत्नी है वो ऑनलाइन
0: हाँ
1: शॉपिंग
0: जी।
1: पसंद नहीं करती हैं, बच्चे हैं वो कर लेती
0: देखिए
1: हैं,
0: बहुत सारी चीजें अच्छी भी आ जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ चीजें खराब भी आती
1: लेकिन
0: हैं।
1: आज हम
0: हाँ
1: फिलहाल वही अनुभव ले रहे हैं
0: हाँ जो
1: जिन्हें
0: उनको
1: कभी
0: हुए।
1: पछतावा हुआ हो। जी
0: और एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि शॉपिंग की कहूँ तो भतीजे की शादी में बिटिया रानी ने कुछ कपड़े मंगवाए, सब गड़बड़ हो गया एन समय पर। फिर आखिर बाजार से तुरंत फुर्ती से दूसरे खरीदने पड़े तो पैसे गए और जो बुलाए वो भी नहीं आए। इससे अच्छा बाजार से अपनी पसंद के ही खरीदें, यही बेहतर होगा कि उनको दो बार पैसे खर्च करने पड़े, ये
1: बिल्कुल, आप
0: कहना है।
1: बहुत सारे अति उत्साहित होकर ऐसे कोई चीजें ना खरीदें, ध्यान रखिएगा। और आज बता दें कि गुरु अर्जुन देव शहीद जो हैं, उन गुरु अर्जुन देव जी का शहीद दिवस है और ये सिख धर्म के 5वें गुरु माने जाते हैं।

0: और इनका बलिदान दिवस ज्येष्ठ माह की 24वें दिन अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जहांगीर के विद्रोही बेटे राजकुमार खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ जब विद्रोह किया तो लाहौर की तरफ वो चल पड़ा और रास्ते में गुरु अर्जुन देव जी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी सहायता भी की और जहांगीर ने इसे राजद्रोह मानकर उन्हें सजा सुना दी और उन्हें बहुत सारी यातनाएं देकर शहीद किया गया था। और वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों पर समझौता करने से मना कर दिया था और सिख धर्म के इतिहास में उन्हें पहला शहीद माना जाता है।
1: जी, बहुत ही बड़ी बात है, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
0: और
1: और आज एक और
0: ये जो
1: दिवस,
0: दिन होता है ना,
1: जी
0: इस पर बहुत सारे जो गुरुद्वारे होते हैं वहां पर शबद कीर्तन होते हैं, श्रद्धालु आते हैं और छबील यानी कि मीठे प्याऊ, मीठे
1: हाँ
0: पानी की
1: हाँ
0: जो प्याऊ होते हैं वो
1: ये चीज़,
0: लगाई जाती है और
1: हाँ
0: लंगर यानी कि जो भोजन
1: लंगर
0: प्रसाद है
1: होता है,
0: उसकी व्यवस्था की
1: बिल्कुल।
0: जाती
1: और
0: है।
1: लंगर का खाना चंचली इतना इतना अच्छा, इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है ना कि मन करता है कि आप वहां रोज जाके खाएं, क्योंकि लंगर की सेवा वो हमेशा करते हैं।
0: और वो बहुत श्रद्धा
1: जी
0: से पकाया गया भोजन होता है, वो सिर्फ
1: बिल्कुल
0: भोजन नहीं होता, वो प्रसाद होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम एक और दिवस है इसके बारे में बात करें कि एक गीत सुनने पहले,
0: पहले गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल गीत सुन लेते हैं।

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।

0: ये मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो भाई खाना बनाते समय कुछ जरूरी चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, और बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त आ गई है हमारे पास, हमारे श्रोताओं ने हमें लिखकर
3: बहुत कुछ लिख डाला है भाई
2: जी।
3: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि खाना बनाते समय सबसे पहला काम सारी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए, इससे गैस की भी बचत होती है और परेशानी से भी बच सकते हैं। और खाना बनाते समय अपने मन को भी खुश रखना जरूरी है, और उसके लिए विविध भारती है ना, वो तो है। और वैसे एक बात हम कहना चाहेंगे कि क्या कभी किसी ने भजन सुनते हुए खाना बनाया है? बना कर देगी, स्वाद में अंतर जरूर नजर आएगा। आप चाहे भजन सुने या फिर कोई गीत अपने मनपसंद सुने, खाने में स्वाद तो आएगा ही आएगा जब हम खुश होकर बनाएंगे।
2: और बिल्कुल सही बात है, अगर आप कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, आपकी भावना बहुत अच्छी है उस खाने को बनाने के लिए, बहुत प्रेम से किसी के लिए कुछ पका रहे हैं, तो वो खाना वैसे भी स्वादिष्ट बनेगा। अमूमन खाना जो है घर में महिलाएं ही पकाती हैं, पुरुष नहीं पकाते हैं, लेकिन हमारा ये जो कार्यक्रम है,
3: चंचल जी ऐसा मत कहिए, क्योंकि आजकल पुरुष बहुत ज्यादा काम करने लगे हैं,
2: लेकिन मैंने कहा अमूमन की
3: हाँ, ये तो है
2: ना। तो हमारे जो पुरुष होता कार्यक्रम को सुनते हैं और जो कभी कभार रसोई में खाना भी पकाते हैं, उन्हीं का संदेश मैं पढ़कर सुना रही
3: हूँ। बिल्कुल बिल्कुल,
2: मैं खाना नहीं बनाता इसलिए कोई खास टिप्स नहीं है मेरे पास।
3: अच्छा।
2: पर सुबह की पहली चाय मैं हमेशा बनाता हूँ, तो एक टिप है मेरे पास
3: जी। बिल्कुल,
2: चाय की एक बूंद भी प्लेटफॉर्म पर गिरती ही इसे तुरंत साफ करता हूँ, यानी कि खाना बनाते वक्त साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत बड़ी टिप है।
3: बहुत जरूरी,
2: ऐसा इसलिए भी होता है कि अगर पुरुष जो होते हैं अगर किचन में खाना बनाया तो वो क्या करते हैं, बस खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए इसका तो ध्यान रखेंगे, लेकिन किचन वही पूरी फैली पसरी छोड़कर वो आते
3: तो है।
2: तो इन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा है कि इनकी श्रीमती जी उस चीज से नाराज ना हो कि भाई चाय की बूंद भी गिरी है तो वो ना हो,
3: एकदम साफ सुथरा किचन मिले। बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अनाज दाल और बेकिंग के टिप्स बता रहे हैं वो, तो इसमें चावल के बारे में बता रहे हैं। तो चावल उबालते समय पानी में कुछ बूंदे नींबू के रस या घी की डाल दी जाए, इससे चावल के दाने आपस में चिपकेंगे नहीं। और अगर आपको दाल जल्दी पकाना है तो सूखी दालों या छोलों को पकाने से पहले कुछ घंटे पानी में भिगो दीजिए, इससे वो जल्दी पकते हैं और गैस की बचत भी होती है। और आटा गूंदते समय गुनगुने पानी या थोड़ी सी दूध का इस्तेमाल करने से रोटियां बेहद नरम और फूली हुई बनती हैं।
2: इसी तरह से कुछ और टिप्स हमारे पास आए हैं कि हरी सब्जियों का रंग, जैसे मटर पालक इस तरह की जो भी होती हैं सब्जियां, उनका रंग बरकरार रखने के लिए चुटकी भर चीनी डालने से उनका हरा रंग बना रहता है। विटामिन का अगर संरक्षण करना है तो सब्जियों को बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में काटने की बजाय या पानी में उबालने की बजाय बड़ा थोड़ा मोटा काटें, और पानी में उबालने के लिए उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं तो ऐसा ना करें, इसीलिए इन्हें मध्यम आकार में काटें। और आलू बैंगन अक्सर काले पड़ जाते हैं तो इन्हें जैसे ही काटें तुरंत नमक वाले पानी में रखें, जिससे वो काले नहीं पड़ेंगे। और लहसुन की कलियों को कुछ देर गर्म पानी में भिगो कर रखने से छिलका बड़े आसानी से निकाला जा सकता है।
3: वाह क्या बात है। और एक हमारी श्रोता है जो बहुत ही, उन्होंने तो बहुत ही मजेदार सा कमेंट किया है, गाना ही लिख दिया है। उन्होंने लिखा है कि खाने बनाने का समय का टिप्स हम क्या दे सकते हैं भला, जिसे खाना बनाना ना आया, ना गाना आया, ना बजाना आया, सिर्फ और सिर्फ दिलबर के हाथों का खाना खाना आया। तो मतलब ये इन्होंने खाना खाना सीखा है, खाना बनाना नहीं सीखा है। कोई बात नहीं, आप अभी भी आप सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं,
2: नहीं भी खाना बनाते तो सिर्फ अगर मदद भी करेंगे ना
3: थोड़ी
2: अपनी बहन की, माताजी की, श्रीमती जी की, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान ले आइए, ये भी बहुत बड़ी बात।
3: बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी तैयारियां करा दीजिए, सामान ले आइए या उनके लिए कुछ अच्छा ले आइए जिससे वो खुश हो जाए और अच्छा अच्छा खाना खिला पाए।
2: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि खाना बनाना एक कला है जिसे थोड़ी सावधानी और सही तरीकों से और बहुत आसान बनाया जा सकता है। खाना बनाने से पहले सभी आवश्यक सामग्री तैयार कर लेनी चाहिए जिससे समय की बचत हो जाती है। मसालों और नमक का प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए और गैस और बर्तनों को सावधानी पूर्वक उपयोग करें। बीच बीच में स्वाद चखते रहना चाहिए ताकि कोई चीज कम या ज्यादा ना हो जाए।
3: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि प्याज को अच्छी तरह सुनहरा भूरा होने तक भूनने से भोजन में गहरा स्वाद और प्राकृतिक मिठास आती है। सब्जी या दाल में ज्यादा नमक अगर हो गया है तो करी या सूप में नमक तेज हो जाए तो उसमें उबला हुआ आलू या गूथे हुए आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर डाल दीजिए, वो अतिरिक्त नमक सोख लेंगी। गाढ़ी और मखमली ग्रेवी के लिए टमाटर प्याज ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप उसमें भुना हुआ बेसन, काजू का पेस्ट या उबले आलू को मैश करके मिला सकते हैं। और ग्रेवी में दही मिलाते समय आप आंच को धीमा रखिए, इससे लगातार चलाते रहिए ताकि दही जो है वो फटेगी नहीं।

0: अगले टिप में लिखा है कि अगर आप घर में ही घी बनाते हैं मलाई से और मलाई जमा कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी दही मिला दें और उसके बाद उसे फ्रिज में रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसे थोड़ी देर ही पहले बाहर निकाल कर छोड़ दीजिए। इससे थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है और मक्खन निकालने के बाद स्वादिष्ट मट्ठा भी तैयार होता है। मलाई को 8 दिन, अगर मलाई से निकाल रहे हैं तो उसे 8 दिन में ही कंज्यूम कर लें और इसे फ्रिज में ही रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसी दिन फ्रिज से बाहर निकालें। मथने के बाद ठंडे पानी में बर्फ डालकर मक्खन को तुरंत रखें, और गर्मियों में जो मट्ठा है वो निकलता है उसमें बड़ा स्वाद होता है।
1: बिल्कुल। और चंचल जी, हम एक संदेश को सुन लेते हैं, इसके बाद हम बात करें आगे की।
0: जी
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि इस मौसम में अरबी बहुत मिलती है और अरबी गले में भी लगती है, उन्हें छूने से हाथों में खुजली भी होती है, तो अच्छा है ग्लव्स पहनकर यानी कि दस्ताने पहनकर इसे छीला जाए। अगर आपके पास दस्ताने नहीं हैं तो पूरे हाथ पर सूखा आटा लपेट ले, और उसके बाद अगर अरबियों को छीलेंगे तो वो हाथ पर चिपकती नहीं है और खुजली भी नहीं होती है। बड़ा अच्छा टिप दिया है अरबी
1: बहुत
0: की।
1: बढ़िया, बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती, तुम्हें ध्यान है कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया था कि आज है 18 जून जो कि होता है सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, और ये स्वस्थ और सुरक्षित बेहतर भविष्य के लिए बहुत जरूरी है जिनको मनाना। और जब भी हम किसी सांस्कृतिक विविधता की बात करते हैं तो सबसे पहले वहाँ के पहनावे और खान पान की ही बात की जाती है।
1: बिल्कुल। और गैस्ट्रोनॉमी भोजन और संस्कृति के बीच संबंधों का अध्ययन है, जिसे अच्छे खान पान की कला और विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी भोजन की कला भी कहा जाता है। इसे किसी विशेष क्षेत्र के खाना पकाने की शैली या फिर स्थानीय भोजन के संदर्भ में हम समझ सकते हैं। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी कार्य, जैसे कि कृषि हो, मछली पकड़ना हो, भोजन तैयार करना हो, इस तरह से किया जाए जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी ना हो और भविष्य में भी इसे जारी रखा जा सके बिना हमारे पर्यावरण या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए हुए।
0: बिल्कुल, भोजन की बर्बादी से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाता है और इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। अपने आहार में जो भी पारंपरिक फसलें हैं उन्हें हम शामिल कर सकते हैं जो हमारे क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो खनिज और विटामिन से भरपूर भी होती हैं, और कई तरह के जो व्यंजन हैं उनको तो हम अपनी यात्राओं में भी आजमा सकते हैं। और
1: बिल्कुल
0: अब एक गाना सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।
2: मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहाँ की खाक मोहब्बत।

0: भाई ये था कार्यक्रम का अंतिम गीत और समय हो चला है सखियों से विदा लेने का।
1: तो आरती श्रीवास्तव को और चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: नंदन वंदन अभिनंदन। मैं गीतिका उनियाल संदेश टू सोल्जर्स के आज के संक में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। यह हमारे लिए हमेशा ही हर्ष की बात है कि हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हमारे मेहमान हमें कुछ ऐसा दे जाते हैं जो न केवल एक याद होता है लेकिन हमारे लिए एक पग होता है आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, देश के प्रति अपनी सद्भावना को दिखाने के लिए। और हम हमेशा यही कहते हैं कि संदेश टू सोल्जर्स के अपने इन एपिसोड्स के माध्यम से हम घर घर तक पहुंचते हैं, हर उस घर तक जहां से एक वीर निकलता है, जहां से एक सिपाही निकलता है, जहां से माँ ये कहती है कि जा बेटा निकल, तुझे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, कभी पीछे मुड़कर मत देखना, तेरी माँ वहीं तेरे लिए खड़ी है तेरी आस में, लेकिन तुझे सर्वप्रथम भारत माता के लिए, चाहे फिर तेरे अपने प्राणों का निछावर क्यों ना करना हो, तुझे हमेशा हमेशा देश की गौरव के लिए, समृद्धि के लिए काम करना है, कर्तव्यों का निर्वाह करना है। और आज इसी कड़ी में हम आप सभी से साझा करना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आमंत्रित हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तरवर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, थल सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी कर्नल वरुण सिंह तनवर, जिन्हें 2023 में माननीय राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। तो आइए सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: थैंक यू सो मच गीतिका एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स लिसनर्स हु हैव कम इन।
0: जी जैसा कि मैंने कहा कि हम घर घर तक पहुंच रहे हैं, हर घर से एक वीर निकलता है, एक सिपाही निकलता है, अधिकारी बनता है, देश के लिए समर्पण की भावना लिए वो यही सोचता है कुछ भी हो जाए लेकिन देश की आन बान और शान के लिए हमेशा हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता रहूंगा। लेकिन वो फैसला लेना कि मैं देश के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ, मैं आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले ये भावना अपने मन में उत्पन्न करना कि देश

0: के लिए अपने आप को समर्पित करना है। आपके मन में ये भावना कैसे उत्पन्न हुई कि मुझे भी देश के लिए काम करना है? क्योंकि जिस वक्त ये फैसला लिया होगा निश्चित रूप से बहुत छोटी उम्र के रहे होंगे आप।
1: बिल्कुल गीतिका जी, मैं एक सैनिक परिवार से हूँ। मेरे नाना जी मेजर नाथन सिंह, वो फर्स्ट राजपूत जो कि अभी फोर गार्ड्स है उसमें थे, सेकंड थर्ड जीआर में भी थे। मेरे फादर खुद कर्नल गजराज सिंह आर्मी सर्विस कोर में थे। और मैं वैसे हरियाणा का रहने वाला हूँ, हमारा मेरा गांव है जाटू लोहारी भिवानी में
0: जी।
1: वहाँ से भी एक वो है, ट्रेडिशन है कि सारे बच्चे फौज में जाएं। और इन्हीं को देखते हुए मेरा हमेशा मन रहा है कि मैं फौज में जाऊंगा। और मैंने सिर्फ एक ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया था, वो भी राष्ट्र रक्षा अकेडमी का, अपने फादर की यूनिफॉर्म, अपने ग्रैंडफादर की यूनिफॉर्म को देख के उसी से मैं मोटिवेट हुआ और मैंने अपना जीवन सेना को समर्पित कर दिया।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो जब पिताजी को आपने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, और जब उस वक्त फॉर्म भरा होगा, जब सिर्फ एप्लीकेशन दायर की गई होगी, तो उस वक्त घर में माहौल कैसा था?
1: देखिए, हालांकि हम फौजी परिवार से हैं, लेकिन कोई माँ, किसी माँ को ऐसा नहीं लगता कि मेरा बेटा मेरे को छोड़ के चले जाए, तो ये बातचीत तो हुई थी। लेकिन अपने मन पे शायद पत्थर रख के मेरी माँ ने खुशी खुशी मेरे को एनडीए भेजा। मेरे को याद है मेरे सिलेक्शन के बाद हम तीन लड़के थे जो कि साथ में एनडीए की तरफ गए, और रेलवे स्टेशन पे सभी की माएँ हमको बाय बाय करने आई। शायद दो माएँ रो रही थी, लेकिन मेरी माँ हंसते हंसते उन्होंने मेरे को अलविदा किया एनडीए की तरफ।
0: वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है। एक माँ की पुकार एक माँ ही सुन सकती है। जब भारत माता की बात होती है तो उसकी आवाज ना सिर्फ एक माँ के दिल तक ही पहुंच सकती है, इसीलिए वो अपने बच्चे को तैयार करती है, बोलती है जाओ अब पीछे मुड़कर मत देखना। अच्छा, ये बताइए कि जब आप स्कूल में थे और आपने उस वक्त निर्णय लिया कि अब आर्म फोर्सेस जाना है, साथ में बहुत सारे दोस्त होंगे, क्या उनमें भी यही भावना थी? और जब आपका सिलेक्शन हुआ तो किस तरह से आपको उन्होंने, कहते हैं ना, अपना प्यार कैसे बरसाया?
1: मैं आर्मी पब्लिक स्कूल धौलकुआं, टैप्स बोलते हैं उसको, धौलकुआं का पढ़ा लिखा हूँ, जहाँ पे अधिकतर सेना के, आर्मी नेवी एयरफोर्स के बच्चे ही पढ़ते हैं। तो काफ़ी जोश था उस टाइम पे, 92-93 की बात कह रहा हूँ मैं, बच्चों को एनडीए ज्वाइन करने का। और हम तीन चार लड़के सिलेक्ट हुए थे एनडीए में, मैं उनमें से एक था, तो पूरे स्कूल में नाम हुआ। इसके अलावा मैं थोड़ा गोलू मोलू था अपने 12th क्लास में, और जब उन्होंने मेरे को देखा एनडीए जाते हुए, उस टाइम पर मेरे को वजन घटाना पड़ा, तो काफी अचंभित हो गए मेरा मोटिवेशन देखे कि कैसे मैंने इतना वजन घटाया। और जब मैं उसके बाद अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो वो देखते हैं कि कैसे ये एक मामूली सा बच्चा एक अफसर बन गया।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। जब आप ऑफिसर बने तब अलग तरीके से आपको लिया गया होगा, कि उनका हीरो उनके बीच में था, तो उस वक्त वो उन्होंने आपको बहुत प्रेज किया होगा, पूछा होगा कि क्या हम भी जा सकते हैं आर्म फोर्सेस, ऐसा कुछ हुआ?
1: देखो, जाना तो काफी लोग जाते थे, ये मेरे को हर बच्चा जो कि एपीएस से होता है तकरीबन कोशिश तो करता है बट हो नहीं पाता, तो काफी प्रेज होती है उन बच्चों की स्कूल में, अपने क्लास में। हमारे स्कूल का जो न्यूज़लेटर निकलता है उसमें हमारा नाम आता है, तो और जो मेरे क्लासमेट्स थे जो एनडीए नहीं जा पाए, वो हमेशा मेरे को एक अलग ही नज़र से देखते हैं, एक अलग ही इज्जत से देखते हैं। वो इज्जत तभी मिलती है जब आप मेहनत करके देश के लिए एनडीए या जो भी एंट्री आप चाहते हो फौज ज्वाइन करो।
0: क्या बात है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि आप अपने दोस्तों के बीच काफी लोकप्रिय थे और इसी वजह से आपको बहुत प्यार भी मिला, दुलार भी मिला। ये बताइए, स्कूल में काफी शैतानियां क्या करते थे?
1: हाँ, यस, मैं मेरा एक बड़ा भाई है तो मैं छोटा, घर में भी छोटा हूँ, और स्कूल में भी मेरे अच्छे दोस्त थे। मैं काफी शरारी था, मेरे 12th ए की बात कर रहा हूँ, अगर कोई मेरे 12th ए वाला सुन रहा है तो, काफी शरारती था मैं, लड़कों लड़कियों को दोनों को तंग करता था छोटी मोटी बातों के लिए, कभी कभी उनका टिफिन खा जाता था, गोलू मोलू तो था ही मैं, पर मैं काफी लोकप्रिय था। मेरे अच्छे दोस्त हैं और कुछ हैं जो अभी भी मेरे ख्याल में 30-35 साल बाद मेरे टच में हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो चाहे व्हाट्सएप पे हो, हम उनसे बात करते रहते हैं। जो रिश्ते स्कूल में बने वो अभी तक बरकरार है।
0: अच्छा, ये बताइए, शैतानियों का ये दौर क्या एनडीए तक जारी रहा, या वहां पर आप एनडीए खड़कवासला वहां एंटर करते साथ ही डिसिप्लिन बॉय बन गए? क्योंकि आर्मी का तो काम नहीं है आर्म फोर्सेस का, कि आपने इसे एक ऑफिसर बनाना है।

0: यंग बच्चा जब आर्म फोर्सेस ज्वाइन करता है या पहले एनडीए एंटर करता है, तो उस वक्त उसके सोचने का तरीका सब कुछ अलग होता है, आचार व्यवहार। तो शैतानियों का वो दौर वहां चला या फिर वहीं जाकर एंटर करते साथ ही सुधर गए?
1: निश्चितानियों का दौर तो एनडीए में भी चला। शुरू शुरू में जब एनडीए पहुंचे तो एनडीए की जो फिजिकल एक्टिविटी होती है बहुत कठिन होता है, बहुत डिसिप्लिन होता है। हालांकि मैं फौजी बैकग्राउंड से था, लेकिन मैं तैयार नहीं था कि एनडीए में कितना आपको रगड़ा लगता है, कितना डिसिप्लिन। तो उसके चलते थोड़ा शरारत करने का मन तो करता है, और मेरे को लगता है इसीलिए ये जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ऑफिसर हों चाहे ड्रिल उस्ताद हों, वो खड़े रहते हैं हमको ये शरारत करने में रोकने के लिए। एनडीए में मन चंचल होता है, आप सिलेक्ट हो गए होते हो, एनडीए में पहुंच जाते हो, आपको लगता है आप यहाँ के आप ही राजा हो, लेकिन फौज के लिए एक अलग किस्म का डिसिप्लिन चाहिए। टाइम पे उठना, टाइम पे काम करना, टाइम पे हर चीज करना, वो डिसिप्लिन ये हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, हमारे कोस्टमेट्स होते हैं, कुछ कुछ हमारे स्क्वाड्रन सीनियर्स होते हैं, वो हमें लाते हैं।
0: वाह क्या बात है। तभी कहते हैं कि हम आपसे अधिकारी बनाएंगे, आप में से ही उस अधिकारी को निकालेंगे, उस ऑफिसर को बनाएंगे जो कल चलकर देश के लिए अपनी सेवाओं को देगा। तो निश्चित रूप से एनडीए ने आपका फॉर्मेशन किया, आपके व्यक्तित्व का निर्माण किया। एनडीए के उपरांत, एनडीए के बाद फिर आगे कहाँ, किस ओर रुख किया आपने, कब कमीशन हुए और एनडीए की सीधे बाद पोस्टिंग मिली या फिर आगे ट्रेनिंग का दौर चला?
1: एनडीए के 3 साल के बाद 1 साल के लिए मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी गया। देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि बहुत ही पुरानी 1930s की एकेडमी है। वहाँ से मैंने कमीशन पाया रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में। मेरी रेजिमेंट है 93 फील्ड रेजिमेंट, जिसको मैंने कमांड भी किया। और कमीशन होते ही मेरी रेजिमेंट उस समय कश्मीर में तैनात थी। और इमेजिन मेरा मेरी किस्मत कितनी अच्छी, मैं पैदा भी कश्मीर का हुआ हूँ
0: वाह क्या
1: और
0: बात।
1: मेरी पहली पोस्टिंग भी कश्मीर में थी, तो मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों ही कश्मीर बन गए। मेरी रेजिमेंट ने बहुत अच्छा काम किया उस टाइम पे। 93 फील्ड रेजिमेंट को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मिला, क्योंकि काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में हमने बहुत अच्छा काम किया। और उसी में मैं अपनी रेजिमेंट के रंग में रंग गया, और आगे मेरा सफर 93 फील्ड रेजिमेंट और तोपखाना आर्टिलरी जिसको कहते हैं, उसमें शुरू हुआ।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है। तो जब एक पूर्ण रूप से अधिकारी बनके पीछे मुड़कर देखा, तो क्या कभी सोचा था कि जो आज सब कुछ महसूस कर रहा हूं शायद वो महसूस न कर पाता अगर यहां ना होता?
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब अपनी जिंदगी के बारे में सोचता हूं तो मेरा निर्णय, मेरा बैकग्राउंड, जिसकी वजह से मैं एनडीए गया, एनडीए में मेरा स्क्वाड्रन हंटर स्क्वाड्रन, मेरे कोस्टमेट्स हंटर स्क्वाड्रन के या अलग और कोस्टमेट्स हैं, आईएमए में मेरा जोजिला कंपनी, मेरा जोजिला कंपनी के जो मित्र हैं, और मेरी रेजिमेंट 93 फील्ड रेजिमेंट, इनका बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है। जो आज मैं जिस मुकाम पे हूं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो मेरा वेल्थ ऑफ नॉलेज मैंने इकट्ठा किया है, वो सब इनकी वजह से है। अगर मैं ये शायद नहीं करता तो शायद मेरी मेरी जिंदगी इतनी फुलफिलिंग नहीं हुई होती।
0: वाह क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए, और माँ से दूर हुए कुछ दिन तो बड़ा खराब लगता होगा, रोना भी आता होगा, माँ से बात भी नहीं हो पाती होगी, तो ऐसे में क्या करते थे? हर
1: आप दुखती रग पे मेरे हाथ रख दिया। मैं आज
0: बच्चे के लिए माँ बहुत महत्वपूर्ण है।
1: 2 दिन 3 दिन पहले ही मैं इसके बारे में सोच रहा था कि कैसे एनडीए में रात को। अच्छा, तो मैंने एक फोटो एल्बम लेके गया था मैं,
0: अच्छा
1: जिसमें मेरे भाई के, मेरी मदर के, फादर के पुराने फोटोज थे उस टाइम पे, तो मतलब नए फोटो थे। तो रात को जब मेरे को याद आती तो मैं फोटो देखता था, एंड शायद एक दो बार शायद रोने को भी हो गया हूँ, रोया नहीं हूं, बट देख के ऐसा लग रहा था कि बस मेरी माँ किसी तरह मेरे को उठा के
0: अपने
1: वापस ले आओ।
0: पास ले जा ले, गले लगा ले।
1: 5 महीने का टर्म होता है, जून टू नवंबर,
0: जी
1: बस फिर वो वेट करते करते कि कैसे दिसंबर होगा और कैसे मैं घर जाऊंगा, उसी में समय निकल जाता है।
0: वाह क्या बात है। तो माँ का जो प्यार है वो तो हमेशा
1: हमेशा
0: हमेशा
1: हमेशा
0: आपके साथ रहता
1: हमेशा
0: है, कहीं ना कहीं वो जितनी बार आप गिरते हैं ना आपको उठने भी मदद करता है।
1: मदद करती है।
0: आप
1: मेरी मेरी माताजी बहुत ही स्ट्रांग, अभी 75 की हैं, शी इज वेरी स्ट्रांग, और मेरे को लगता है मेरे में जो भी मनोबल आत्मविश्वास आया है, अ लॉट हैज गॉट टू डू विद माई मदर, क्योंकि वो हमेशा, मैंने उनको हंसते हुए कोई भी प्रॉब्लम से आराम से उभरते हुए देखा है। उनको कभी मैंने रोते हुए नहीं देखा। एक बार जब उनकी मदर पास अवे हुई थी, उसी टाइम पे मैंने उनको रोते हुए देखा, वरना मैं उनको कभी रोते हुए नहीं देखा। ऐसी बहुत कम माएँ होंगी।

0: जी
1: जिन्होंने, तो शी गिव्स मी अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन
0: जी। कहीं ना कहीं अगर आपके व्यक्तित्व की बात की जाए तो आर्म्ड फोर्सेस के अलावा माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और कहा जाता है कि बच्चे का भाग्य उसकी माँ द्वारा निर्मित होता है। तो निश्चित रूप से आप और आप जैसे सभी ऑफिसर्स अधिकारी जो देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, अपने प्राणों तक का त्याग देते हैं, उन सभी माओं को सलाम है जो कहीं ना कहीं हर बार ये कहती हैं कि जाओ जीतो जंग। कोई एक ऐसा नगमा जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब हो, यहां मैं प्ले करना चाहूंगी।
1: तो माँ के जब माँ के बारे में बात आती है तो एक वो गाना है लुक्का छुपी बहुत हुई।
0: जी जी जी,
1: वो बहुत ही बेहतरीन गाना है। एंड
0: हाँ।
1: वो पिक्चर भी ऐसी है कि एकदम आमिर खान की पिक्चर है, जो आपको याद होगा मेरे ख्याल में।
0: जी जी, जिस तरह से जो मुद्दे उसमें उठाए
1: बहुत ही अच्छे मुद्दे थे। एंड आई थिंक वहीदा रहमान जी अपने, जब उनका कफन वापस आता है उसको देख के वो गाना गाती हैं।
0: हाँ।
1: जो फाइटर पायलट बचे थे उनके
0: जी।
1: एंड मेरे जितने भी एयरफोर्स कोस्टमेट्स हैं जिन्होंने देश के नाम अपने जान निछावर कर दी है, उनके लिए ये गाना और देश की सारी माओं के लिए गाना।
0: वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात आपने यहाँ पे कर दी है। और ये गाना भी उतना ही प्यारा है जो एक माँ के दिल के जज्बात और उसके जज्बात देश प्रेम से जुड़े हुए हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, उसके पास रहोगे तब भी याद करेगी, दूर हो जाओगे तब भी याद करेगी। तो उन सभी माओं को यहाँ पर कर्नल तनवर ने यहाँ पर एक तरीके से सलामी दी है। माँ को सलाम करना निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपनी निजी जिंदगी में करना चाहिए। सो वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव कर्नल तनवर ओवर हियर हु हैज सच काइंड ऑफ, ये कहूंगी मैं, सोच है जिसके पास, जो अपनी माँ के लिए सोच सकता है वो देश की सभी माओं के लिए सोच सकता है।

0: आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और किससे बात करने के बाद ना जाने, कहते हैं कि स्मृति के पन्नों को जब पलटा जाता है ना तो लगता है कि कुछ कहानियां हम जैसी हैं। और कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर से बात करते हुए ना जाने कितने फौजी जिस वक्त हमें सुन रहे होंगे वो यही कह रहे होंगे कि जब हम अपनी किताब की स्मृति पन्नों को पलट रहे हैं तो कर्नल तनवर को सुनने के बाद वो सारी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि आपने जीवन के उन पहलुओं को यहाँ पर उजागर कर दिया। खासतौर पर जब एक बच्चा एनडीए जाता है और उसके बाद फिर आर्म्ड फोर्सेस के माध्यम से वो देश के लिए अपनी सेवाएं देता है, लेकिन कहते हैं कि कुछ कारवां बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं और आपके लिए आपके घर में ही वो माहौल बन चुका था। एक बात बताइए कर्नल तनवर मुझे, पिताजी की यूनिफॉर्म कितना फैसिनेट करती थी आपको, क्योंकि आप रोज पिताजी को देखते होंगे उस यूनिफॉर्म में, तो उस यूनिफॉर्म ने कहीं ना कहीं आपके दिल में क्या वो जगह बना दी थी?
1: बिल्कुल, इनफैक्ट मेरे को बहुत ही डिस्टिंक्ट मेमोरी है, मैं थर्ड क्लास में था, थर्ड स्टैंडर्ड में, फिरोजपुर में मेरे फादर पोस्टेड थे, और एक दिन वो स्कूटर था उस टाइम पे हमारे पास, स्कूटर में आम लेके आए थे, आम छोड़ के वापस ऑफिस जा रहे थे, तो मैंने उस टाइम पे मेरे को ध्यान आया जिस जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहन रखी थी, मेरे को लगा हाँ मैं भी यही यूनिफॉर्म पहनूंगा, और तब से ही मेरा ये जज्बा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, एक ही एग्जाम दिया मैंने एनडीए का, और बारहवीं के बोर्ड एग्जाम से पहले ही मैंने सब क्लियर करके बैठा हुआ था, सो दैट मोटिवेशन मेरे पिताजी से ही, और वो फैसिनेशन यूनिफॉर्म का मेरे नाना और मेरे पिताजी से ही आया।
0: वाह क्या बात है। अगर अब आपके कार्यकाल की बात की जाए तो 26 सालों का ये जो सफर है, सफर नहीं हम कहेंगे इसको, हम कहेंगे ये तो कहीं ना कहीं आपके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे हम किसी भी संस्था से जुड़ते हैं तो वो संस्था कहीं ना कहीं हमारा विकास करती है। हम अपनी सेवाएं देते हैं, निश्चित रूप से हम भी कुछ अर्जित करते हैं, और सेवानिवृत्ति के बाद भी आपको महसूस हो रहा होगा, जैसा कि कहा जाता है वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, तो आज भी वो फीलिंग, वो अनुभूति विद्यमान है, आई एम स्टिल एन ऑफिसर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके बात करने के तरीके, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका जो बैठने का पॉस्चर है, आई कैन वेल प्रेडिक्ट, यस आई एम टॉकिंग टू एन ऑफिसर, और कहीं ना कहीं आप जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम भी कर रहे होंगे कहीं ना कहीं फीलिंग अभी भी साथ होगी।
1: बिल्कुल गीतिका, मेरे को हालांकि मैंने यूनिफॉर्म पहनना छोड़ दिया है, लेकिन मेरा सोच विचार, मेरे मोटिवेशंस, मेरे बिलीफ्स बिल्कुल चेंज नहीं हुए।

0: फौज में जो सिखाया गया है वो बहुत अच्छी चीज सिखाते हैं, वो एक इंसान को हमेशा ठीक चीज ही करने को बुलाते हैं। आर्मी में बोलते हैं चूज द हार्डर राइट देन द इजियर रॉन्ग, और उसी वही ट्रेनिंग को मैंने अपने रिटायरमेंट के बाद मान रखा है, और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कभी फौज मेरे को छोड़ सकेगी। हालांकि मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, मेरे यार दोस्त, मेरा सोच विचार, मेरा देश प्रेम, मेरे रेजिमेंट की तरफ मेरा प्रेम, मेरे स्क्वाड्रन की तरफ मेरा प्रेम ऐसा है कि मैं मरते दम तक शायद फौजी ही रहूंगा।
1: वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत। वो कहते हैं कि रग रग में जितने कतरे जो हैं लहू के बह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय सेना का बहुत बड़ा योगदान है, और आप जी रहे हैं उसे आज भी। लेकिन अगर स्मृति के पन्नों को फिर पलटा जाए और आपके उन मिशंस की ओर रुख किया जाए जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके जहन में आपके दिल में एक घर बना रखा है, खुद भी याद करते होंगे, अकेले बैठते होंगे, इंट्रोस्पेक्शन करते होंगे, तो स्मृति पल आपको याद आते होंगे जहां जिंदगी के टफेस्ट डिसीजंस लिए गए, कौन से मिशंस थे जो दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं?
0: तो आई थिंक एक सबसे पहला जो मेरा मोटिवेटिंग इंस्टेंस रहा है वो मेरी स्क्वाड्रन में रहा है, हंटर स्क्वाड्रन में, मतलब कमीशन के बारे से पहले ही बात कर रहा हूं मैं, और ये शायद फोर्थ टर्म था। और हंटर स्क्वाड्रन एक स्क्वाड्रन होती है जिसमें बुजुर्ग बोलते हैं बहुत मुश्किल स्क्वाड्रन है, वहाँ पे फिजिकल कार्रवाई बहुत ज़्यादा करते हैं। उस टाइम पे 12 स्क्वाड्रन होती थी, तो 12 में से सबसे टफ स्क्वाड्रन बोलते थे हंटर स्क्वाड्रन। और हंटर स्क्वाड्रन में 1.5 साल हो गए थे हमको, और हमने कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी, मतलब कोई चैंपियनशिप हमने नहीं जीती। खूब मेहनत करते थे हम भी, सुबह शाम दिन रात, सुबह 4 बजे भी, रात को 12 बजे भी, फिर हम, लेकिन हमारे पास ट्रॉफी नहीं आती थी। फिर किसी तरह मेहनत करके सब चीजें इकट्ठा हुई, हमको रियलाइज हुआ कि सिर्फ अंधाधुन भागदौड़ करने से हम जीत नहीं पाएंगे, हमने कुछ दिमाग लगाया, और फिर हमने एक ड्रिल कॉम की ट्रॉफी जीती। और उस ड्रिल कॉम ट्रॉफी जीतने के बाद हमने एक गाना, तो बहुत मशहूर होता था यहाँ के हम सिकंदर, उस गाने पे तकरीबन 2-3 दिन हमने बस उसी गाने पे डांस किया, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि हमारा जो 1.5 साल का परिश्रम है, तपस्या है, वो फाइनली पूरी हुई। तो उससे मेरे को जिंदगी में बहुत सीख मिली कि कैसे अपने अपनी मेहनत को एक तरफ चैनलाइज करके, जीत की तरफ चैनलाइज करके जीत हासिल करना।
1: वाह क्या बात है, अगर आपने उस नगमे की बात यहाँ पे की है तो क्यों ना उसी नगमे को हमारे लिसनर्स तक जरूर पहुंचाया जाए, और आगे का कारवां आप ही की जुबानी हम सुनेंगे, क्योंकि भी बहुत कुछ है कर्नल तनवर से सुनने के लिए। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

0: संदेश सोल्जर्स के आज के इस अंक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और आज हमारे साथ स्टूडियो में है कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और कर्नल तनवर को सुनने के बाद ना मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ना जाने मैं कितनी ही लोगों की कहानियां एक साथ पढ़ रही हूँ, एक साथ सुन रही हूँ, क्योंकि जो ताना बाना कर्नल तनवर ने यहाँ पिरोया है ना, आपके बहुत सारे बैचमेट्स कोर्समेट्स कहीं ना कहीं अगर वो सुन रहे होंगे या आगे चलकर हमें YouTube के माध्यम से सुनेंगे तो वो यही कहेंगे कि जैसे आपने उनके दिल की व्यथा कह दी। कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है लेकिन यहाँ गंतव्य डेस्टिनेशन एक है और वो है देश प्रेम, देश के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। सेवाओं में रहते हुए यानी कि भारतीय सेना में आपका जो योगदान है वो अतुलनीय है, लेकिन वो एक मिशन जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, क्या उसको आप यहाँ पे साझा करना चाहेंगे? कोई कैसा मिशन जिसके बारे में बार बार जब आप सोचते हैं तो कभी शायद आंखों में आंसू भी आते हो, दिल भर भी जाता हो, लेकिन गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है।
1: 1997 जून में मैं कमीशन हुआ और 1999 जून, दो साल बाद कारगिल की लड़ाई छिड़ चुकी थी। उस टाइम पे हम सब दो साल के यंग ऑफिसर्स थे और कारगिल की लड़ाई बहुत ही कठिन लड़ाई थी। पहाड़ चढ़ने पड़ते थे, लीड फ्रॉम द फ्रंट, जो हमको बचपन से सिखाया गया एनडीए में कि आप आगे आगे चलेंगे। तो उस समय मेरे काफ़ी कोर्समेट्स ने अपने जान देश के लिए निछावर कर दी। उसमें मेरे एक मेरे क्लासमेट भी थे जो मेरे साथ स्कूल में थे, यहीं पे एपीएस धौलाकुआ में, अनुज नैयर, मेजर अनुज नैयर, जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, परमवीर चक्र भी हैं मेरे कोर्समेट मनोज पांडे। तो कई कोर्समेट्स थे जिन्होंने अपनी जान देश के लिए निछावर कर दी और आप उनके साथ कॉलेज में थे। आप अगर इंडिया को कॉलेज माने तो जब आप उनका नाम पढ़ते हैं तो आपको उस टाइम पे तो बहुत ही, कोई भी चीज़ आपको इसके लिए तैयार नहीं कर सकती कि जब आपका एक चहिता हालांकि देश के लिए देश के काम में चला गया लेकिन आप कभी इसके लिए तैयार नहीं हो सकते। तो कारगिल की का जो युद्ध था वो शायद हम सब कोर्समेट्स के लिए एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट था जिसने हमको असली जिंदगी के बहुत पास ला के खड़ा कर दिया, लड़ाई के पास ला के खड़ा कर दिया और हमने उस युद्ध में विजय पाई। उस विजय दिवस हम मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस भी मनाते हैं। तो हमारे कोर्स ने जो उसमें सैक्रिफाइसेस दी वो रंग लाई। हमने जो पाकिस्तान के घुसपैठी थे उनको मार गिराया, खदेड़ दिया, हिंदुस्तान से वापस भिजवा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसमें मेरे कोर्स 90th एनडीए 100 रेगुलर का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो शायद एक ऐसा मिशन था जो हमेशा मेरे दिल के पास रहे।
0: जी, आपके लिए गौरवपूर्ण पल था कि आप वहाँ साक्षात कारगिल युद्ध में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि सिर्फ निर्णय तो होते हैं, आउटपुट रिजल्ट्स तो बाद में पता लगते हैं जब निर्णय सामने आते हैं, लेकिन उस क्षण जब एक ऑफिस

0: सर एक निर्णय ले रहा होता है, उस वक्त उसके मन में क्या होता है, क्या सोचता है?
1: सारे जो निर्णय इन परिस्थितियों में अवसर रहता है, उसमें सबसे पहले वो अपने देश के बारे में सोचता है, मिशन, कि मेरा मिशन क्या है, ये करने से क्या मेरा मिशन अकम्प्लिश होगा और क्या मेरे देश को विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर उसमें उस में खड़ा हुआ वो डिसीजन, तो उसके बाद कि भाई मेरे जो जवान है, मैं एक लीडर हूं, मेरे नीचे जितने भी जवान हैं, जो मेरा कमांड है, चाहे वो एक सेक्शन हो, चाहे एक प्लटून हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एक बटालियन हो, उनके हित में ये है कि नहीं, और फिर आगे आगे ऐसे से करके उस तरीके से डिसीजन देते हैं। ये बहुत ही फेमस कहावत है, चेटवुड क्रेडो बोलते हैं उसको, कि द सेफ्टी ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम एंड देन द ट्रूप्स यू कमांड एंड लाइक। तो मेरे को लगता है आपको वो इनग्रेन कर दिया, आपके अंतर आत्मा में उसको इनग्रेन कर दिया कि आप जो भी डिसीजन लेते हो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन, चाहे वो मिशन हो कोई गेम जीतना या युद्ध जीतना या कोई एक्सरसाइज में कार्रवाई करना, तो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन जीत, उसके बाद वेलफेयर ऑफ ट्रूप्स। मेरे ख्याल में दिस इज हाउ यू आर मेड टू टेक डिसीजंस।
0: अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इमोशंस, भावनाएं, ये व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति में विराजमान है। हालांकि फोर्सेस आपको इस तरह से तैयार करती है कि आप हर भावनाओं के परे उससे ऊपर उठकर काम करते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि उस वक्त कारगिल वॉर में खास तौर पर जब आपके साथी जा रहे थे, अलविदा कह रहे थे, उस पल निर्णय लेना और उस वक्त अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और अपने सभी साथियों को एक छतरी के नीचे संभाल के रखना कितना महत्वपूर्ण और कितना जटिल होता है।
1: बहुत बहुत महत्वपूर्ण, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है गीतिका जी। चाहे आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लें, जब मौका आता है वो डिसीजन लेने का, जो कि डिसीजन का आउटकम या तो जीत हार में नहीं बोलूंगा, इंडिविजुअल लेवल पे वो जीना या मरना के डिसीजन पे, तो वो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे को लगता है कि वो सिर्फ एक एस्प्री डी कोर होती है, जैसे मैं 93 फील्ड रेजिमेंट में था, तो वो 93 फील्ड रेजिमेंट को जीत प्राप्त करनी ही करनी है। तो जो ये मेरे ख्याल में जो आप पूछना चाहते हैं, वो क्या वो डर होता है, चाहे वो खौफ होता है, चाहे वो भय होता है, क्या वो आपके अंदर आता है कि नहीं आता? पर मैं ये एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूं कि जब उस समय आप एक एज एन ऑफिसर कोई डिसीजन लेते हैं, तो ये भय, डर, खौफ काफी पीछे रह जाता है। सबसे पहले आपको अपनी रेजिमेंट की इज्जत सामने आती है कि भाई मेरी रेजिमेंट, मेरे कमांड, चाहे मैं एक बैटरी कमांडर हूं, चाहे जो भी हूं, उस कमांड को सक्सेस करना है। और अगर सक्सेस नहीं हुआ तो जिस प्रकार से मेरा देश मेरे को देखेगा, मैं उसके लिए उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो चाहे मेरी जान जाए लेकिन मैं ये कार्रवाई करके ही रहूंगा। और ये ऑफ कोर्स जैसे हमारी 3-4 साल की ट्रेनिंग है, जो रेजिमेंट में कार्रवाई होती है, यूनिट्स में कार्रवाई होती है, वो आपको ताकत देता है कि आप उस समय ये डिसीजन ले सके।
0: जी, तो कहीं ना कहीं सेना आपकी मानसिक और शारीरिक भी आपका मनोबल बढ़ाती है, आपकी इंजीनियरिंग कुछ इस तरह से कर देता है कि आप हर निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं, थैंक्स टू द टफेस्ट ट्रेनिंग्स आई वुड से।
1: बिल्कुल गीतिका, आपने बिल्कुल ये शब्द मेरे मुंह से ही निकाल लिए कि यस, ये हमारी भारतीय सेना का के ट्रेडिशंस है, एस्प्री डी कोर है, भारतीय सेना का जो सालों पुराना ट्रेडिशन है जीत हासिल करना, वही है जो आपको ये डिसीजंस लेने में मदद करता है।
0: जी जी, निश्चित रूप से। आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से सेना ने आपको तैयार किया है, आज भी आपको लगता है कि आप अपनी निजी जिंदगी में भी निर्णय ले पाते हैं आसानी से, क्योंकि आपके साथ जो मेहनत की गई वो अपने आप में ही सबसे अलग है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी कुछ जो जिस कार्य में मैं लगा हुआ हूँ, उसमें कई सिविलियंस के साथ मैं डील करता हूँ, और मेरे को रियलाइज होता है कि जो जिस भाव से वो अपने काम को अप्रोच करते हैं और हम जैसे अप्रोच करते थे, उसमें काफी फर्क है। जैसे फौज में अगर आपको एक काम मिल गया है तो आप कुछ भी करोगे वो काम को सक्सेस करने के लिए, उस एम अचीवमेंट के लिए। लेकिन जब अभी मैं कॉरपोरेट में हूं, कॉरपोरेट में जैसी कार्रवाई होती है वो थोड़ी अलग होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक स्वार्थ खुद का आ जाता है। लेकिन जब आप देश के लिए कार्रवाई करते हो ना गीतिका, तो खुद का स्वार्थ बिल्कुल पीछे रह जाता है, आप इन सब चीजों से ऊपर उठ

0: जाते हो और सिर्फ देश और एम और मिशन के बारे में सोचते हो।
1: वाह क्या बात है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि सेनाएं तो हमें सशक्त करती ही करती हैं, हमें तैयार करती हैं कि कैसे हम मैदानी जंग में अपना दमखम साबित कर देंगे, लेकिन जब एक अधिकारी, एक सिपाही या जिस भी दर्जे पर एक व्यक्ति सेनाओं में रहकर अपनी भूमिका निभा रहा है, अपना योगदान दे रहा है, आप एज एन ऑफिसर कैसे सेनाओं को सशक्त करते हैं, ये अलग बात है। कितना महत्वपूर्ण होता है कि आप सेनाओं में हैं, आप सेना में हैं, आपको भी सेना को सशक्त करना है।
0: बिल्कुल गीतिका, जैसे मैं जो जिस कारगिल के बारे में जब हमने बात करी, जिन जो मैंने नाम लिए, चाहे वो परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे, महावीर चक्र विजेता अनुज नैयर, उनका नाम हमेशा गौरवशाली रहेगा हमेशा, लेकिन इनके पीछे भी कई लोग हैं जो ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये मेरे को पता चला जब मैं सेना भवन में इन माय लास्ट टेन्योर पोस्टेड था कि कैसे आर्मी हेडक्वार्टर में लोग निरंतर काम कर रहे हैं हमारी सेनाओं को कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करना, कि जो उनको हथियार, जो उनको असला, जो उनको इक्विपमेंट चाहिए, चाहे वो ड्रोन्स हों, चाहे वो टैंक्स हों, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, ये आसान नहीं है इन चीज़ों को खरीदना। जब हमारी लड़ाई होगी, जब भी होगी, जिससे भी होगी, उनसे अच्छा सामान होना चाहिए हमारे, तभी हमारा सैनिक जीत पाएगा। इन सबको अरेंज करना, इन सबको सेना के लास्ट फौजी तक पहुंचाना आसान नहीं है। एंड हैट्स ऑफ टू दोज पीपल ऑल्सो जो कि अपने अपने हेडक्वार्टर्स में काम कर रहे हैं, जैसे 416 इंजीनियर ब्रिगेड है, वहां पे ब्रिगेडियर राणा है उदाहरण बॉस, वो काम कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि उनका कमांड लास्ट तक पहुंचे। इस प्रकार कई उदाहरण है कि जो लोग अपने अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं ताकि सेना भी सशक्त हो।
1: जी, तभी हम हर बार आकाशवाणी के माध्यम से ये कहते हैं कि जब आप चैन की नींद सो रही हैं तो कोई है जो आपके लिए निरंतर मुस्तैद है, जो निरंतर आपके लिए काम कर रहा है। और भी होंगी बहुत सारी बातें, लेकिन कर्नल तनवर, यहाँ पर आपने कुछ दोस्तों के नाम लिए, नैयर साहब का आपने नाम लिया यहाँ पर, वो तमाम दोस्तों का जिक्र किया जिन्हें आपने कहीं ना कहीं निजी रूप से खोया है, पर हम यही कहेंगे कि आज जो हम देश का परचम लहरा रहे हैं सिर्फ उन्हीं काबिल वीर ऑफिसर्स की वजह से, और उन्हीं के नाम ये अगला नगमा हमारी ओर से आकाशवाणी की तरफ से।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हर बार की तरह ये कार्यक्रम निजी रूप से मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि कहते हैं कि हम जीवन में जब जो प्राप्त नहीं कर पाते तो हमें उस मंजिल की तरफ हमेशा आकर्षण होता है। वो लोग जिन्हें वो मंजिल मिली है वो अपने आप को खुश नसीब समझते हैं, और आकाशवाणी के माध्यम से जब हम ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं तो हम अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं कि ऐसे दिग्गज हमारे बीच हैं जो अपनी बात हम तक साझा कर रहे हैं, आप तक साझा कर रहे हैं, तमाम फौजियों की बातें साझा कर रहे हैं, उनकी कहानियां सुना रहे हैं अपनी कहानी के माध्यम से। कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर हमारे साथ हैं आज हमारे स्टूडियो में, और बहुत सी बातें हमने की, आपके मिशन्स के बारे में बात की, आपके आपने जो कोर्स किया एनडीए के, आपके कार्यकाल यानी कि एनडीए के दिनों की बात की। अब एक सबसे महत्वपूर्ण और निजी सवाल, वो पल जब आप अपनी अर्धांगिनी से मिले, सर्वप्रथम सबसे पहले तो ये बताइए करल तनवर, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा गुस्ताखी माफ, आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज?
1: जी बिल्कुल अरेंज मैरिज थी। मेरी शादी, इनफैक्ट मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, मेरी वाइफ का परिवार भी भिवानी में है, एंड सबसे पहले मैं अपनी वाइफ को मैंने देखा 2002 में, 2002 तकरीबन अप्रैल मई का महीना था, और मैं उस टाइम पे एक चाइना बॉर्डर पे पोस्टेड था तवांग में, एंड वापस जा रहा था छुट्टी सी, तो मेरी माँ ने बोला आ जाओ एक घर के पास, घर में चलते हैं। मैं कहा किस लिए, बोलते नहीं नहीं चलो चलो चलो, और वहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी वाइफ से मिला। माय वाइफ वाज इन सेकंड थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग,
0: सो स्वीट,
1: एंड तो पहली बार मैं काफ़ी डर गई वो मेरे को देख के, कि मैं तो अवसर था, वो शी वाज अ यंग गर्ल, आई थिंक शी ऑलमोस्ट क्राइड, क्या रोई थी वो एक्चुअल में।
0: अच्छा।
1: एंड तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, एक साल बाद हमारी एंगेजमेंट हुई, और एक साल बाद 2004 25 फरवरी को हमारी शादी हुई, और जिंदगी उसके बाद बदल सी गई। जैसे मेरी वाइफ मेरे को हमेशा बोलती है कि अवसर तो मेरे को फौज ने बना दिया था, लेकिन मेरे को इंसान उसी ने बनाया।
0: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जब आपने उनसे कहा होगा कि देखो मैं फौज में हूँ और बहुत मुश्किलात आएंगी, बहुत बार ऐसा होगा जब मैं तुमसे बहुत दूर जाऊँगा और हो सकता है कि हमारे और तुम्हारे बीच वार्तालाप ना हो पाए, कॉन्वर्जेशन ना हो जाए, पर तुम धैर्य रखना, ऐसा कई बार कंसोल करना पड़ा?
1: बिल्कुल बिल्कुल, माय वाइफ इनफैक्ट नीति, आई एम श्योर शी इज लिसनिंग टू मी, तो कई बार हुआ ऐसे जब फौज में शादी करना वैसे ग्लैमरस लगता है बट आसान नहीं है, तो हैट्स ऑफ टू ऑल आर्मी वाइव्स ऑल्सो, उनके हस्बैंड्स उनको छोड़ के देश के लिए दूर दराज इलाके में पोस्टेड होते हैं, पीछे से वाइफ बच्चों के साथ, कई अपने सास ससुर के साथ, कहीं पे भी कुछ घर संभालती हैं, आसान नहीं होता। ये तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहा हूँ, हस्बैंड वापस आए, कैसे आए, चोट खा के आए या ना आए, ये अनसर्टेनिटी सहन करना आसान नहीं होता, तो हैट्स ऑफ टू देम। मेरे को याद है मैं एक कोर्स कर रहा था, उसके बाद मेरी पोस्टिंग राष्ट्र राइफल्स में हो गई थी कश्मीर में, पहली बार पोस्टिंग फील्ड जा रहा था मैं शादी के बाद, तो काफी हताश हुई मेरी वाइफ कि तुमने जानबूझ के जाना चाहते हो उधर, बट हाँ किसी तरह हमने उनको मनाया, एंड टच वुड थिंग्स आर नाइस।
0: यही मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो दास्तान है, कहानी है, एक सिर्फ एक ऑफिसर की नहीं, तमाम ऑफिसर्स की है जो अपनी फैमिली और साथ ही साथ देश के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा है उसको कहते हैं ना बैलेंस करके चलते हैं, और इसमें आर्मी का एक बहुत बड़ा योगदान है, आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन काफी कारगर साबित होती है,
1: बिल्कुल
0: नित्य प्रति कार्य करती रहती है, तो कहीं ना कहीं हम सल्यूट करते हैं हमारी सेनाओं को जो ना केवल हमारे इस तरह के सैनिक अधिकारी कहते हैं उनको उनको जन्म देती है, पर साथ ही साथ उनके परिवारों का भी खासा ख्याल रहती है, और हैट्स ऑफ टू द वाइव्स ऑफ द आर्मी पर्सनल्स जो अपने कहते हैं कि अपने वीर पति, अपने वीर सोलमेट के दूर होने के बाद भी सुचारू रूप से घर को चलाती है विदाउट एनी कंप्लेंट्स।
1: इसमें जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, फौज का बहुत बड़ा हाथ रहता है, बहुत इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलती है, बहुत ज्यादा, जैसे मैं बता रहा था आर्मी स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं, सब कुछ अंदर होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस,

0: बहुत ही इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है जिससे हमारी कार्रवाई आगे घर गृहस्थी चलती रहती है।
1: कोई ऐसी बात जो बहुत ही प्यारी हो, बहुत ही इमोशनल हो आपकी वाइफ के संबंधित, जिसको आप बार बार जिक्र करते हैं, खासतौर पर तब जब उनसे दूर थे या सेवाओं में थे, तो उनकी बातें, कोई ऐसा गाना या उनका अपने इमोशंस दिखाने का तरीका जो आपको बहुत याद आता है अभी भी?
0: बहुत याद आता है। ऑफ कोर्स माय वाइफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड, बट शी इज आल्सो प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स इन द वर्ल्ड।
1: क्या बात है.
0: तो हमारी जो लेडीज संगीत होता है उसमें मेरी वाइफ ने एक सॉन्ग पे डांस किया था, मैं तेरी हो गई यार सजना वे सजना, और जिस तरीके से उन्होंने डांस किया था, अभी मेरे ख्याल में कितने 22 साल हो गए हैं मेरे को, अभी तक मेरी मेरी आंखों के सामने वो नजराना
1: वाह,
0: आ
1: क्या
0: जाता
1: बात है.
0: है,
1: यानी कि वो पल जिस
0: वो
1: वक्त
0: पल
1: आप हृदय
0: जिसमें
1: सूत्र
0: उन्होंने
1: में
0: डांस
1: बंधे
0: किया है,
1: और उनका नृत्य कहीं ना
0: उनका
1: कहीं
0: बहुत
1: आपको
0: असर
1: लुभा
0: पड़ा।
1: गया. वाह, क्या बात है. कहते हैं कि जीवन की छोटी बड़ी बातों में वो प्रेम छुपा होता है, तकरार होती है, और कहते हैं कि इमोशंस तो सब जगह एक जैसे हैं, और वो भावनाएं ही हैं जिनकी वजह से हमारा जो इंडियन मैरिटल सिस्टम है वो आज भी बहुत ज्यादा मजबूत है. तो उस नगमे का जिक्र आपने यहाँ पर कर दिया, तो क्यों ना नाम के लिए ये नगमा हम यहाँ से प्ले करें.

0: और हम भी हरदम हर पल बस आपके हैं, और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। और करल तलवर, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ निजी रूप से कि अगर मुझे मौका मिले ना इसी जिंदगी में रहकर कि मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकूँ, मैं कभी मना नहीं करूँगी। आप बताइए, डू यू वॉन्ट टू रीलिव दोस 26 ईयर्स अगेन?
1: गीतिका, ऑफ कोर्स। अगर मैं अपने पिछले 26 साल फौज में जो मैंने बिताए हैं उनके बारे में सोचूं तो इतना फुलफिलिंग लाइफ रहा है। एनडीए में आपको क्या क्या नहीं करा।

0: सेलिंग, राइडिंग, प्लेन में चलाते हैं। मैंने पूरा देश देख लिया है। ऐसा कोई प्रांत नहीं रहा है जहां पे मैंने कुछ दिन नहीं बिताए हैं। विदेश दिखाया है, देश ने मेरे को रशिया भेजा, देश ने मेरे को फ्रांस में भेजा। मैंने लड़ाई लड़ी है दूसरे देश के साथ, टेररिस्ट के साथ। मैंने कई हजार करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट एक जगह से साइन किए हैं। मैंने जिंदगी के सबसे हसीन पल, चाहे वो ज्योग्राफिकली हो, जैसे कि इतनी सुंदर जगह जैसे तवांग, कश्मीर, कोयम्बतूर, इतनी सुंदर जगह पे जाके मैंने बिताए हैं जो कि कभी हो ही नहीं सकता किसी और उसमें। और एक एक बहुत ही डाइवर्स लाइफ मैंने देखी है। ये सिर्फ लाइफ ही डाइवर्स नहीं, जितनी इज्जत हमारे देश में हमारा देशवासी फौजियों की करता है, वो इज्जत मिलना और कहीं पे पॉसिबल ही नहीं है। और मैं यही बात हर देश के युवा को कहना चाहता हूं, मैं अपने बेटे को भी कहता हूं। मेरा बेटा अभी हरिमर्दन सिंह तंवर सेकेंड ईयर लॉ में है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। उसको भी मैं बोलता हूं कि बेटा फौज में आप आके देखिए, देखिए वो कैसी जिंदगी आपको देता है, आपका कायाकल्प कर देता है। जितनी इज्जत, जितनी शोहरत, जितना सेटिस्फैक्शन आपको फौज में सर्व करके मिल सकता है और कहीं नहीं, कहीं भी नहीं मिल सकता।
1: जी बिल्कुल नहीं मिल सकता, इस बात में कोई दो राय नहीं है। विशिष्ट सेवा मेडल 2023 में आपको सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्वारा। वो पल, वो अविस्मरणीय पल आपके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ गया, एक ऐसी बात, एक ऐसा सम्मान जिसे आप दोहराते रहेंगे, बताते रहेंगे सबको। कहीं ना कहीं वो प्रेरणा स्रोत है उन तमाम बच्चों के लिए जो आर्म फोर्सेस जाना चाहते हैं। वो पल कैसा था जीवन में?
0: आई थिंक उस मेरी जिंदगी का एक बहुत ही, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग मोमेंट वॉज वेन, जब मेरे को प्रेसिडेंट ने विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया। इससे क्या होता है, अवार्ड तो है ही, ये हमेशा मेरे नाम के साथ जुड़ जाता है। मैं अपने नाम को कर्नल KVS तंवर VSM लिख सकता हूँ, और जो एक ऐसी उपलब्धि है बहुत कम लोगों को वो मिलती है। इसकी मेरे को किस लिए मिला, मैं सेना भवन में जब आर्मी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड था तो मैंने कुछ काम किया देश के लिए कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल मिला। और हमेशा मैं आभारी रहूंगा हमारे सीनियर्स का, मेरे जो सीनियर्स थे उस टाइम पे, ब्रिगेडियर होती थे जनरल राजू थे, ब्रिगेडियर मोंगा थे, जनरल मोहंती थे, जिन्होंने मेरे को गाइड किया और ये मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान हुआ।
1: वाह क्या बात है। वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम छात्र छात्राएं, आज तो हम देखते हैं किस तरह से युवतियां भी आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट कमीशन मिल रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं
0: आज की युवा को? मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि सेना जैसा माहौल, सेना जैसा लाइफ, सेना जैसा करियर आपको नहीं मिल सकता। ये एक ऐसा करियर है जो सिर्फ ना सिर्फ आपकी किंतु आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा जी। आपको एक ऐसे राह में ले जाएगा जहां पे हर चीज आपको नेक्स्ट लेवल की मिलेगी। तो सारी युवाओं और युवतियों से मैं ये बताता हूं कि आर्मी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आसान नहीं है आर्मी में आना, बिल्कुल आसान नहीं है। आप मेहनत करें तो आप आर्मी में आए और देश सेवा कैसी होती है आप सीखें।
1: जी हम दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज संदेश टू सोल्जर्स इस प्रोग्राम के माध्यम से आप उन सभी तक पहुंचे हैं जो कहीं ना कहीं या तो अपनी कहानी दोहरा रहे हैं आपको सुनने के बाद, बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स सेवानिवृत्त हैं या अभी सर्विसेज में हैं, या वो लोग जो चाहते हैं कि हम सेना में रहकर सेवाएं दें, देश के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को साबित करें, उनके लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत सारे अनछुए पहलुओं को अपनी जिंदगी के यहाँ उजागर कर हमें कहीं ना कहीं सेनाओं से जोड़ दिया, देश प्रेम से जोड़ दिया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि बहुत सारे संदेश हम पहुंचे हैं और सभी ने आपको सलाम कहा है, आपके जज्बे को सलाम कहा है। सभी दोस्तों से हम माफी मांगना चाहेंगे कि आप सभी के नाम हम जरूर नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कर्नल तंवर को मैं आपके संदेश इस प्रोग्राम के बाद जरूर दिखाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और एक बार हम पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तंवर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: आकाशवाणी दिल्ली से अभी हम रिले कर रहे थे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हम प्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं CF अनिभाग सरगुजा।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोट कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये टुकू डांड, चाची डांड, करसी, बूढ़ा डांड, बरबसपुर, सिलफिली, कनक नगर, गणेशपुर, गुड़गवा, मदन नगर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये मेंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 22 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, खलीबा, पड़ौली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, लक्ष्मणगढ़, सुखरी भंडार, सायर, ससकालो, सत्तीमुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडी, बोड़ाजरिया, ढोड़ा गांव, दांतीढाब, गढ़गांव, बैगहवा, चोरकी पानी, कंडराजा, घोड़ाघाट, नर्मदापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ा माचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, चट्टानपारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, कापू और बाकारुमा में हाथियों की कुल संख्या 114 है। ये लोटान, पुरुंगा, बनहर, सिंघीछा, बेहरामार, इंचपारा, कंचीरा, कोयलार, सागरपुर, सस्कोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, उकरी कादर, आमा टिकरा, नवापारा, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राट रोड, झिंगोल, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानक मार टाइगर रिजर्व के अचानक मार

0: हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये पकरी, तालदादर, हरदी, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, तेंदु चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजहर, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे अमर हाथी अमर।

अभी हम प्रसारित कर रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। कार्यक्रम के प्रायोजक थे सीएफ अनुभाग सरगुजा। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आज कार्यक्रम चिट्ठी मिली शाम 7:55 पर हम प्रसारित करेंगे। सूचना समाप्त हुई और अब समय हुआ है कार्यक्रम किसानवाड़ी का।

0: कार्यक्रम के सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला सरवन भैया के जय जोहार और राम राम। तो भाई संगी हो, देखो भाई अभी कहे जाए तो अषाढ़ के महीना आ गए हैं। तो अषाढ़ के महीना में काम बूता अब्बड़ भरधरा जाते हम किसान संगवारी बन पर, है ना भाई। तबे तो कहे जाते कि डारा के चुके बेंद्रा और अषाढ़ के चुके किसान, देख हमारे बिहान। तो हमला बने चेत करके कामला करना हवा। तो संगी हो, कहूँ सोयाबीन की खेती करथन तो ये खेती हा खरीफ मौसम में प्रमुख तिलहनी और दलहनी फसल आए। ये हा कम लागत पर अच्छा आय देहे वाले फसल आए था और एक भूमि के उर्वरता फिहला लगाथन था बाढ़ते। और संगी हो, यदि हम सोयाबीन के फसल करथन लेथन तो उपयुक्त जलवायु और भूया कैसा होना चाहिए। तो एक तापमान हा 20 से 30 डिग्री होना चाहिए, उपयुक्त रहते। और वर्षा हा 600 से 1000 मिलीलीटर होना चाहिए। भूया हा अच्छा जल निकास वाले दोमट या काला मिट्टी बढ़िया रहते। और माटी के पीएच हा 6.0 से 7.5 हा उपयुक्त रहते। और उन्नत किस्म है JS 9560, JS 2029, JS 9305, NRC 37 और अहिल्या 4। तो संगी हो, गुड बात तो करबो, फिर आवाज सुन ले थाने संदेश।
1: सुनो संगवारी हो, हमारे संस्था यूथ फाउंडेशन गांव गांव जाथन, माटी के मयाला जगाथन, लड़का लड़की मल्ला पढ़ाई के राह दिखाथन, दाई दीदी मल्ला सेहत के बात सिखाथन। आओ ददरिया कर्मा संग मंच मा अपन संस्कृति संग, काबर की देश तभेज बनी जब युवा मन जागी। यूथ फाउंडेशन माटी से जुड़बो, देश लगड़बो। मोर से संपर्क करो 9826379009। धन्यवाद।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी

0: बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: छत्तीसगढ़ ला छाँव करे बर मैं छानी बन जाते।
2: सुनो संगवारी हो, हमार संस्था यूथ फाउंडेशन गांव गांव जाथन, माटी के मयाला जगाथन, लड़का लड़की मल्ला पढ़ाई के राह दिखाथन, दाई दीदी मल्ला सेहत के बात सिखाथन। आओ ददरिया कर्मा संग मंच मा अपन संस्कृति संग, काबर की देश तभेज बनही जब युवा मन जागी। यूथ फाउंडेशन, माटी से जुड़बो देश लगड़बो। मोर से संपर्क करो 9826379009। धन्यवाद।
1: छत्तीसगढ़ ला छाँव करे बर मैं छानी बन जाते।
3: तो संगी हो, जब हमन सोयाबीन ले लगाथन तो कब बुआई के बेरा हा अभी के महीना के कहे जाए जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई के प्रथम सप्ताह है। यह बढ़िया रही थे और ज़्यादा देरी ले बुआई करे ले उत्पादन हा घट थे। अब बीज दर और दूरी कौन ढंग से होना चाहिए, तो बीज दर हा बीजा हमन ला 70 से 80 किलो प्रति हेक्टेयर पाछू लगते और कतार ले कतार के दूरी 45 सेंटीमीटर, पौधा ले पौधा के दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर, बुआई की गहराई हा 3 से 5 सेंटीमीटर तक रखना चाहिए। और बीजोपचार हमारा बुआई ले पहली करना चाहिए, तो फफूंद नासी ले बीज उपचार करा और उसके बाद राइजोबियम कल्चर हो, PSP फॉरेस्ट घुलनशील जीवाणु के उपचार कर रखे हमला बीजाला उपचारित करके रखना चाहिए और एक अंकुरण हाँ अच्छा होते और नत्रजन स्थिरीकरण हाँ बाढ़ते। और संगी हो, उर्वरक प्रबंधन ला हमला कौन ढंग करना चाहिए, तो मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरक हमला देना चाहिए। नाइट्रोजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 60 ले 80 किलोग्राम, पोटास 20 ले 40 किलोग्राम और सल्फर ला 20 किलोग्राम। और खरपतवार नियंत्रण खिलौला हमला अच्छे से करना चाहिए, काबर सोयाबीन में उत्पादन हाँ बहुत प्रभावित करते खरपतवार मन, है ना भाई। और रोग राई भर भी हमला नियंत्रण करना चाहिए, जैसे कि पीला मोजेक रोग, सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण ला ठीक से करना चाहिए। और कटाई और भंडारण कब करना चाहिए, तो जब संगी हो फल्ली मन 90 से 95% भूरा रंग के हो जाए और पत्ता मन झड़ जाए, तब हमला एक सोयाबीन की कटाई करना चाहिए। और कटाई के बाद बढ़िया सुखा के दाना में कम से कम 10 से 12% नमी हाँ ओखले कम ही रहे, तब हमला भंडारण करना चाहिए। इसना करथन तो बढ़िया रही थे। और संगी हो, हमन के खेत ला ध्यान रखना भी हमन की जिम्मेदारी है, तो जतका हो सके संगी हो हमला रासायनिक खाद के निर्भरता ला कम करना पड़ी, ताकि हमर खेत हा बढ़िया उपजाऊ बने रहे। काबर सबले ज़्यादा नुकसान हमला रासायनिक खाद हमर खेत ला करते, तो ओखर जगह बढ़िया हमला गोबर खाद के उपयोग करना चाहिए, कंपोस्ट खाद के उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारे खेत की उर्वरता बढ़े और हमारे खेत बढ़िया रहे। और खेत में आगी लगे ले भी हमला बचाना पड़ी। और देखो संगी, गुड बात कराते हैं। और आज ये बृहस्पत और आज हमन आप मल्ला फोन इन आधारित कार्यक्रम हेलो किसान वाड़ी ला सुनवाते हैं। तो आज के विषय खरीफ मौसम में धान बीज उत्पादन तकनीक, विशेषज्ञ डॉक्टर तरुण कुर्रे जनमन प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय कटघोरा के जिला कोरबा के, और संचालन करत है हमार पंचू भैया है। तो आवाज सुनत हैं फोन इन आधारित कार्यक्रम हेलो किसान वाड़ी।
4: संगवारी हूँ, राम राम, जय जोहार। मैं हूँ अपन के रेडियो संगवारी पंचू भाई रुपेश कुमार कंवर। आज ये बृहस्पत और बृहस्पत के आप मल अग्रा रथ अपन मन पसंद कार्यक्रम फोनिन कार्यक्रम के। संगवारी हो, खरीफ फसल के तैयारी हमर किसान भाई मन लग चुके हवे और ये बेरा हवे कि कैसे हमन जोन खरीफ फसल के जोन बीजा भात है उसका तैयारी कौन प्रकार से करी, यही क्रम में आज की विषय हवे खरीफ मौसम में धान के बीजा उपचार उत्पादन तकनीक। आज हमारे बीच में पहुना विशेषज्ञ आए हवे, कृषि महाविद्यालय कोरबा के प्राध्यापक डॉक्टर तरुण कुरेजी मन। ए मन आप मन ला फोन के माध्यम से बताही कि खरीफ मौसम में धान के बीजा उपचार तकनीक हमन कौन प्रकार से करी। तो सबसे पहले हमन किसान भाई मन कथी ले आपन के स्वागत करते हैं। डॉक्टर कुर्रे मैडम जी, आपन के राम राम, जय जोहार।
5: जय जोहार भैया पंचू।
4: कुर्रे मैडम, आपन करा जानना ये चाहबो कि अभी बेरा में हमर किसान भाई मन खरीफ फसल के तैयारी में लग चुके हवे, किसान भाई मन के संशय ये बात के रहते कि अभी बेरा कौन प्रकार के बीजा के हमन चयन करी, कैसे ओकर बीजा उपचारित करी, ये थोड़ा बता रहा था अपन।
5: अभी खरीफ फसल में मुख्य रूप से धान लेते हैं भैया, धान के अलावा अलग अलग प्रकार के बहुत प्रकार के बीज रथे में। तो अगर धान के बीज ला देखें तो मैं तीन प्रकार के बांटते हैं, जो मैं अभी मध्यम अवधि के, लघु अवधि के और दीर्घ अवधि के बीज रथे। तो लघु अवधि में देखें तो 100 से 120 दिन के रथे, और तो 100 से 120 दिन में अलग किस्म के लगते, मध्यम अवधि में अलग किस्म के लगते और दीर्घ अवधि

0: वाला अलग किस्म के लगते हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: तो लघु अवधि में अगर देखें तो 100 से 120 दिन वाला में इंदिरा बरानी धान लगा सकते हैं, समलेश्वरी लगा सकते हैं, MTU 10-10 लगा सकते हैं, 10-10 पूसा सुगंधित 5 लगा सकते हैं। मध्यम अवधि जो 120 से 135 दिन के रथे ओमे हमन राजेश्वरी लग सकते हैं, राजेश्वरी के अलावा जो IR 664 महामाया एमन लगा सकते।
1: मैडम जी आपन करा गुड़ बात करवेज करबो खरीफ फसल के बीजा उपचार के बारे में लगत है संगवाई मन फुकरत हवे आरो आत है पहले संगवाई मन कर गुड़ बात करथन। राम राम जय जोहार।
2: भैया मोर माया भरे राम राम। हमारे नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरल नारायण प्रसाद वर्मा बोला था भैया। भैया अभी यदि मैं खेती किसानी में लगे हाँ तो खेती के जोताई के संग कांटा खूंटी बीन डरे हवा साफ सफाई करके और ये धान बोए के तैयारी में हवा भैया। तो यही बात बार मैं आप ले फोन लगाया हूँ कि अभी धान में हमन कैसन ढंग ले बीज है और एक बुआई कैसन ढंग ले करी नहीं जम्मो बात में पूछे बार डॉक्टर भैया ने फोन लगाया हूँ भैया।
1: तो आज डॉक्टर दीदी मन आए हवा है आप मतलब बताए कि अभी खरीफ फसल में जो हम बीजा उपचार करत हन नवा तकनीक का है एक बारे में हमारे बीच में आए हवा कुर्रे मैडम आप मतलब बतावत हवा।
2: दीदी राम राम।
0: राम राम भैया।
2: तो अभी हम धान बोए के तैयारी में लगे हूँ दीदी तो एक बार मैं फोन लगाए हैं आप लोग। हाँ इतने जानकारी चाहिए मोला कि कैसन विधि ले धान बोइन और बीघा भर था यही जम्मो बात लो पूछे बार फोन लगाए हैं दीदी।
0: जिसे अभी धान बोहा भैया तो धान ले है आप मन जहाँ सहकारी समिति जहाँ बीजा निगम जहाँ है ना या फिर कृषि विज्ञान केंद्र ले लिया तो आप मन जहाँ भी जहाँ तो प्राइवेट दुकान से न ले करके आप मन कोई सरकारी संस्था जिसे सहकारी समिति होगी कृषि महाविद्यालय से ले सका था, कृषि विज्ञान केंद्र से ले सका था और बीज निगम से भी ले सका था तो वहाँ से ले बार आप मन प्रमाण प्रमाणित बीज लिया। प्रमाणित बीज में का है कि बीज उत्पादन अगर करते हैं तो प्रमाणित बीज आधार बीज ले तैयार होते तो बहुत अच्छा रहते वह गुणवत्ता युक्त बीज रहते तो जो सामान्य धान ले ओकर धान के जो उत्पादन है तो 15 से 20% आप मन के उत्पादन ज्यादा है। आप मन जब भी लिया जहाँ भी जा था सहकारी संस्था में तो सरकारी संस्था में जाके आप मन कही कि हमला प्रमाणित बीज चाहिए तो ओकर बाद प्रमाणित बीज लही सबसे पहले तो उठाहा फिर प्रमाणित बीज ला उठाए के बाद में आप मन घर लेके जाहा तो वो प्रमाणित बीज ला आप मन ला उपचार करना पड़िए। बिना बीज उपचार करे आजकल नहीं लगाते हैं ज्यादा अच्छा है बीज उपचार करना बहुत जरूरी है। कब बीज उपचार नहीं करिया कुछ बीज में हाँ का होते कीड़ा या फिर कोई बीमारी है ते वह तुरंत लग जाते जो हमन मृदा जनित बीमारी कथन और ओकर अलावा कुछ बीज है ते भी कभी कभी ऐसा होते कि वह भी कुछ खराब निकल जाते या कई प्रकार के परेशानी। अपन बीज उपचार कर लिया तो बीज उपचार करे अपन ट्राइकोडर्मा आते एक ठी वह बहुत सस्ता में मिल जाते एक पैकेट में 20 ग्राम रहते और वह 30-40 रुपए पहले ज्यादा नहीं मिल आप मन खरीद सका था ट्राइकोडर्मा वीडी करके आते या एजोटोबैक्टर ले सका था एजो स्पाइरेलम ले सका था ओला उपयोग कर सका था 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से आप मन उपचारित करके ओला बढ़िया छाव में सुखा दिया ओकर बाद में धान ला 15-20 मिनट जब सूख जाही ओकर ऊपर अच्छा से लेप लग जाही ओकर बाद में ओला आप मन लगा सका था।
2: अच्छा दीदी हाँ ठीक दीदी सुघर जानकारी दे कर बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।
0: धन्यवाद भैया
1: आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद कि बेरा निकाल के फोन लगाया।
2: धन्यवाद भैया जय जोहार।
1: जय जोहार। तो कुर्रे मैडम अगर पहले हम गोड़ बात करते रहे कि धान के बीज के उत्पादन का हवा एक महत्व का है एला बताता आप
0: धान बीज उत्पादन के आज जिसे विषय भैया तो धान बीज उत्पादन मतलब ये कि जो किसान भाई है किसान भाई मतलब प्रमाणित बीज के ही उपयोग करना है। प्रमाणित बीज है उच्च गुणवत्ता वाला बीज है जो 15 से 30% तक ओकर उपज बहुत अच्छा आते सामान्य बीज के तुलना में ओकर अलावा वह जो रोग मुक्त रहते जो बीज जनित बीमारी रहते बीज जनित बीमारी से मुक्त रहते किसी प्रकार से कोई भी जो खरपतवार बीज है वो भी नहीं रहे ओमे का है कि जो आप मन के सामान्य आय होते ओकर से लगभग बहुत ज्यादा 30% तक ओकर आय ज्यादा बढ़ी। किसान भाई है ओकर आय भी बढ़ी आय के साथ साथ ओला उच्च गुणवत्ता युक्त बीज भी मिल जाही।
1: अच्छा,
0: तो ओकर बीज उत्पादन के बहुत ज्यादा महत्व है। अगर बीज उत्पादन नहीं करी किसान भाई मन तो ओला सामान्य जो बीज रहते जो में कई प्रकार के कीड़ा बीमारी लगे रही या फिर कोई जो खरपतवार के बीज है वो भी लगी तो बाद में रोगिंग के समस्या आते तो ओकरे बा बीज उत्पादन तकनीक अपनाना चाहिए।
1: अच्छा अगर ये माध्यम से अगर हम खेती किसानी करत हन तो जो नुकसान होते फसल में धान पान के वो नुकसान से हम बच सकते हैं।
0: हाँ, नुकसान से बच सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा जिससे बात करी खरीफ मौसम में धान के बीज उत्पादन पर कौन कौन से जो किस्म हवा है वो सबसे हमारे उपयुक्त हवा है बताता आप।
0: धान बीज उत्पादन में अगर देखें तो किस्म जो है 3 प्रकार के किस्म लगते हैं लघु अवधि मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि के रहते।
1: अच्छा अच्छा
0: लघु अवधि के अगर देखें भैया तो वह 100 से 120 दिन के रहते तो 100 से 120 दिन में जो किसान भाई

0: ये थे इंदिरा बरानी धानवन समलेश्वरी के आते और MTU 10-10 पूसा सुगंधा 5 ये है लघु अवधि वाला किस्म है।
1: अच्छा,
0: और मध्यम अवधि के जही तो 120 से 135 दिन के अगर कठे टाइम है किसान भाई तल कर सकते है। ओमे महामाया राजेश्वरी जो इंदिरा एरोबिक 1 भी कहते राजेश्वरी ला इंदिरा सोनाली IR 64 ए वह किस्म ले सकते दीर्घ अवधि जो कठे ज्यादा अवधि के समय ले सकते तेमन भी कर सकते है 135 से 140 दिन के 150 दिन तक के भी लेते ते में स्वर्णा दुर्गेश्वरी कर्मा मासूरी MTU 70-29 ये इस प्रकार के जो किस्म है तेला किसान भाई ले सका थे। तीनों अलग अलग अवधि में जिसे अभी कुछ दिन अभी बारिश नहीं आ पाते बारिश लेट भी होते थोड़ा तो बारिश लेट होते तो किसान भाई मन लघु अवधि है तेकर किस्म ले ली किसान भाई मन ताकि होती अगर लगाही भी थोड़ा दिन बाद तो भी वह जल्दी तैयार हो जाए पक के और फिर रबी सीजन पर मतलब समय मिल जाए।
1: अच्छा,
0: अगर समय रही तो मध्यम अवधि और अवधि लभी ले सकते किसान भाई
2: कि हम धान पान के तैयारी में भी लगे हमन कि हमार करा समय बिल्कुल नहीं बच पाए भुइया की तैयारी है भुइया के चयन ये हमन नहीं कर पान तो बीज उत्पादन पर सबसे अच्छा कौन से हमारे खेत में चयन करना चाहिए कैसन हाँ माटी भुइया हमारे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा हम उपज ले सके धान के एला बताता आप।
0: खेत की तैयारी सबसे पहले हम लोग कर लेना चाहिए तो तैयारी करने से पहले हम लोग देखना चाहिए कि जो खेत है तेह समतल होना चाहिए सिंचाई के व्यवस्था होना चाहिए जल निकासी के भी अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। कभी अचानक से बारिश नहीं हो पाते तो सिंचाई के अगर थोड़ा बहुत व्यवस्था है जिसे कहीं तालाब है नहर है तेकर से पानी खींचा जा सके। जल निकासी अगर बहुत ज्यादा कभी ऐसा होते कि लगातार 3 दिन 4 दिन हफ्ता भर बहुत पानी गिर देते तो उसमें भी क्या होता है कि धान के फसल तो उतना नुकसान नहीं पड़े लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा अगर हो जाए तो नुकसान तो होना तय है। तेकर वह जल निकासी के उच्च व्यवस्था होना चाहिए कि जल निकासी भी बर भी मुही जो खोला जा सके समय होते हुए कर भी व्यवस्था कर लेना चाहिए किसान भाई मल्ला। और जमीन समतल होना चाहिए।
1: अच्छा,
0: समतल अगर नहीं रही भैया तो ऊपर नीचे रही तो बहुत ज्यादा पानी कहीं ज्यादा कहीं डपरा कहीं इतने भर जाते तो वहां पे समस्या आ सका थे। तो किसान भाई मल्ला जब भी धान उत्पादन करी तेकर पर मिट्टी भी पूछा था सबके अलग अलग प्रकार से मिट्टी है तो जो मिट्टी है तेमे कोई है लो लैंड जो है।
2: मैडम आपन का गोड़ बात करबे करबो पहली संगवारी मन का गोड़ बात कर लेते हैं। हेलो,
0: जो पानी गिर जाना चाहिए थी लेकिन पानी नहीं गिर पाते तो आप मन ने जो खुर्रा बोनी है खुर्रा बोनी भी ज्यादा रोपा ले अच्छा रहते हालांकि खुर्रा बोनी में थोड़ा सा परेशानी जो घास है तेकर रहते और रोपा में ओकर नहीं रहे लेकिन रोपा में बहुत पानी मांगते और खुर्रा बोनी है कम पानी मांगते तो अभी जो हाँ अभी समय जिसे पानी अभी तो केवल बूंदाबांदी होते ज्यादा तो पानी नहीं गिराते तो आपमन खुर्रा बोनी बो देवा। खुर्रा बोनी जब बोहा तब में आपमन जो जब लगा तब में घास हुई तो घास ला पहले ही आपमन ला निपटारा करे बस जो 3 से 4 दिन जब आपमन के जो धान है तह नहीं निकले ओकर ले पहली आपमन ओमें प्री इमरजेंस हमन का धन मतलब जो घास हो से पहली ओमें आपन कोई भी शाकनाशी डाल देवा हर्बिसाइड तो शाकनाशी डाले बा हमन प्री इमरजेंस में पेंडी मेथलिन ला डाल सका था। पेंडी मेथलिन बहुत अच्छा रहते वहाँ कोई प्रकार से आपमन के जो धान है तेला खराब नहीं करे ओकर बाद में पेंडी मेथलिन के बाद में जिसे 20-25 दिन आपमन के फसल हो जाते तो या तो आपमन थी अगर कोई लेबर है तो आपमन ओला हाथ से निकाल सका था अगर नहीं है तो फिर कोई भी अगर वीडर है जो छोटे छोटे हो कथे दे मन हाथ से ओला भी निकाल सका था या नहीं है तो 20-25 दिन बाद पोस्ट इमरजेंस कथे हमन तेला आपन उपयोग कर सका था। पोस्ट इमरजेंस शाकनाशी उपयोग करके आप हर कोई बिस्पायरी बैग सोडियम जो रथे जाना था नामिनी गोल्ड के नाम से आते तेला भी आपमन उपयोग कर सका था वो भी बहुत अच्छा रहते उसमें दोनों प्रकार से जो घास रहते कहना चाहिए वो जो चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों लोहा नियंत्रित कर देते
3: हाँ
0: ओकर उपयोग अपन कर ले और खुर्रा बोनी बहुत वह ज्यादा अच्छा रहते ओकर उत्पादन भी रोपा जिसे ही आते कोई बहुत ज्यादा ओकर अंतर नहीं पड़े तो अपन लगा सका था खुर्रा बोनी।
3: हाँ जी हाँ
2: बहुत बहुत धन्यवाद अपन फोन लगाया।
3: हाँ डाटा साहब पंचू है राम राम
2: राम राम राम राम। हाँ तेकर पहले हम गोड़ बात करते रहे की बीजा की जो दूरी हवा थारा लगाथन या बोता बोथन इला दूरी बता रहा था आप।
0: दूरी अगर देखें तो अलग अलग सब प्रकार के रहते जिसे धान के हमारे कई विधि से बोथन रोपा भी लगाथन खुर्रा बोने भी बोथन ओकर अलावा लेही विधि से करथन जो बीज ला पहले से ही अंकुरित करके भी करथन।
2: अच्छा,
0: वो भी एक विधि है सीड्रिल के माध्यम से भी करथन तो एमे जो रोपा के देखे तो जो अगर कतार से कतार अगर हम लगाथन 30 सेंटीमीटर कर सकते किसान भाई 20 से 30 सेंटीमीटर जो पौधा से पौधा की अगर दूरी करे तो 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी में किसान भाई लगाए, और लाइन से लगाए तो ज्यादा अच्छा है। अगर हाथ से जो छिड़कावा विधि करते हैं, छिड़कावा

0: करे से क्या होते कि जिसे हो वगैरह उपयोग करना है, हम मतलब वीडर भी उपयोग करना है ते उपयोग नहीं कर पाने, वो हमें कहे कि वह लाइन से रहे लगे नहीं इतनी होती तितर बितर लगते तो वो कर नहीं पान उपयोग, तो हमारे हाथ से ही निकालना पड़ते। ते कहले किसान भाई मतलब अच्छा है कि लाइन से कर बुआई करे, लाइन से बुआई करे तो सीड ड्रिल के माध्यम से करी तो ओकर बस जो दूरी है 20 गुणा 10 सेंटीमीटर बहुत अच्छा रहते, किसान मन ओला उपयोग कर सकते हैं।
1: अच्छा, एकर माध्यम से खरीफ फसल जो धान के फसल आवे ओला अपना सकत
0: हाँ
1: हैं।
0: बिल्कुल।
1: जिसे बात करी बीज दर के, तो 1 एकड़ में हमल कते कन बीजा की आवश्यकता होते एला बताता, संगे संग जिसे कि हमन बोता बोवाथन या थरहा लगावाथन, दोनों अलग अलग बताता आप।
0: जो हमन लगाथन किसान भाई मन लग जनरली कथन तो हर 30 से 40 केजी 1 हेक्टेयर में हमन बोतन, 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़।
1: अच्छा,
0: 2.5 एकड़ में हमन अगर देख करबो तो 30 से 40 केजी 1 हेक्टेयर में हमन जो बोबो दे में खुर्रा बोनी में कर देबो, और अगर हाइब्रिड सीड लेथन तो ओमे 15 से 20 केजी 1 हेक्टेयर में लिया जा सकत है। हाइब्रिड सीड में अगर लें तो अगर रोपा अगर लेते हैं तो भी 40 से 50 तक आराम से ले सकते हैं केजी 1 हेक्टेयर में, जो मैं 2.5 एकड़ कहा था। खुर्रा बोनी में करी तो खुर्रा बोनी में थोड़ा सा ज्यादा लागदा थे, अगर खुर्रा बोनी में सूखा में लगाही तो सूखा में लगाए में ओला 60 केजी तक लिया जा सकत है, 60 केजी 1 हेक्टेयर में ले सकत है।
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ, छिड़कवा विधि से भी कई जन लगाते हैं, कुछ किसान भाई मंटी कुछ नहीं रहे वो मंटी ट्रैक्टर वगैरह, तो छिड़कवा विधि में ज्यादा लगते बीज, ओमे किसान भाई मन 80 तक चल देते, 80 से 100 केजी 1 हेक्टेयर में लगा सकत है। अलग विधि में अलग अलग सीड लेते हैं हमारे मतलब ओकर मात्रा। हाँ,
1: राम राम, जय जोहार, कौन बोलत, कहाँ बोलत है जी?
2: जय जोहार, मैं कोरबा जिला ग्राम और चोढ़ाले बोला था, मोर नाम जयश्री करते है। मुला ये जानकारी चाहिए कि हमार बहरा नार बना जो खेती है, मुला ओगरबा अच्छा किस्म के मुला धान चाहिए, कौन सा धान में उपज कर सकत है?
1: यही जानकारी दे बार आज हमारे बीच में पहुना आए हैं डॉक्टर कुरे जीवन, आप मतलब बतावत हवे
2: जी।
0: नमस्ते दीदी।
2: दीदी
0: अच्छा किस्म के चाहिए आप मन के बहरा भूमि में?
2: बहरा
0: तो बहरा भूमि में अभी इंदिरा एरोबिक वन के जो मैं राजेश्वरी में बताते रहे 120 दिन के फसल है ओला लगा सका था, वो बहुत अच्छा है। एकर अलावा 120 से 125 दिन के विक्रम TCR भी है, वो भी किस्म बहुत अच्छा है, अभी 2020-21 के किस्म है, अभी हमारे कृषि विश्वविद्यालय ने निकाला है, वो भी बहुत अच्छा किस्म है। ओला भी आप मन के जो खुर्रा बोनी बोहा था या फिर आप मन बहरा लैंड करिया था, दोनों बार बहुत अच्छा है। विक्रम TCR इंदिरा बरानी धान ते मन आप मन ले सका था। हाँ, कम दिन
2: दीदी एला हमन लई हारा घलुक भी बो सका था ना?
0: हाँ हाँ, वो भी बो सका था जो लेही तरफ से।
2: जी
0: हाँ हाँ,
1: तो लईहरा बहिया तो मैं विशेष हमल चेत करके आ सकते हवे कि पानी के उचित ठहराव और निकासी दोनों के हमला बरोबर मात्रा में सावधानी पूर्वक
2: जी कम होना चाहिए ज्यादा?
0: हाँ, बहुत ज्यादा हो जाये तब बहा जाये। हाँ,
2: बहा जाये हमला समान मात्रा में हमला पानी चाहिए।
0: हाँ, हाँ।
1: काबर के आपके क्षेत्र है देखिये तो पहाड़ी जंगली क्षेत्र हवे
2: पानी? जी बिल्कुल, हमारे क्षेत्र है जंगली पहाड़ी क्षेत्र है।
1: बहुत अच्छा लगे फोन लगाया कर बार आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम,
2: धन्यवाद महुला तुम्हें से बातचीत करे महुला जानकारी दे है और बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। अभी बेरा हवा हमारे किसान भाई मन खरीफ फसल की तैयारी में लग चुकी हवा जीवन का पल्लो के साधन हवा पानी के साधन हवा है उन पहली के 15 दिन पहली खेत की तैयारी में लग चुके हवा नर्सरी की तैयारी में लगे हवा। अभी हमारे कते किसान भाई मन खेती के संगे संग नर्सरी की तैयारी में लगत हवा, तो नर्सरी की तैयारी हमन कौन प्रकार से करी एला आप बताता।
0: नर्सरी लगाए व किसान भाई मन विशेष रूप से ध्यान दे, कुछ किसान इसे रहते कि नर्सरी बहुत पास पास लगा देते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा धान हक आए कि एकदम आस पास हो एकदम पास पास हो इसे वह ज्यादा बढ़ नहीं पाए उसमें तो और एक तो बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाते, तो ओकर विशेष ध्यान दे कि 1/10 1/10 भाग मतलब अगर मतलब 1 हेक्टेयर में लगाना है 1 हेक्टेयर मतलब होते 10,000 स्क्वायर मीटर।
1: अच्छा,
0: 10,000 वर्ग मीटर तो 10,000 वर्ग मीटर में अगर लगाना है तो 1,000 मीटर में ओमन ला 800 से 1,000 मीटर में नर्सरी ला बो देना है, मतलब नर्सरी अगर बोही तो केवल 1,000 मीटर में करी तो यह पूरा 1 हेक्टेयर में आराम से किसान भाई मतलब मिल जाही, तो मैं एकदम पास पास में भी नहीं लगाना है और बहुत दूर में भी नहीं लगाना है, बहुत दूर में लगाही तो कहे कि घास होए के संभावना रखते और पास लगाही तो आपस में ही बहुत ज्यादा ओमन के बीच में कंपटीशन हो जाते और पौधा बढ़वार नहीं हो पाए बहुत छोटे ही रह जाते, तो किसान भाई मन ओकर जो दूरी है तेला भी बहुत अच्छे से करी ओला बहुत ज्यादा एक ही जगह में नहीं बो दी तो 1,000 वर्ग मीटर में लगा दी तो ओमन आराम से 2.5 एकड़ में हो जाये।
1: अच्छा, फोन करा थे। हेलो, राम राम, जय जोहार।
3: राम राम, जय जोहार। हमारे रोपाई लगाए के समय में

0: उर्वरक खाद की कौन कौन या करके डाले जाए ताकि अच्छा हमला फसल मिले।
1: अच्छा,
0: एक बारे से आप बताता।
1: यही जानकारी ला बताए बार आज हमारे बीच में डॉक्टर तरुण कुरे जी मनाए हवा और आप बताते हवा की रोपाई घानी है मतलब कैसा खातु माटी के प्रबंधन हमला करना चाहिए।
2: नमस्कार भैया, रोपा के टाइम आप मन ला उर्वरक के प्रबंधन करना है तेकर बाद सबसे पहली जब आप मन खेत ला तैयार करिया तो खेत ला तैयारी करे के टाइम में ही जो गोबर खाद है ते गोबर खाद ला आप मन ला डाल देना है 10 से 15 क्विंटल एक हेक्टेयर में। आप मन अच्छे से मिला दिया बढ़िया गोबर खाद ला मिलाए के बाद में जब आप मन रोपा करिया तब रोपा में करे के समय सबसे पहले तो ला उपचारित कर देना है ओकर जो जड़ है तेला उपचारित कर देना है ट्राइकोडर्मा एजोटोबैक्टर है जो स्पाइरिलम काकरो से भी 10 ग्राम एक पौधा है तेकर हिसाब से ओकर बाद उपचारित करके ओला जब खेत में लगाहा तो खेत में लगाए से पहली कहे की जब रोपा करते तो अच्छे से मिलाते हैं जमीन में बहुत बढ़िया ओला कीचड़ करते जाना था कीचड़ कर यती खानी ही आप मन जो फास्फोरस और पोटास है तेला डाल देना है फास्फोरस पोटास ला मिला करके डालना है ओमे 100-60-40 के हिसाब से डालते हैं 100 kg 60 kg फास्फोरस और 40 kg पोटास ला कर हिसाब से करना है अच्छे से मिला करके जब फास्फोरस और पोटास ला मिला करके और यूरिया के तीन भाग कर देना है तीन भाग करना है तेमे एक भाग ला हमला पहले ही डाल देना है कीचड़ मचास खानी और ओकर बाद में आप मल्ला रोपा लगाना है। अभी रासायनिक खाद ला उपयोग ना कर कम से कम हमला रासायनिक खाद ला उपयोग करके हमला जैविक खेती की ओर जाना है जैविक खेती तो जाना ही है ओकर पहले हमला मृदा के जांच भी करवा लेना है मृदा के जांच करिए तो हमें पता चल जाते कि जमीन में कितना नाइट्रोजन है फास्फोरस है पोटास है तेकर हमला पता चल जाते 12 प्रकार के हमें जो भी न्यूट्रिएंट है पोषक तत्व तेकर पता चल जाते ओकर माध्यम से हमला कुछ भी उर्वरक डालना है लेकिन अभी उर्वरक के मात्रा ला हमला मिट्टी बचाओ अभियान चलत है तेमे हमला उर्वरक ला कम से कम मात्रा उपयोग करके जैविक प्राकृतिक खेती की ओर जाना है। तो जैविक प्राकृतिक खेती में अभी बहुत ज्यादा चला थे बीजीए के जो नील हरित काई का थे नील हरित काई ला हमला उपयोग करना है और मनला हमला 10 से 15 kg एक हेक्टेयर में हमला उपयोग कर लेना है। नील हरित काई आप मन घर में भी बना सका था ओला बनाए से जो आप मन के धान है तेकर बन नत्रजन स्थिरीकरण करे के भी काम करते हैं तो हवा जो भी नाइट्रोजन के कमीला आप मन के पूरा करी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास के कमीला पूरा करे के काम करी।
1: जैसे बात करी मरावी जी अभी का है हमला खेत ला बचाना हवा तो खेत ला बचाए बार हमला तकनीक हवा की हमन हरियर खाद जला ढेंचा का था ढेंचा के उपयोग करके हमन अच्छे से अपन जो रासायनिक खाद है कीटनाशक है ओकर हम उपयोग नहीं करी बल्कि हम ढेंचा खाद के उपयोग करके अच्छा से अपन माटी के उपजाऊ क्षमता बढ़ा सकत हन संगे संग धान की जो पैदावार है वाला भी बढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद बेरा निकाल के अपन फोन लगाया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद बढ़िया समाचार बताया खेती बारे में।
1: संगवारी एक तरह से आज के फोन इन कार्यक्रम और आज के विषय हिसाब है खरीफ मौसम में धान बीज उत्पादन तकनीक हमन कौन प्रकार से करी। आज हमारे बीच में पहुना आ रही हवाए कृषि महाविद्यालय कोरबा के डॉक्टर तरुण कुरेजी मन आपन बताया हमारे किसान भाई मल्ला कि कैसे खरीफ मौसम में धान की बीज उपचार करी और नवा तकनीक कौन प्रकार से करी इतका बड़ी जानकारी बताया आपन ला एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जय जोहार।
2: जय जोहार पंचू भैया।
1: संगवारी हो अवैया बेर में फिर अपन कर नवा विषय में चर्चा करबो तो यही कार्यक्रम संग पंचू भेला देव विदा जय जोहार राम राम। जात जात अपन हमारे आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर के फोन नंबर बता देते हैं हमारे आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर फोन नंबर है 266-592 एक खो नंबर है 310026। संगवारी फोन लगा की पहले अपन हमारे आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर के एसटीडी कोड लगाया झन बुला तो बिलासपुर के एसटीडी कोड हवा 07752। यही कार्यक्रम संग पंचू भेला देव विदा जय जोहार राम राम। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग प्रदान करी हवा SB लखड़ामन।
3: संगी अभी आप मन सुना हेलो किसानवाड़ी विषय रही खरीफ मौसम में धान बीज उत्पादन तकनीक विशेषज्ञ रही है डॉक्टर तरुण कुरे प्राध्यापिका कृषि महाविद्यालय कटघोरा जिला कोरबा संचालन करत रही से पंचू भैया। अब आवाज सुन ले थाने संदेश।
4: मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो सुनाओ मेरी सौतन को।
5: किसको?
4: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही है।
5: अच्छा ये बात है।
4: हाँ, क्यों क्या हुआ अब बात नहीं होती क्या?
5: अब तो झट से बात हो जाती है।
4: ऐसा क्या?
5: हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
4: अरे वाह इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
5: हाँ
4: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
6: कृषि संबंधी समस्याओं का अपने

0: समस्या में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
1: इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन खाक बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहा है, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: 15-16 से ऑयल पाम की खेती के है, और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं, और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं, और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं, और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
5: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
6: ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं, मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं।
7: संगी हो, अब समय हो गया है जाए के, तो भाई अंतस में दया में राख के आज्ञा देव अपन सर्वन भैया घर जाए के। जय जोहार हो, राम राम।
8: कार्यक्रम किसानवाड़ी अभी हम प्रसारित कर रहे थे, और अब समय हो चला है श्रोताओं कार्यक्रम महिला सभा का।
9: नमस्कार सखियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम महिला सभा, और मैं हूं आपकी सखी गीता होता। बहनों, महिलाएं केवल परिवार की धुरी नहीं होती हैं, बल्कि एक माँ, बेटी, बहन, पत्नी और एक कर्मठ नागरिक के रूप में अनेक जिम्मेदारियां निभाती हैं। घर और कार्यस्थल की दोहरी जिम्मेदारियों के बीच अक्सर महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाती हैं, और इसका परिणाम शारीरिक थकान, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं के रूप में सामने आती हैं। बहनों, ऐसे में योग महिलाओं के लिए एक सशक्त साथी बनकर उभरता है। बहनों, योग न केवल शरीर को स्वस्थ और जवान बनाता है, बल्कि मन को शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मकता भी प्रदान करता है। योग केवल व्यायाम ही नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने का एक प्राचीन पद्धति है। ऐसी प्राचीन विधा है कि जिसने पूरे विश्व को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखाया है। जी, हम बात कर रहे हैं योग, जो हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। बहनों, योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम ही नहीं, बल्कि यह मन, मस्तिष्क और आत्मा को भी संतुलित करता है। बहनों, योग सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए हो। या बहनों, हम सभी को कम से कम 20-20 मिनट तक योग तो अपनाना ही चाहिए। यदि आप गृहिणी हैं तो आप अपने काम से निवृत्त होने के बाद भी योग कर सकती हैं, पर ध्यान ये रखें कि योग से पहले खाली पेट हो। अगर आप में से कोई कामकाजी महिला हो और अपने सुबह का समय ले सकते हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सुबह का समय आप नहीं दे पा रही हैं, तो आप शाम का वक्त भी योग के लिए सही होता है। आपकी थकावट भी दूर हो जाएगी और आप तनाव मुक्त भी रहेंगे। बहनों, अगर मेरा कहने का मतलब है कि कैसे भी हो, आप किस भी परिस्थिति में हो, योग को अपनाएं। अगर आप सिर्फ सूर्य नमस्कार भी करते हैं तो ये संपूर्ण योग का सार होता है। इससे भी आप स्वस्थ और तनाव मुक्त रह सकती हैं। अगर हम बच्चों के बारे में बात करें तो योग का अभ्यास बच्चों को शुरुआत से ही करना चाहिए, मगर ये ध्यान में रहें कि बच्चों के स्तर को ध्यान में रख कर ही उन्हें थोड़ा योग कराएं, या बच्चे स्वयं भी योग कर सकते हैं। और इन सभी बातों का ध्यान रखें कि उन्हें कौन सा आसन या प्राणायाम करना चाहिए। आज के दौर में बच्चे पढ़ाई प्रतियोगिता, मोबाइल और स्क्रीन के बढ़ते उपयोग के कारण तनाव, थकान और एकाग्रता की कमी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसका समाधान भी योग ही है। बच्चों के लिए कुछ सुरक्षित सरल योगासन, जैसे कि ताड़ासन है, वृक्षासन है, भुजंगासन, तितली

0: शवासन, बलासन, इन आसनों से शरीर मजबूत और लचीला बनता है और साथ ही सर्वांगीण विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। बहनों, अगर हम गर्भावस्था की बात करें तो गर्भावस्था में महिलाओं का जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण समय होता है और इस वक्त गर्भवती महिलाओं के लिए योग लाभकारी होता है। इससे शरीर लचीला होता है और तनाव भी कम होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रसव के लिए शरीर तैयार होता है। हालांकि गर्भावस्था में किसी भी योगाभ्यास को शुरू करने से पहले चिकित्सक और प्रशिक्षित योग विशेषज्ञ की सलाह जरूर लेनी चाहिए। बहन, उसी तरह बढ़ती उम्र के साथ साथ महिलाओं के जीवन में मेनोपॉज की स्थिति आती है। इस दौरान हार्मोनल बदलाव के कारण चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, तनाव और थकान जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। तो योग और ध्यान इन लक्षणों को कम तो करते ही हैं और नियमित योगाभ्यास मानसिक संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होता है और जीवन भी गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। तो बहनों, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं और कुछ आसन है जिसे आप प्रतिदिन इसे अगर अपनाते हैं तो एक निश्चित समय निर्धारित कर लें कि योग खाली पेट में करें और हल्के भोजन के बाद करें। प्रशिक्षित योग शिक्षा का मार्गदर्शन लें। योग के साथ संतुलित आहार और पर्याप्त नींद भी बहुत जरूरी है। बहनों, कुल मिलाकर हम यही कहना चाहते हैं कि योग केवल अभ्यास नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन की कला है। महिलाओं के लिए योग शारीरिक शक्ति, मानसिक शांति, आत्मविश्वास का सशक्त माध्यम भी है। आइए इस योग दिवस और उसके बाद भी योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। तो बहनों, अब चलिए चलते हैं आज का हमारा क्रम लोक संस्कृति में, और जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं प्रतिज्ञा सिंह से, जो एक साहित्यकार है, और हमारा चर्चा का विषय है लोक संस्कृति में ददरिया। तो आइए सुनते हैं हम प्रतिज्ञा सिंह को। संस्कृति अपनी सादगी, सहजता और प्रकृति से गहरे जुड़ाव के लिए जानी जाती है। यहाँ का लोकगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि यह जनजीवन की भावनाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों और सामाजिक मूल्यों के सशक्त वाहक भी हैं। छत्तीसगढ़ की लोकगीत में यहाँ की मिट्टी की खुशबू, लोक जीवन की सरलता, प्रकृति के प्रति प्रेम तथा सामाजिक समरसता का सुंदर चित्रण मिलता है। जहाँ ददरिया, सुआ, कर्मा, बांस गीत जैसी अनेक लोकगीत परंपराएं आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय है। इन गीतों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सांस्कृतिक विरासत को सहेजना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आइए इसी विशेष क्रम में छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की परंपरा, उसके महत्व और उसके संरक्षण की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद है प्रतिज्ञा सिंह, जो एक साहित्यकार हैं और साथ में वकील भी। तो सबसे पहले तो प्रतिज्ञा जी, हम अपने स्टूडियो में आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले तो हमें अपने बारे में और अपने बचपन की गाँव की संस्कृति स्मृतियों के बारे में हमारे श्रोता को कुछ बताएं।
1: जी गीता जी, मैं प्रतिज्ञा सिंह पेशे से अधिवक्ता हूँ, तन मन धन से छत्तीसगढ़ महतारी की बेटी। उनकी गोद में खेली, खाई, बड़ी हुई। मेरा बचपन मुंगेली जिला के पास एक छोटे से गांव किस तरह में बीता, और मेरे लिए गांव का मतलब सुकून, शांति, दादी कहाना और गांव की दादियों से ददरिया सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था
0: जी।
1: मुझे आज भी याद है जब बारिश आती थी और कुएं, तालाब, नदियां पानी से जब लबालब भर जाती थी, तब हमारे गाँव के किसान व काकी काकियां, दाइयां सुकून से खेत में काम करती हुई ददरिया गाती थी। वह कभी न भूलने वाला वह सुकून भरा अविस्मरणीय पल था, जो मुझे आज भी याद है और मैं उसे याद करके बहुत आनंदित होती हूँ।
0: जी प्रतिज्ञा जी, जैसे अभी आपने कहा कि आपको सारी चीजें अच्छी लगती हैं, ददरिया आना है, तो ददरिया को पहली बार कब और किस माहौल में आपने सुना है और उस अनुभव को आप कैसे याद करती हैं?
1: जी गीता जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न किया आपने। मैं शायद 8 या 9 साल की थी, सावन का महीना था और उस समय खेतों में धान की रोपाई हुआ करती है। हम लोग गांव से हैं तो हमारे घर के आसपास बहुत से खेत हैं, और खेतों में जब बारिश आ जाती है, पानी भर जाता है, तो उसमें रोपाई का काम शुरू हो जाता है। तो सावन के महीने में हमारे गाँव की काकी काकियां रोपाई के लिए बहुत भारी मात्रा में 40-50 लोग आके और वहां पर रोपाई करती थी, और वो कुछ बहुत ही मधुर गुनगुनाती थी जिसे मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगता था, और फिर मैं उसे सुनने के लिए पास में जाके खेत के मेड़ में बैठ जाया करती थी। तब मुझे पता चला कि गांव में किसनहा काकियों को ये क्या गाती हैं। वो क्या करती थी कि वो आपस में जो चीजें होती थी वो बड़े ही प्रेम से गुनगुना कर गाती थी, जैसे देवर भाभी, ननंद भाभी या सास और बहू की जो बीच के वार्तालाप होते थे वो उन्हें बड़े ही सुंदर स्वर में और गाया करती थी, और बहुत ही एक साथ मुस्कुराया करती थी। तब मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, संगीत से कान को दूर किया जा सकता है।
0: जी बिल्कुल प्रतिज्ञा जी, और अच्छा लगता है अगर कोई तनाव में है और संगीत चला दे, चाहे वो ददरिया हो, लोकगीत हो, या फिर आप हिंदी गीत की हम बात कर ले, तो एक सुकून भरा होता है और हम

0: तनाव से मुक्त हो जाते हैं। तो अभी आपने कहा कि ददरिया जो है समूह में महिलाएं गाती हैं खेतों खलिहानों में, तो क्या छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में इसका महत्व तो अब भी है?
1: जी हाँ, बहुत सरल शब्दों में कहूँ तो ददरिया छत्तीसगढ़ का संवाद गीत
0: जी,
1: और इसमें मन का भाव व अपनी हंसी ठिठोली प्रेम सम्मिलित। ददरिया की तीन महत्वपूर्ण बात है मैडम, जैसे कि ददरिया जो है रिश्तों का सेतु है
0: जी,
1: देवर भाभी ननंद भौजाई सखी सहेली सबके बीच एक दूरी ददरिया मिटा देती है।
0: क्या बात,
1: अपने मन की बात को ददरिया के माध्यम से कहने से कड़वी बात भी बुरी नहीं लगती
0: जी।
1: शायद इसलिए ददरिया को गाकर और आपसी संबंध को मधुर बनाया जाता है
0: जी।
1: माटी की पहचान ददरिया, तय का मोला मोहनी डार दिए गोंदा फूल, तय का मोला मोहनी डार देना। यदि देवर भाभी को ऐसा बोलता है तो भाभी के चेहरे पे हंसी आ जाती है, या ननंद भाभी को बोलती है तो भी हंसी आ जाती है। तो ये ददरिया है और ये ठिठोली है। यह गाँव का स्कूल भी है, खेत के भीतर कीचड़ में काम करते 40 लोग जब ददरिया गाते हैं तो उन 40 किसानों के मेड़ में बैठे बच्चे उसे सुनते हैं और वो

0: आ जाती है, या ननन भाभी को बोलती है तो भी हंसी आ जाती है। तो ये एक ददरिया है और ये ठिठोली है। यह गांव का स्कूल भी है। खेत के भीतर कीचड़ में काम करते 40 लोग जब ददरिया गाते हैं तो उन 40 किसानों के मेड़ में बैठे बच्चे उसे सुनते हैं और वो सुनकर कहीं ना कहीं उसे अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक सामाजिक स्कूल भी है
1: जी,
0: जो ददरिया को बढ़ा रही है, अपनी संस्कृति को आगे प्रदान कर रही है, परोस रही है।
1: जी
0: जी, जैसे आप ददरिया की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको एक सिंपल सा सुनाती हूँ कि मेरे दादाजी थे और दादाजी हमारे बैठे रहते थे, गांव में पर्ची हुआ करता है, बैठा बोलते हैं, और वहाँ बैठने के लिए खाट और पाटे लगे हुए रहते थे। तो मेरे दादाजी वहाँ रोज शाम को बैठा करते थे और दूर से सड़क से आती हुई गाड़ियां दिखाई पड़ती थी तो मेरे दादाजी गुनगुनाते थे, दुल्ला पुरले डम्फर आते सेद गंगा जाथेगा, जम्मू अदनी पच्छेरी मा झूलत झूलत जाते, मर जाबो गिर जाबो कह के नैया हिला डरगा, रेंगत पैदल सेद गंगा कब्बू नहीं तो जाबोगा। बड़े ही से गाते थे और मुझे बड़ा आनंद आता था उनके उस स्वर को सुन के। और वो सामने जो आंखों के सामने जो दिखती थी वही चीजों को वो अपने शब्दों को संगीत में पिरो कर गाया करते थे।
1: क्या बात है प्रतिज्ञा जी, आपकी इस ददरिया से हमें वो गाँव का वो आंगन, वो बैठा, वो दृश्य नजर आ रहा है और वो कितना अच्छा वो दृश्य रहा होगा, कितनी हंसी ठिठोली रही होगी, आज वो चीज हम अपने बीच नहीं देख पाते हैं।
0: जी
1: जी, एक बात जानना चाह रही थी कि क्या ग्रामीण जीवन और ददरिया के बीच आज भी किसी प्रकार के संबंध आप देखती हैं?
0: बिल्कुल देखते हैं मैडम। सच कहें तो ग्रामीण जीवन की सांस है ददरिया।
1: क्या बात,
0: जब एक किसान हल जोतता हुआ रहता है और जब बैल थक जाते हैं और जब बैल थक जाते हैं तो वह ददरिया गाते, और ददरिया गाते ही आप यकीन नहीं मानेंगे बैल उठ खड़ा होता है और बड़े ही मस्ती से झूम कर चलने लगता है। तो कहीं ना कहीं इसमें ददरिया में एक भावनात्मक जुड़ाव है जो इंसान के साथ साथ जानवरों के साथ भी जुड़ा हुआ है। और ददरिया खेत में पैदा होता है, खलिहान में जवान होता है और चौपाल में अमर हो जाता है। शहर में पार्टियां होती है और गांवों में काकियां एक साथ मिलकर ददरिया गाती हैं। जैसे कि चिटिक बैठ के जुड़ाले पीपर के छाव मा, हो ही भेंट रेंगे आबे मोर गांव मा।
1: क्या बात है।
0: तो ये चीजें हैं कि आप बैठे हो, चल रहे हो, अगर आप अपने किसी रिश्तेदार को या अपने संगी साथी को मिलते हो तो आप बोलोगे कि आओ थोड़ी देर बैठ जाए पीपल की छाव में और गुठिया लें
1: जी,
0: बात कर लें, छत्तीसगढ़ी में होती है। तो यही रूप है। और इसी तरह संदेशा, जैसे कि पतले जरे गाड़ी वाला, आपने कभी कई बार सुना होगा, मैंने भी बचपन में आकाशवाणी से ही ये सुना है।
1: छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति इतनी समृद्ध है और आज जो हमारे श्रोता बहने सुन रही है अपनी संस्कृति को संरक्षण की ओर एक कदम जरूर उठाएंगे।
0: जी, जी।,
1: जी, तो प्रतिज्ञा जी, अभी आप ददरिया के बोल, प्रेम, प्रकृति और सामाजिक जीवन की झलक के बारे में बात कर रहे थे, तो इसकी विशेषता को आप किस तरह समझाती हैं?
0: देखिए, ददरिया जो है ना, तीन रंग का गुलदस्ता है
1: जी,
0: प्रेम, प्रकृति और सामाजिक जीवन। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि सामाजिक जीवन, जब हम खेत में 40 किसानिन, किसान भाई बहन लोग काम करते हैं तो वहाँ हम एक समाज बैठ जाता है उनका, और वहाँ पे वो ददरिया गाते हैं और वो एक दूसरे को प्रचार प्रसार करते हैं अपनी सोच का, अपने विचार का, अपने संगीत का। तो ये हो गया एक सामाजिक जीवन। प्रेम, टूरी तोर माया ममन मोर बैरागी होगीगा, एक जवान युवा लड़का एक युवती के लिए गाता है कि टूरी तोर माया मोर मन बैरागी होगा, तो ये प्रेम का रूप ले लिया, वो प्रेम में ददरिया गा रहे हैं। इसी तरह प्रकृति आँखें।

0: क्या बात है प्रतिज्ञा जी, वाकई में आपकी इस ददरिया की बोल ने हमको उस कुएं और वो नदी और तालाब के बीच में हमको ले गए, जहाँ पे हमने भी महसूस किया कि कितनी शांति और यहाँ सुकून है जी। तो प्रतिज्ञा जी, मैं जानना चाह रही थी कि पहले गांव में ददरिया गाने और सुनने की जो परंपरा थी, उसमें आज आपको क्या बदलाव दिखाई देता है?
1: बदलाव तो आया है, जिसे देखकर बड़ी तकलीफ होती है। पहले रोपनी में, मड़ई मेला में रात भर ददरिया गाया जाता था, विवाह में ददरिया गाया जाता, गीता जी छुट्टियों में भी बच्चे जब एक साथ होते थे तो दादी नानियां बीच में आंगन में खाट बिछा कर ददरिया सुनाकर बच्चों को गाया करती थी। पूरा गांव एकजुट होता था, हंसी ठिठोली करते थे, जिससे गांव के परिवारों में आपसी संबंध मधुर होते थे। और कहीं ना कहीं अब जो आधुनिक जीवन है उसमें टीवी और मोबाइल में लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि गांव के खेतों में हल की जगह अब ट्रैक्टर ने ले ली है
0: जी,
1: है ना। और हमारे जो मजदूर भाई हुआ करते थे, जो 40-50 लोग एक साथ मिलकर फसल काटा करते थे या उनको खरही बनाया करते थे या बोझा ढोया

0: करते थे, तो वो काम बड़ी बड़ी मशीनें करने लगी हैं। हमारी जो ग्रामीण सभ्यता है, संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं अभी प्रभावित तो हुई है, जो कि देखकर बड़ा दुख भी होता है।
1: जी बिल्कुल प्रतिज्ञा जी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आधुनिकता के कारण आज हमारे समाज में काफी बदलाव आया है, और इसकी आवश्यकता है कि हम जो नागरिक हैं, हमारे चाहे हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या शहरी क्षेत्र की बात करें, वो सब मिल के हमारी संस्कृति को सहेजें।
0: बिल्कुल
1: जी जी। प्रतिज्ञा जी, अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे हम लोक संस्कृति को संरक्षित करें, तो क्या आप लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए कुछ कदम उठा रही है?
0: बिल्कुल उठा रही हूँ, चूंकि मैं मया लगा के पाले पोसे राखे हंसते तोरा माँ, आनी बानी खेलेन खाएन खेले हंतर कोरा माँ, कि मैं अधिवक्ता हूँ, इसलिए मैं इसको कानूनी भाषा में बोलकर बताती हूँ आपको।
1: जी बिल्कुल।
0: कहूंगी कि लोक संस्कृति हमारा मौलिक अधिकार है, जैसे हवा पानी जरूरी है, वैसे ही अपनी पहचान भी जरूरी है, और इसका प्रचार प्रसार भी जरूरी है। और प्रचार प्रसार का दायित्व तो किस पर है, तो हम सब पर है। और चूंकि बात हम यहाँ पर ददरिया का कर रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि हमारे गाँव की काकी दादी नानी जो भी है, जब मैंने सुना है तो उन्होंने भी सुना ही है ददरिया, और वो तो बहुत ही अच्छे से जानती है कि ददरिया क्या है। तो उनको मैं कहूंगी कि आपसी भावनात्मक जो समाप्त हो रहे हैं ददरिया के समाप्त होने से, वो उनके समक्ष हम जाकर कहते हैं कि आप ददरिया गाएं, आप उस ददरिया सुनाएं, बच्चों को सुनाएं, ताकि वो भी जाने कि ददरिया है क्या। और ये हमारा इमोशनल बैंक बैलेंस है। और कई आयोजन हम करते हैं जिससे मतलब बच्चे आगे आकर छत्तीसगढ़ी गानों पर नाच करते हैं, नृत्य करते हैं और गाते भी हैं।
1: जी बिल्कुल प्रतिज्ञा जी, आपका प्रयास काफी सराहनीय है, लेकिन क्या वर्तमान में लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किसी विशेष गतिविधियां या अभियान है जिसके बारे में आप बताना चाहेंगी?
0: बिल्कुल, अगर हम इस विषय को विस्तृत करके सोचें तो बहुत सी चीजें हैं जिसमें हम ददरिया का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। एक तो दादी नानी को गाना चाहिए, हमें भी गाना चाहिए, ये तो है ही। हमें अपने बच्चों को बताना होगा कि ददरिया यूनेस्को तक जा सकता है, इस पर शर्म नहीं, गर्व करना चाहिए।
1: जी।
0: और स्कूल कॉलेज में लोक कला का पीरियड अनिवार्य हो जाए, कम से कम 45 मिनट तक, ना चाहते हुए भी इसे सुनेंगे और जानेंगे। और गीता जी, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में से विलुप्त हो रही लोकगीत व गीतकारों को राज्य सरकार को ध्यान देकर उनकी रचनाओं को संरक्षित करना चाहिए और उन्हें सम्मानित भी करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल जी। जब हम बात ददरिया की कर ही रहे हैं, तो यदि संभव हो तो ददरिया की 2-4 पंक्ति हम सुनना चाहेंगे।
0: जी, मैं साहित्यकार फैमिली से हूँ, मेरे पिताजी स्वर्गीय आदरणीय श्री केदार सिंह परिहार जी की बहुत सी रचनाएं हैं, जिसको मैं बचपन से सुनती और गुनगुनाती आई हूँ।
1: जी,
0: मेरे दादाजी से भी मैंने सुनी है। तो एक खमसा, बहने जो है वो शायद समझेंगे कि खमसा क्या होता है। खमसा होता है मतलब छत्तीसगढ़ की जितने भी प्रकार हैं गीतों के मिक्सचर, तो ये मैं आपको गा के सुनाऊंगी। तो चलिए, मैं एक खमसा गीत आप सभी के समक्ष सुनाना जा रही
1: हूँ,
0: जिसमें पहला है चंदैनी। मैं आहूँ अधरती हा भगा ले जाऊँ, ओ मैं बजाऊँ सीटी टूरी निकल ला बेखोर। अब लड़की बोलती है, भरथरी में बोल रही है इसको, घर मामूर दाई।

0: अब लड़का बोलता है पंडवानी में,
1: हाय रे माया रू मै ना पिंजरा ले कैसे तै उड़ा बिना।
0: अब हमारे यहाँ प्रचलन है छत्तीसगढ़ में बिहाव गीत का, तो लड़की इसको बिहाव गीत के धुन में गा रही है,
1: गजब।

0: अब हमारे यहाँ क्या होता है कि जेवारा
1: इतना के बेरिया का उन्ना देला सुमिरो जेने मोरे कर दे बिहाव हो।
0: अब हमारी बहनें बहुत अच्छे से सुन रही हैं और समझ रही हैं श्रोता बहनें, तो अब लड़की गाती है भोजली, अब भोजली को आवाहन करती है।

0: प्रेम प्रसंग के ददरिया में बहुत ही सुंदर चीज दर्शाई गई है कि हर चीज करने को बोला जा रहा है पर एक संस्कार है जो एक दूसरे को बांध रहा है
1: जी।
0: तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता और संस्कृति का भी प्रचार प्रसार है
1: जी।
0: तो ये देखो, ये भाग सकते हैं पर भाग नहीं रहे हैं, आके जबरदस्ती धमका के ले जा सकते हैं पर उससे भी वो कतरा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी सभ्यता संस्कृति बड़ों का सम्मान इसमें है
1: जी।
0: तो लड़की फिर लास्ट में कहती है एक गान

0: मोर हो ही, कैसे भी करके अपने माता पिता को मना लेंगे और उसी तरीके से शादी करेंगे जैसा वो लोग चाहेंगे। इस गाने में और पूरी तरह से यही दिखाया गया है कि संस्कार इतना ज्यादा होता है कि हम अपने बड़ों के सामने कुछ भी गलत करने से कतराते हैं, उनसे दूर होने से भी कतराते हैं, हमारा प्रेम है, जुड़ाव है, और तो हम कोशिश करते हैं कि जैसे भी हो परिवार मान जाए और सबकी मर्जी से शादी
1: हो जाए। क्या बात है। तो प्रतिज्ञा जी, अंत में ददरिया और छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति संदर्भ में आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं?
0: गीता जी, मैं अपने श्रोता भाई बहनों को, बंधुओं को यही संदेश देना चाहूंगी, इस सावन अपने बच्चों को 10 मिनट के लिए टीवी और मोबाइल से दूर करें और थोड़ा डांट कर या प्यार से दादी और नानी के बीच बैठाएं और कहें कि बेटा ददरिया सुनो और दादी ददरिया सुना दो, और वो ददरिया जब सुनाएंगे तो बच्चों को बड़ा ही आनंद आएगा। और ये परंपरा हमारी समाप्त नहीं होनी चाहिए, यही मैं विनती करती हूँ सभी से। और आखिरी में यही कहना चाहूंगी, हम सभी बिलासपुर मरीथन, जब तक छत्तीसगढ़ के अरपा दाई में पानी रही, हमर छाती में माया रही, तब तक के हमर ददरिया अमर रही।
1: तो प्रतिज्ञा जी, वाकई में लोक संस्कृति केवल हमारी परंपराओं, रीति रिवाजों, लोकगीतों और लोक कलाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि हमारी पहचान, हमारी जड़ों और हमारी सांस्कृतिक विरासत का जीवंत स्वरूप है। लोक संस्कृति हमें अपने अतीत से जोड़ते हुए वर्तमान को समृद्ध भी बनाती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य धरोहर छोड़ती है। तो प्रतिज्ञा जी, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में, इसके लिए धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी, जो आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। मेरे श्रोता भाई बहनों का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे सुना।
1: जी बहनों, अभी आप सुन रहे थे क्रम लोक संस्कृति, जिसमें चर्चा का विषय था लोक संस्कृति में ददरिया, और हम चर्चा कर रहे थे प्रतिज्ञा सिंह से। अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
2: छत्तीसगढ़ ला छाँव करे बर मैं छानी बन जाती।
3: सुनो संगवारी हो, हमारे संस्था यूथ फाउंडेशन गांव गांव जाथन, माटी के मयाला जगाथन, लड़का लड़की मल्ला पढ़ाई के राह दिखाथन, दाई दीदी मल्ला सेहत के बात सिखाथन। आओ ददरिया कर्मा संग मंच मा अपन संस्कृति संग, काबर की देश तभेज बनी जब युवा मन जागी। यूथ फाउंडेशन, माटी से जुड़बो देश लगड़बो। मोर से संपर्क करो 9826379009। धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़ ला छाँव करे बर मैं छानी बन जाती।
4: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
5: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
4: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
5: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
4: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
6: पापा के गुजर जाने के बाद एकदम अकेला पड़ गया था। कभी कर्ज की चिंता, कभी ब्याज का बोझ, फिर पता चला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में। तब लगा कोई अपना भी साथ खड़ा है।
7: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2,00,00,000 रुपए का फसल बीमा, 8,00,00,000 किसान क्रेडिट कार्ड और MSP पर 26,00,00,000 रुपए से अधिक की फसल खरीद से देश के किसानों को मिली मजबूती।
8: 12 साल किसान कल्याण के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा जन प्रसार हेतु जारी।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, NPS संचय

0: की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
0: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
2: छत्तीसगढ़ ला छाँव करे बर मैं छानी बन जाती।
3: सुनो संगवारी हो, हमार संस्था यूथ फाउंडेशन गांव गांव जाथन, माटी के मयाला जगाथन, लड़का लड़की मल्ला पढ़ाई के राह दिखाथन, दाई दीदी मल्ला सेहत के बात सिखाथन। आओ ददरिया कर्मा संग मंच मा अपन संस्कृति संग, काबर की देश तभेज बनी जब युवा मन जागी। यूथ फाउंडेशन माटी से जुड़बो देश लगड़बो। मोर से संपर्क करो 9826379009। धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़ ला छाँव करे बर मैं छानी बन जाती।
4: बहनों, अब चलिए सुनते हैं डॉक्टर मोनिका पाठक को, जो योग गुरु हैं और महिलाओं के स्वास्थ्य पर अपना विचार हमसे साझा कर रही हैं।
5: मैं डॉक्टर मोनिका पाठक, योग विशेषज्ञ, बिलासपुर छत्तीसगढ़ एवं विश्व की पहली पेटेंट धारी अष्टांग योग के 8 प्रहर, यूटिलिटी पेटेंट एवं डिजाइन पेटेंट त्राटक स्टैंड। योग में ये लगभग 15 वर्षों का एक्सपीरियंस हो चुका है। आज का मेरा जो विषय है, योग एवं महिलाओं का स्वास्थ्य। नारी केवल परिवार की धुरी नहीं बल्कि समाज की शक्ति है। जब नारी स्वस्थ, संतुलित और आत्मविश्वास से भरपूर होती है, तभी परिवार और समाज भी सशक्त बनता है। योग केवल शरीर को लचीला बनाने का अभ्यास नहीं बल्कि महिलाओं के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का सशक्त आधार। यह तनाव कम करता है, हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है, आत्मबल बढ़ाता है और जीवन में नई ऊंचाइयों का संचार करता है, नई ऊर्जा का संचार करता है। स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार, योग बने जीवन का आधार। हर दिन कुछ पल योग के लिए निकालिए, क्योंकि स्वयं का स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी ताकत है। योग महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक अचूक साधन है। यह हार्मोन को संतुलित करता है, मासिक धर्म, PMS और मोनोपॉज के लक्षणों को कम करता है, प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है और गर्भावस्था के दौरान लचीलापन व मानसिक शांति प्रदान करता है। महिलाओं के समग्र स्वास्थ्य के लिए प्रमुख योगासन और उसके लाभ हम आज जानेंगे। हार्मोनल्स को संतुलन करने और प्रजनन स्वास्थ्य के लिए धनुरासन, भुजंगासन और मासिक धर्म की ऐंठन को कम करते हैं। थायराइड पर नियंत्रण के लिए हलासन, मत्स्यासन, भुजंगासन, मर्जरी आसन। गर्दन के क्षेत्र में जिस भी आसन में प्रभाव पड़े, रक्त संचार बढ़ाता है और साथ में थायराइड ग्लैंड का नियमन भी बेहतर होता है। पेल्विक फ्लोर की मस्ती, बद्ध कोणासन, पेल्विक क्षेत्र में लचीलापन लाता है और प्रसव पूर्व, प्रसवोत्तर स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। पीठ और जोड़ों के दर्द के लिए मर्जरी आसन, बालासन रीढ़ की हड्डी को मजबूत करते हैं और पीठ के दर्द को राहत देते हैं। इन आसनों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके आप शारीरिक और भावनात्मक रूप से सशक्त हो सकते हैं। यदि आप अपनी उम्र, वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति जैसे गर्भावस्था, थायराइड या योग के अनुभव के बारे में जानकारी साझा करें, तो मैं आपकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार विशेष योगासनों का चार्ट बनाने में आपकी मदद कर सकती हूँ। ऐसे विषय पर बहुत सारी चर्चा करेंगे जो केवल महिलाओं तक सीमित नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज के भविष्य से जुड़ा है। आज की जीवन शैली में महिलाएं अनेक भूमिकाएं निभाती हैं। वे घर की जिम्मेदारियां संभालती हैं, कार्यस्थल पर अपना योगदान देती हैं और परिवार की हर छोटी बड़ी आवश्यकताओं का ध्यान रख, लेकिन अक्सर इन सब के बीच वे अपने स्वास्थ्य को सबसे अंतिम में रख देती हैं। यहीं पर योग एक जीवन शैली के रूप में काम करता है। योग केवल शरीर को मोड़ने या कठिन आसन करने का नाम नहीं, योग का अर्थ है शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करना। नियमित योग अभ्यास शरीर को मजबूत और लचीला बनाता है, मानसिक तनाव को कम करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। महिलाओं के जीवन में कई ऐसे चरण आते हैं जहाँ शारीरिक और मानसिक परिवर्तन स्वाभाविक होते हैं। ऐसे समय में नियमित योग, प्राणायाम, ध्यान, त्राटक उन्हें अधिक संतुलित, शांत और ऊर्जावान बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं। योग बेहतर नींद, मानसिक शांति और दैनिक कार्यों के लिए अति आवश्यक ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है।

0: केवल योग करना ही पर्याप्त नहीं, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, सकारात्मक सोच और नियमित दिनचर्या भी उसका बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। जैसे योग इन सभी अच्छी आदतों को जीवन का हिस्सा बनाने की प्रेरणा, केवल कम से कम 30 से 40 मिनट का समय निकालें और अपने वर्तमान को मजबूत करें।
1: तो बहनों, आज का हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें इस पते पर लिख भेजिएगा। द्वारा केंद्रीय कार्यक्रम महिला सभा, पोस्ट बॉक्स नंबर 49, आकाशवाणी बिलासपुर। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, पत्र ईमेल bsp@gmail.com। बहनों, एक बार ईमेल आईडी फिर से नोट कर लीजिए, patraemlibsp@gmail.com। तो बहनों, अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, तो दीजिए अनुमति गीता हो तक। नमस्कार।

कार्यक्रम महिला सभा अभी हम प्रसारित कर रहे थे और अब लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं कार्यक्रम विवरण। पहले जानकारी दे दें आपको आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की।

आज शाम 7:10 पर आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला, विषय होगा विरासत। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से हम रिले करेंगे 19 शासकीय भर्ती परीक्षाएं पास कर अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाली चारू पांडे से विशेष भेंटवार्ता रात्रि 8:15 पर। पत्रोत्तर कार्यक्रम चिट्ठी मिली का समय होगा शाम 7:55 का। प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन और अंतरा चक्रवर्ती की। शाम 6:20 पर हम प्रसारित करेंगे 17 जून को कृषि महाविद्यालय परिसर सरकंडा बिलासपुर में आयोजित एक दिवसीय जैविक कृषि कार्यशाला की रेडियो रिपोर्ट। संपादन रुपेश कंवर का होगा, प्रस्तुति नेमी चंद साहू की और संयोजन होगा डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन का। और अब आपको जानकारी दे दे श्रोताओं कल की सभा के कार्यक्रमों की। कल आकाशवाणी दिल्ली से शाम 7:10 पर रिले करेंगे केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला, विषय होगा पर्यावरण। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम इनसे मिलिए आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से हम रिले करेंगे। प्रातः 6:45 पर नव विहान में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर हम चर्चा लेकर आएंगे और सुबह 7:20 पर कार्यक्रम गांधी चर्चा आप सुनेंगे, विषय होगा बैरिस्टर के रूप में। गुंजे स्वर गांव के ये कार्यक्रम प्रसारित होगा सुबह 10:00। कार्यक्रम में सुनिएगा बांस गीत, देवकी वासुदेव का किस्सा और स्वर होगा भगवानी राम यादव और साथी का। साथ ही राजा नल के किस्सा हम लेकर आएंगे गंगादास और साथी की आवाजों में। दिन के 11:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT हम प्रसारित करेंगे। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले होंगे सुबह 9:00, दिन के 11:30 पर, दोपहर 12:00 से शाम 5:00 तक और रात 9:15 से रात 11:00 तक। कल शाम 5:05 पर कार्यक्रम ग्राम सभा लेकर आएंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत फोन इन कार्यक्रम में सुनेंगे श्रोता खरीफ मौसम में दलहन तिलहन बीजों उत्पादन तकनीक विषय पर विशेषज्ञ डॉक्टर तरुण कुर्रे प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय कटघोरा जिला कोरबा से ली गई जानकारी। संचालक होंगे बैसाखू भैया। प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। और शाम 5:35 पर कार्यक्रम युवा जगत लेकर आएंगे। कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा पर्यावरण संरक्षण में मेरी भूमिका और साथ ही लेकर आएंगे क्रम मेरी बारी। प्रस्तुति होगी नेमी चंद साहू की। श्रोताओं आपको एक बार पुनः याद दिला दें आज कार्यक्रम चिट्ठी मिली हम लेकर आएंगे शाम 7:55 पर। प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन और अंतरा चक्रवर्ती की होगी। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यही समाप्त हुआ। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को है। थोड़ी ही देर में छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से हम रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी रायपुर ही छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग शुभा मिश्रा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। केंद्र सरकार वित्त बचर 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्र में 26,000 किलोमीटर ले ज्यादा सड़क के निर्माण करही। युवा औ आम मनखे मल्ला नशा के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करे बर छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग डहर ले प्रदेश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह के आयोजन करे जाते। औ सक्ती जिला के फगुरम चौकी पुलिसा आज 2 क्विंटल ले ज्यादा गांजा के संग 2 आरोपी मल्ला गिरफ्तार करे है। अब समाचार विस्तार ले। केंद्र सरकार वित्त बचर 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्र में 26,000 किलोमीटर ले ज्यादा सड़क के निर्माण करही। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहल में अवैया ग्रामीण क्षेत्र में सड़क के निर्माण पर 18,900 करोड़ रुपया ले ज्यादा आवंटित करे गए है। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजना के प्रगति के आकलन करे बर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल के अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित करेगी। बैठक में छत्तीसगढ़ के संग आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और आने राज्य के वरिष्ठ अधिकारी मनहा भाग लीन। ए दौरान राज्य ला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन मा अवैया लंबित परियोजना मा सरलक काम करे के निर्देश दे गए है। दल्ली राजहरा रावघाट रेल परियोजना के तहत काली 17 जून ले रावघाट रेलखंड में नियंत्रित गति और सीमित भार के संग तकनीकी ट्रायल शुरू करेगी। ये ट्रायल आने आने चरण में आगू भी जारी रही। ए दौरान रेल लाइन के परिचालन के क्षमता सुरक्षा और तकनीकी मानक के परीक्षण करे जाही। करीब 95 किलोमीटर लंबा दिल्ली राजहरा रावघाट रेल परियोजना ला सेल भिलाई इस्पात संयंत्र और भारतीय रेलवे के साझा प्रयास ले विकसित करे जाते। युवा और आम मनखे मन ला नशा के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करे बर छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग डहर ले काली 17 जून ले प्रदेश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह के आयोजन करे जाते। समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव शहला निगारहा मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारी और कर्मचारी मन ला नशा मुक्ति के शपथ दिलाई। उन्होंने बताया कि ए बचर नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान थीम में सप्ताह भर आने आने गतिविधि के आयोजन करे जाही। 26 जून तक चलैया नशा मुक्त भारत सप्ताह के दौरान स्कूल कॉलेज और आने शैक्षणिक संस्था में सेमिनार समूह चर्चा शपथ ग्रहण जागरूकता रैली और संवाद कार्यक्रम आयोजित करे जाते। उन्हें स्वास्थ्य विभाग डहल्ले नशा छोड़ चुके मन के प्रेरणादायक सफलता के कहानी के प्रचार प्रसार करे जाते। एकर अलावा महिला और बाल विकास विभाग पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग डहल्ले मानव श्रृंखला शपथ कार्यक्रम और जागरूकता गतिविधि के आयोजन करे जाही। समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव शहला निगार के अध्यक्षता में आज मंत्रालय में छत्तीसगढ़ शराब व्यसन मुक्ति अभियान पर गठित राज्य स्तरीय समिति के बैठक हुई। बैठक में राज्य के हरेक विकास खंड के 1,000 ले ज्यादा जनसंख्या वाला नवा ग्राम पंचायत में भारत माता वाहिनी के गठन और विस्तार संबंधी प्रस्ताव पर विचार विमर्श करेगी। समिति हा नशा पीड़ित मन के पुनर्वास बर संचालित 15 बिस्तर वाला एकीकृत पुनर्वास केंद्र के क्षमता 15 ले बढ़ा के 50 बिस्तर करे के सुझाव दिन। संगे संग 5 जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी खैरागढ़ छुईखदान गंडई सुकमा बेमेतरा कोरबा मा नवा नशा मुक्ति केंद्र खोले के निर्णय लेगी। प्रदेश में कुपोषण के समस्या ला दूर करे बर महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हा सुपोषण वृक्ष मुनगा के रोपण ला जन आंदोलन के स्वरूप दे के आह्वान करे है। श्रीमती राजवाड़े हा सबो जनप्रतिनिधि मन ले वर्षा ऋतु के दौरान जल स्रोत के तीर तखार ग्राम पंचायत परिसर सार्वजनिक जगह और हितग्राही मन के घर मा मुनगा के पौधा लगाए के आग्रह करे है। उमन हा सबो मन के मन ले ए अभियान मा सक्रिय भागीदारी निभा के सुपोषित छत्तीसगढ़ के निर्माण मा योगदान दे के अपील करीन है। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश डहले 19 सास की भर्ती परीक्षा पास करके अनोखा रिकॉर्ड बनैया चारू पांडे लेगी साक्षात्कार के प्रसारण आज रतिहा 8:15 में करे जाही। ए कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सबो केंद्र रिले करही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी

0: समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगू बाढ़ बो बाचे समाचार को थी। शक्ति जिला के फगुरम चौकी पुलिस आज 2 क्विंटल ले ज्यादा गांजा के संग 2 आरोपी मल्ला गिरफ्तार करे है। जब्त गांजा के कीमत करीब 1,45,00,000 रुपया बताए जाते। जिला के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर हा बताइन कि मुखबिर ले मिले सूचना के आधार मा पुलिस हा नाकाबंदी करके गाड़ी के जांच करीन। ए दौरान पुलिस हा ओडिशा ले राजस्थान ले जावत गांजा ला एक ट्रेलर ले बरामद करीन। आरोपी मन के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज करे गए है। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के टीम हा काली प्रदेश की टीम आने आने जिला मा दबिस दे के भ्रष्टाचार के मामला मा 3 लोगन मल्ला गिरफ्तार करे है। ACB के टीम हा काली भिलाई नगर निगम ले सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर ला भ्रष्टाचार के एक मामला मा हिरासत मा लीन। एकर अलावा धमतरी मा विद्युत यांत्रिकी विभाग मा पदस्थ प्रोग्रेस मैन ला 1,00,000 रुपया के रिश्वत लेवत रंगे हाथ गिरफ्तार करीन। उन्हें ACB हा जशपुर नगर मा RES विभाग के SDO ला घलो 25,000 के रिश्वत लेवत रंगे हाथ गिरफ्तार करे है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा काली गरियाबंद जिला ला 603,46,00,000 रुपया ले ज्यादा के विकास काम के सौगात दिन। पुलिस परेड ग्राउंड मा आयोजित कार्यक्रम मा मुख्यमंत्री हा 76 विकास काम के लोकार्पण भूमि पूजन और शिलान्यास करीन। एमा सड़क सिंचाई स्वास्थ्य शिक्षा पानी और बिजली ले जुड़े काम शामिल है। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस मा राज्यपाल रमन डे कहा आज लोकभवन मा उखड़ चित्र मा फूल चढ़ा के ओमल्ला नमन करीन। ए अवसर मा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल के संग लोकभवन के आने अधिकारी कर्मचारी मनहा घलो रानी लक्ष्मीबाई ला श्रद्धांजलि दीन। कोरिया जिला के कलेक्टर रुक्तिमा यादव हा एक आदेश जारी करके महलापारा बैकुंठपुर नौगई के संग भाजपा नेता भरत सिंह घरवार के कटगोड़ी स्थित क्रेशर प्लांट एरिया के 300 मीटर दायरा मा धारा 163 लागू कर दे है। जारी आदेश के अनुसार कोनो भी प्रकार के हथियार और विस्फोटक सामान पाए जाए मा कड़ा कार्रवाई करे जाही। एकर अलावा ए क्षेत्र मा जुलूस धरना प्रदर्शन और आम सभा मा प्रतिबंध लगाए गए है। जिला दंडाधिकारी हा स्पष्ट करे है कि ए आदेश ओ शासकीय कर्मचारी अधिकारी ऊपर लागू नहीं हुई जेन मन हा अपन शासकीय दायित्व के निर्वहन करे बर लाठी या शस्त्र राखे के जरूरत होते। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मल्ला इस संवेदनशील क्षेत्र मा लगातार निगरानी राखे और कोनो भी अप्रिय स्थिति ले निपटे के निर्देश दे गए है। जानमा के मुताबिक कोरिया जिला के कटगोड़ी गांव में भाजपा नेता के संग 3 लोगन के मौत के मामला में पुलिस 4 लोगन मल्ला गिरफ्तार करे है। लोरमी मा आयोजित महाराणा प्रताप जयंती समारोह मा उप मुख्यमंत्री अरुण साव हा कहिन है कि महाराणा प्रताप के जीवन साहस स्वाभिमान और राष्ट्र के भक्ति के अमर मिसाल है। पीएम सेतु योजना के तहत प्रदेश के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI ला आधुनिक और उद्योग के लायक बनाए जाते। योजना के तहत छात्र मनला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI और ड्रोन जैसन नवा तकनीक के प्रशिक्षण दे जाही। संगे संग पुराना मशीन के जगह मा आधुनिक उपकरण डिजिटल कंटेंट और स्मार्ट क्लासरूम के सुविधा उपलब्ध कराए जाही। मुख्य सचिव विकास सिल की अध्यक्षता मा मंत्रालय मा आयोजित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति के बैठक मा पीएम सेतु योजना के प्रगति के समीक्षा करेगी। राजधानी रायपुर में पहली बार ईस्टर्न स्लैम के आयोजन करे जाही। एकर तहत 22 ले 27 जून तक बूढ़ापारा स्थित एक्सक्वेस कॉम्प्लेक्स में प्रतियोगिता आयोजित करे जाही। इमा सिंगापुर के संग भारत के 21 राज्य ले लगभग 350 जूनियर और सीनियर खिलाड़ी भाग लही। प्रतियोगिता पर $2,000 अमेरिकी के पुरस्कार राशि निर्धारित करे गए है। उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव हा बिलासपुर के बहतराई राज्य खेल प्रशिक्षण के निरीक्षण करीन। ए दौरान ओमनहा निर्माण काम के प्रगति ऊपर नाराजगी जताइन। ओमना कहीन कि खिलाड़ी मल्ला अच्छा सुविधा उपलब्ध कराना सरकार के प्राथमिकता है और एमा कोनो भी प्रकार के लापरवाही स्वीकार नहीं करे जाही। आखिर मा प्रमुख समाचार एक फेर। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 मा ग्रामीण क्षेत्र मा 26,000 किलोमीटर ले ज्यादा सड़क के निर्माण करही। युवा और आम मन के मल्ला नशा के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करे बर छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग डाहर ले प्रदेश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह के आयोजन करे जाते। अउ सक्ति जिला के फरगुम चौकी पुलिस ह आज 2 क्विंटल ले ज्यादा गांजा के संग 2 आरोपी मन ला गिरफ्तार करे हे। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहीं सिरावत है। जय जोहार।

छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से एफएम एंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए श्रोताओं, 17 जून को कृषि महाविद्यालय परिसर सरकंडा बिलासपुर में आयोजित एक दिवसीय जैविक कृषि कार्यशाला की रेडियो रिपोर्ट।

0: मैं तो थोला जाने भगवान।
1: नमस्कार, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी अर्थात आत्मा केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाना है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है और जिले स्तर पर कृषि अनुसंधान व प्रचार सेवाओं को मजबूत करना है। आत्मा योजना अंतर्गत कृषि महाविद्यालय परिसर सरकंडा बिलासपुर में कृषि विभाग बिलासपुर द्वारा दिनांक 17 जून 2026 को एक दिवसीय जिला स्तरीय जैविक मेला एवं जैविक कृषि कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारतीय संस्कृति के परंपरा अनुरूप माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्य अर्पण और दीप प्रज्वलन मुख्य अतिथि द्वारा किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि थे माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विशिष्ट अतिथि बेलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला, बिलासपुर की महापौर श्रीमती पूजा विघानी, साथ ही कृषि महाविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विभाग के वैज्ञानिक और अधिकारीगण उपस्थित थे। जैविक मेला में जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी सह विक्रय भी किया गया। इस अवसर पर पशुपालन विभाग के स्टॉल में पशुपालन विभाग से संबंधित जानकारी कृषक प्राप्त कर रहे थे। उद्यानिकी विभाग के स्टॉल में उद्यान विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और उच्च गुणवत्ता के फलों के पौधों का विक्रय भी न्यूनतम मूल्य पर किया जा रहा था, जहां किसान केले के पौधे और हल्दी अदरक के पौधे भी खरीद रहे थे। स्व सहायता समूहों और कृषक उत्पाद संगठनों के स्टॉल में अचार बड़ी पापड़ के साथ मिलेट के भी उत्पादों का भी विक्रय किया जा रहा था। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना खेत बचाओ अभियान, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, जैविक खेती, इन सब प्रयासों से मिट्टी की सेहत को सुधार कर उससे प्राप्त होने वाले उपज भी गुणवत्तापूर्ण होंगे और हमारे लिए पोषक गुणों से भरपूर होंगे। साथ ही जैविक खेती से खेती की लागत में कमी आएगी और हमारा स्वास्थ्य भी रसायन मुक्त चीजों का खाने से अच्छा रहेगा। कृषि महाविद्यालय परिसर सरकंडा बिलासपुर में आयोजित कार्यशाला के माध्यम से अधिक किसानों को जैविक खेती हेतु प्रोत्साहित करने का एक प्रयास था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने संबोधन में कहा,
2: जैविक खेती प्राकृतिक खेती में कार्यशाला हो, ये विषय में अलग अलग वक्ता मन अलग अलग प्रकार की बात बताई। मैं विषय के आगे पीछे कुछ विषय आपके सामने रखू। किसान ला न जाने का उपाधि हमारे मिले हुए, धरती पुत्र, अन्नदाता, ये बड़े बड़े उपाधि किसान ला मिले हुए। अब एक जमाना रही से जब कहे कि स्वर्ग कही है तो हमर गांव में ही, हमर गांव में का हम सही मायने में आज अन्नदाता के सही भूमिका निभाकर न तिवरा न गहूं न चना न दलहन न तिलहन सब्जी बाजार ले खरीदतन, तेल बाजार ले खरीदतन, कैसे बारिश के पानी में गांव में रुके, कैसे मैं

को लेका मन के संझा बेला तरिहान में खेले के किलकारी किसान भाई बहनी हो गांव हमर मान सम्मान और अभिमान है, गांव हमर पहचान है, हमर सम्मान है। यदि गांव परिवार के जैसे बनाओ फिर से, तब जाके हमर आने वाला पीढ़ी के अच्छा संस्कार और अच्छा विचार। ये जो ग्रामीण जीवन गांव के जीवन में जो परिवर्तन आए, ये लोग विचार समझे की जरूरत है कि हम तेज गति से भागे के चक्कर में कहां खड़े हैं। और यही पाएंगे कि जैविक खेती, प्राकृतिक खेती जो तुम्हार पुराना व्यवस्था रही से, पुराना रद्दा रही से, गोबर के खाद, मैं तो एक चीज और बहुत चिंता करता हूं, हमारे कृषि के पूरा चक्र बने हुए गाय रखना आवश्यक है, बैला आवश्यक है, गौ माता की तत्का योगदान है खेती में, तत्का महत्व है हमारे जीवन में होकर एक एक चीज गौमूत्र से लेके दूध से लेके हर चीज के तत्का महत्व है हमारे।

0: इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि बेलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला ने कहा,
1: आज की लोकतंत्र की आत्मा गांव में बसती है, ऐसे कहते हुआ सुना होगा, लेकिन उस आत्मा की भी आत्मा अगर कोई है तो वो किसान है। भारतीय लोकतंत्र की अवधारणा की व्यवस्था जब किसान प्रमिलित पुष्पित होता है तब धरातल पर सकारात्मकता के साथ उतरती है, ऐसी हम सबकी मान्यता है और इसके लिए हम सब प्रयास करते हैं। लोकतंत्र में एक दिन होता है जिस दिन आप मतदान करते हैं, लेकिन आप धरती को जब सींचते हैं तब आप मनुष्यता के ऊपर दान करते हैं ताकि वो भूखे ना सोए और जी मनुष्यता इंसानियत जिंदा रहे, ऐसी व्यवहारिकता के साथ आप चलते हैं। गांव में स्वराज की भावना चलती रहे जिसके आधार पर विशाल यह देश सच्चे लोकतंत्र की नींव के आधार पर आगे बढ़ता रहे और पुनः विश्व गुरु के पैमान पर स्थापित। इस पूरे तंत्र को चलाने के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वयन के माध्यम से आप तक पहुंचाती है, लेकिन क्या सच है कि हम इसको स्वीकार कर पाते? इसका आज आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। जैविक कृषि के नाम पर एक कार्यशाला हो रही है, मैं अंत में आपको बताऊंगा कि जैविक कृषि पर कार्यशाला आयोजित क्यों किया। जब सरकार योजनाएं लाती है तो उसके क्रियान्वयन पर तब व्यवस्था बन सकती है जब आप सबका सहयोग व्यवहारिक तौर पर। भारत की आत्मा गांव में बसे, गांव संचालित होते हैं किसानों से, तो सबके मूल में जो अगर है तो गांव की अर्थव्यवस्था अगर मूल रूप मजबूत है तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। और ऐसे समय में किसानों की समृद्धि की चिंता करना ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, पर आवश्यकता है आज आपके साथ कदम ताल करने की। करना क्या होगा तो करना है सबसे पहले मृदा संरक्षण, धान पर आधारित न रहते हुए अन्य फसलों की चिंता करनी है और वो फसल रासायन विहीन हो ताकि आने वाले समय में जो आपको भोजन की प्रणाली है वो दूषित ना हो, इसकी चिंता भी हम सबके तरफ नैतिक जिम्मेदारी है। आप इस बात को सोचें कि आज जो आपका भरा पूरा परिवार इस पर्यावरण का आनंद ले रहा है वो आपकी पीढ़ियों के द्वारा किए गए बचत के आधार पर है, तो आप इस बात की

0: इस कार्यशाला में कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के प्रमुख एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर गीत शर्मा ने कहा।
1: इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है किसानों को जैविक खेती की ओर बढ़ावा देना है। किसान पूर्व में करते आ रहे थे लेकिन बीच में रासायनिक पदार्थों की उपयोगिता बढ़ गई, जैसे रासायनिक उर्वरक हैं और दवाइयाँ हैं। उत्पादन तो बढ़ा लेकिन उसके साथ साथ दुष्परिणाम भी आए कि हमारी मृदा कहीं ना कहीं अस्वस्थ हुई, मानव जीवन पर भी के स्वास्थ्य भी खराब हुआ। तो इन सब को देखते हुए पुनः जैविक कृषि की ओर हमको आना पड़ेगा और इसी के तहत जो है जैविक कृषि के विभिन्न घटक जो हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट है या गोबर की खाद है या जैव उर्वरक हैं या फिर हरित खाद है या नील हरित काई का उपयोग है, इन सब का उपयोग करके हम जैविक खेती की ओर बढ़ावा कर सकते हैं और साथ ही साथ भविष्य में होने वाले जो रासायनिक उर्वरक हैं उस पर निर्भरता जो है हम कम कर सकते हैं और अपनी खेती को सतत और टिकाऊ बना सकते हैं।
0: इस कार्यशाला में खेत बचाओ अभियान और जैविक खेती के संबंध में उप संचालक कृषि PD हथेश्वर ने कहा।
2: खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत जो भारत सरकार का हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री का आह्वान है किसानों के लिए, खेत बचाओ से मतलब ये खेत क्यों बचाने की आवश्यकता है, क्यों आह्वान करना पड़ रहा है, कारण कि रासायनिक खाद से उपयोग करते करते हमारे किसान भाइयों द्वारा हमारे खेत ऐसे बीमार हो गए हैं, दूषित मतलब खराब होते जा रही है, जिससे कि हमारी उत्पादन क्षमता दिनों दिन बगैर रासायनिक खाद के और उत्पादन नहीं प्राप्त हो सकती, हमारी उसकी संरचना खत्म हो रही है, हमारे जो जैविक जीवाणु जो होते हैं हमारे किसानों के लाभदायक दोस्त होते हैं और मतलब उसमें जो बैक्टीरिया जितने हमारे किसी के लिए उपयोगी होते हैं वो धीरे धीरे रासायनिक खाद के अंधाधुंध उपयोग से खत्म होते जा रहे हैं। उनसे धरती माता को बचाने के लिए, खेत को बचाने के लिए यह अभियान किया जा रहा है कि आप रासायनिक खाद का उपयोग कम से कम करें, जैविक खाद, बायो फर्टिलाइजर, वर्मी कम्पोस्ट, गोबर के खाद का उपयोग करें, जिससे हमारी धरती बचा रहे, आने वाले भविष्यों के लिए, पीढ़ियों के लिए वो जमीन संरक्षित रहे, अन्यथा मतलब आगे आने जाने वाले किसानों के लिए अन्न उत्पादन करना बहुत मुश्किल हो जाएगी, हमारी जमीन बंजर हो जाएगी, उसको बचाएं। किसान भाइयों से यह अनुरोध किया गया है, अनुरोध किया जा रहा है कि धरती माता खेत को बचाओ, जिससे कि मतलब हमारे आगे वाले पीढ़ी उनका भी जीवन दिनचर्या खेती करते हुए चलता रहे, अन्यथा हमारे अन्नदाता जो अन्न उगाते हैं वो भी हमारी जो इतना जनसंख्या है, आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनके खाने के लिए भी अन्न मिलना मुश्किल हो जाएगी। हमारी जमीन खेत बीमार हो रहे हैं, उनको बचाना है। किसानों भाई से अनुरोध किया जाता है, आग्रह है कि वो रासायनिक खाद का कम से कम उपयोग करें, जैविक खाद, बायो फर्टिलाइजर, नील हरित काई, हरी खाद एवं गोबर कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट से खेतों में उपयोग करें, जिससे कि मतलब हमारी जमीन की संरचना बनी रहे और भविष्य तक आगे लंबे समय तक टिकाऊ उत्पादन प्राप्त हो।
0: इस कार्यशाला में बिलासपुर जिले के उत्कृष्ट जैविक खेती करने वाले प्रगतिशील किसानों को माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया। मल्हार के प्रगतिशील किसान जदुनंदन प्रसाद ने कहा।
3: मोर नाम है जदुनंदन प्रसाद वर्मा, मैं नगर पंचायत मल्हार आया हूँ। भैया हमार जिन धरती माँ है ओला सुधारे खातिर किसान मन के मार्गदर्शन पर एक अच्छा कार्यक्रम आयोजन हवा, ये आयोजन ला देख के मोर दिल खुश हो गए। मैं आप मन ला अपन अनुभव ला बताता हूँ, सब किसान ला अपन अनुभव ला बताता हूँ। जैसे कि हमन पहली से रासायनिक खेती करा था, अगर एकाएक हमन बंद कर देवो तो बैलेंस बिगड़ी खेत के, जेकर से उत्पादन मार खाई। एकर से अच्छा है हम धीरे धीरे अपन रासायनिक खाद दवाई कीटनाशक के जिन उपयोग हवा ओला कम करीन, हर साल 25-30% घटा करके और फिर पूर्ण रूप से चौथा साल से जैविक खेती कर सकत हन और इमा उत्पादन जो है बहुत अच्छा होते।
0: जैविक खेती के लिए सम्मानित महिला कृषक श्रद्धा तिवारी खुद जैविक खेती कर रही है और महिलाओं समूह को इस हेतु जोड़कर प्रेरित कर रही है।
4: जैविक कार्यशाला में हम लोग आए हैं, अच्छी बात है कि सरकार जो है अब खुलकर जैविक खेती की बात करने लगे हैं। यही सरकार थी

0: जिन्होंने हमको केमिकल यूरिया ये सब कुछ दिया था, तब हमारे पूर्वज पहले जैविक खेती ही करते थे, बीच में केमिकल यूरिया डीएपी ये सब बढ़ा है और लगातार फिर जब हम देख रहे हैं कि हमारी मिट्टी खराब हो रही है, हमारी सेहत खराब हो रही है, अब सरकार फिर आगे आ रही है और हमको अपनी की हुई गलतियां समझ में आ रही है और सरकार अब एक बार दोबारा जैविक खेती को लेकर बात करने लगी है और बढ़ावा देने लगी है। तो ये बात अच्छी लग रही है कि जो हमारे पूर्वज करते थे वो सही था, इस बात को फिर स्वीकारा जा रहा है।
1: अच्छा।
0: हम लोग बेसिकली 400 किसानों का ग्रुप है जो अलग अलग 14 राज्यों में काम करते हैं। तो जो हमको समझ में आया है कि जैविक खेती अलग से किसान को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम भी मानते हैं। जैविक खेती सिखाने की बजाय, क्योंकि खेती करना हम सभी को आता है, हमारा पूरा देश जो है वो किसान देश रहा है, तो खेती करना जब हम सभी को आता है, किसान ज़्यादा से ज़्यादा खेती तब करेंगे जब उनको मार्केट की व्यवस्था उपलब्ध होगी, जो वो खेतों में उगा रहे हैं उसको सही उचित मूल्य मिलेगा। तो जो हम कर पा रहे हैं, हम यही कर पा रहे हैं कि हम किसान को उचित मूल्य दे पा रहे हैं और किसान के लिए मार्केट उपलब्ध करा पा रहे हैं। मतलब अगर किसान ने कोई जैविक अनाज उगाया है तो उसके घर से वो अनाज उठा लिया जाए और उसको सही सही कीमत दी जाए, तब किसान जैविक खेती कर पाएंगे। सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं होगा, तो मार्केट की व्यवस्था करनी होगी, जिसको आज फार्मर्स प्राइड कर पा रहा है। तो देखिए, जब भी हम खेती की बात करते हैं तो मिट्टी बहुत अहम रोल रखती है खेती में। तो और सरकार की तरफ से माटी जांच के अलग अलग केंद्र भी बने हुए हैं। जब तक हम अपनी मिट्टी का जांच नहीं करेंगे कि उस मिट्टी में किस चीज़ की क्षमता ज़्यादा है, वो धान उगाने की क्षमता ज़्यादा रखती है, दाल उगाने की, दलहन की या तिलहन की, वो माटी जांच से पता चलता है हमको। तो इस तरीके से हमको एक तो माटी जांच से ही शुरू करना होगा और इसके अलावा गाय को बहुत महत्व दिया गया है जैविक खेती में, क्योंकि बिना गोबर खाद के और बिना गौमूत्र के जैविक खेती नहीं हो सकती है। तो इसके कारण हमको गाय को बढ़ावा देना होगा, अपने घरों में फिर से कहीं ना कहीं वापस उस गाय को रखना होगा और उस गोबर का इस्तेमाल करते हुए जैविक खेती को वापस करना होगा।
1: सफल महिला कृषक कविता भारद्वाज ने कहा,
2: अब यहाँ ये मिली से भैया के अपन घर में हमन पशु पालन कर रहे थन, ओकर जरिए से हमन गाय के गोबर मिला थे, तेकल हम खेत में डालबो, जो हमला रासायनिक मिला थे केमिकल दवाई वो अपन खेत में ना डाल के हम जैविक उपचार उपयोग कर सकत हवन, जेकर से हमन फायदा भी होई, हमारे शरीर भी स्वस्थ रहे।
1: इस कार्यशाला में बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र की सहायक प्राध्यापक डॉक्टर शिल्पा कौशिक ने कहा,
3: मेरा नाम डॉक्टर शिल्पा कौशिक मोदी है, मैं कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर में वैज्ञानिक हूँ। और आज का जो हम लोगों ने प्राकृतिक खेती कार्यशाला और जैविक खेती कार्यशाला रखी है, इसका उद्देश्य है किसानों को जागरूक करना जैविक खाद के प्रति, रसायन से दूर होने के प्रति और कम रासायनिक खाद के प्रयोग के प्रति। और इसका हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जैसे अभी खाद की समस्या होने वाली है, पहले होता था कि घुरवा का खाद किसान को मिलता था, अब नहीं मिलता है, तो किसान ढेचा की ओर आगे बढ़े, हरी खाद लगाए और इसी के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सके, इसलिए आज ये कार्यशाला रखी गई है। पहले तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि ये जो अंधाधुंध रसायन डाल रहे हैं खेत में, ये डालने के पहले अपने खेत का मिट्टी परीक्षण करवाएं। मिट्टी परीक्षण करवाने के बाद वो खेत में अपना जो खाद है उसकी संतुलित मात्रा या जो हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं, मतलब जो अनुशंसित मात्रा है वो अपने खेत में डालें। इससे ये होगा कि जो अत्यधिक खाद है वो किसानों के खेत में नहीं पड़ेगा और इससे हम जैविक खेती की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी आजकल हमने सुन रखा है कि कैंसर ट्रेन चल रही है, बहुत ज़्यादा रसायन के प्रयोग से माँ के दूध में भी रसायन आ गया है, ये मैं बात कर रही हूँ पंजाब और हरियाणा की। आज हमारे देश को ज़रूरत है स्वस्थ भारत की, तो इसके लिए जैविक खेती और प्राकृतिक खेती अपनाने की ज़रूरत है। हरी खाद लगाने के लिए आपको 45 दिन पहले बोनी करनी होती है। जो किसान भाई अभी अपना थरहा लगा चुके हैं वो अपने खेत में ढेचा की बोनी कर दें, ढेचा के साथ मूंग की बोनी कर दें, 8 किलो ढेचा और 4 किलो मूंग की बोनी कर दें। जैसे हम खेत मताई करते हैं उसी खेत में हमको डालना रहता है और इससे आपकी हरी खाद बनती है। इसमें जो हमारा ढेचा है वो जब फूल आने के पहले 30 से 35 दिन में उसको खेत में मताना होता है और एक हफ्ते छोड़ना होता है, उसके बाद फिर वो खेत में तैयार होता है। लेकिन जो किसान भाई ये नहीं कर पाए हैं, वो जो हमारी खुर्रा बोनी करेंगे और धान की सीधी बोनी करेंगे, उसमें धान के बीज के साथ ढेचा मिलवा दें और ये 20% रहेगा। और ये मिलवाने से ये होगा कि जब 20 से 25 दिन में वो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड जैसे 2,4-D का स्प्रे करते हैं, तो वो जो हरी खाद है वो पूरी खाद के रूप में उनके खेतों में प्रविष्ट हो जाएगी। देखिए ढेंचा का अभी जो कृषि विभाग से बीज मिल रहा है 8 किलो बीज, और उसके साथ साथ 4 किलो हमारा मूंग का

0: रेशियो में मिल रहा है, तो किसान भाई इस रेशियो से उपयोग कर सकते।
1: ये थे कृषि महाविद्यालय परिसर सरकंडा बिलासपुर में आयोजित जैविक कृषि कार्यशाला के संपादित अंश। अब कार्यक्रम से दीजिए अनुमति।

0: अभी हम प्रसारित कर रहे थे 17 जून को कृषि महाविद्यालय परिसर सरकंडा बिलासपुर में आयोजित एक दिवसीय जैविक कृषि कार्यशाला की रेडियो रिपोर्ट। रिकॉर्डिंग और संपादन रुपेश कंवर का था, प्रस्तुति नेमी चंद साहू की और संयोजन था डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन का।
1: बाबूजी के गुजर जाने के बाद ना बेटा एकदम अकेला पड़ गए थे, कभी कर्जा कभी ब्याज। फिर एको दिन लगा कि कोई अपना भी साथे खड़ा बा,
2: मुसीबत के टाइम भी,
3: बुआई और कटाई के टाइम भी,
1: बीच से लेके बाजार तक, बस ई साथ ऐसे ही निभाते रहिए।
4: 12 साल किसान कल्याण के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की किसान केंद्रित नीतियों ने कृषि क्षेत्र में रचा नया इतिहास। 4.3 लाख करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का फसल बीमा भुगतान, 8 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड और एमएसपी पर 26 लाख करोड़ रुपए से अधिक की फसल खरीद। ये उपलब्धियां किसानों के कल्याण और कृषि विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता का

0: प्रमाण है SECL द्वारा जन प्रसार में जारी।
1: FM एंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:45 हुए हैं। समाचार अब आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले होंगे।
2: बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PMsuryaghar.gov.in पर।
5: घर सूर्य घर।
6: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
7: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
6: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
7: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा।

0: के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य घर।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
6: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
6: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
6: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
7: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
6: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
8: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
6: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
8: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
9: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में आयोजित आचार्य पदारोहण और सहस्रावधान तपस्या महोत्सव में हुए शामिल। युवाओं और आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने प्रदेश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। और सख्ती पुलिस ने 1,45,00,000 रुपए कीमत के गांजे के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ सहित आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित आचार्य पदारोहण और सहस्रावधान तपस्या महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि भगवान महावीर और जैन दर्शन के सिद्धांत आज भी मानवता को शांति, आत्मसंयम, करुणा और

0: अहिंसा का मार्ग दिखाते हैं। वहीं मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर पहली बार आयोजित हो रहा आचार्य पदारोहण महोत्सव प्रदेश के लिए गौरव और सौभाग्य का विषय है। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी शामिल हुए। दल्ली राजहरा रावघाट रेल परियोजना के तहत कल 17 जून को रावघाट रेलखंड पर नियंत्रित गति और सीमित भार के साथ तकनीकी ट्रायल शुरू किया गया। ये ट्रायल विभिन्न चरणों में आगे भी जारी रहेगा। इस दौरान रेल लाइन की परिचालन क्षमता, संरचनात्मक सुरक्षा तथा तकनीकी मानकों का परीक्षण किया जाएगा। करीब 95 किलोमीटर लंबी दल्ली राजहरा रावघाट रेल परियोजना को सेल भिलाई इस्पात संयंत्र और भारतीय रेलवे के साझा प्रयासों से विकसित किया जा रहा है। मान में रावघाट स्टेशन भवन, यात्री सुविधाओं तथा सिग्नलिंग और दूरसंचार से जुड़े कार्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस वर्ष जुलाई के अंत तक स्टेशन परिसर के शेष कार्य पूरे होने की संभावना है। रावघाट तक रेल संपर्क स्थापित होने से बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों की पहुंच राज्य और देश के प्रमुख शहरों तक और अधिक सुगम हो जाएगी। युवाओं और आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग द्वारा कल 17 जून से प्रदेश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार ने मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। उन्होंने बताया कि इस वर्ष नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान थीम पर सप्ताह भर विविध गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। 26 जून तक चलने वाले नशा मुक्त भारत सप्ताह के दौरान स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में सेमिनार, समूह चर्चा, शपथ ग्रहण, जागरूकता रैलियां तथा संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नशा छोड़ चुके व्यक्तियों की प्रेरणादायक सफलता की कहानियों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके अलावा महिला और बाल विकास विभाग तथा पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मानव श्रृंखला, शपथ कार्यक्रम और जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव शहला निगार की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में छत्तीसगढ़ शराब व्यसन मुक्ति अभियान के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक हुई। बैठक में राज्य के प्रत्येक विकासखंड की 1000 से अधिक जनसंख्या वाली नई ग्राम पंचायतों में भारत माता वाहिनी के गठन और विस्तार संबंधी प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। समिति ने नशा पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए संचालित 15 बिस्तरों वाले एकीकृत पुनर्वास केंद्रों की क्षमता 15 से बढ़ाकर 50 बिस्तर करने का सुझाव दिया। साथ ही 5 जिलों मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, सुकमा, बेमेतरा और कोरबा में नए नशा मुक्ति केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया। पीएम सेतु योजना के तहत प्रदेश के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई को आधुनिक और उद्योग अनुकूल बनाया जा रहा है। योजना के तहत छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और ड्रोन जैसी नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही पुरानी मशीनों के स्थान पर आधुनिक उपकरण, डिजिटल कंटेंट और स्मार्ट क्लासरूम की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति की बैठक में पीएम सेतु योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कोरिया जिले की कलेक्टर रोकतिमा यादव ने एक आदेश जारी कर महलपारा, बैकुंठपुर, नौगई के साथ भाजपा नेता भरत सिंह गहरवार के कटगोड़ी स्थित क्रेशर प्लांट एरिया के 300 मीटर दायरे में धारा 163 लागू कर दी है। जारी आदेश के अनुसार किसी भी प्रकार के हथियार और विस्फोटक सामग्री पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इन क्षेत्रों में जुलूस, धरना प्रदर्शन और आमसभा पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आदेश उन शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने शासकीय दायित्वों के निर्वहन के लिए लाठी अथवा शस्त्र रखने की आवश्यकता होती है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को इन संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने तथा किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के निर्देश दिए गए हैं।

0: गौरतलब है कि कोरिया जिले के कटघोड़ी गांव में भाजपा नेता सहित 3 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सक्ती जिले के फगुरम चौकी पुलिस ने आज 2 क्विंटल से अधिक गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 1,45,00,000 रुपए बताई जा रही है। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकेबंदी कर वाहनों की जांच की। इस दौरान पुलिस ने ओडिशा से राजस्थान ले जाए जा रहे गांजे को एक ट्रेलर से बरामद किया। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की टीम ने कल प्रदेश के 3 अलग अलग जिलों में दबिश देकर भ्रष्टाचार के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ACB की टीम ने कल भिलाई नगर निगम से सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर को भ्रष्टाचार के एक मामले में हिरासत में लिया। इसके अलावा धमतरी में विद्युत यांत्रिकी विभाग में पदस्थ प्रोग्रेस मैन को 1,00,000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं ACB ने जशपुर नगर में RES विभाग के SDO को भी 25,000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा 19 शासकीय भर्ती परीक्षाएं पास कर अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाली चारु पांडे से लिए गए साक्षात्कार का प्रसारण आज रात 8:15 पर किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर राज्यपाल रमन डेका ने आज लोकभवन में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल सहित लोकभवन के अन्य अधिकारियों कर्मचारियों ने भी रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल गरियाबंद जिले को 603,46,00,000 रूपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 76 विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास किया। प्रदेश में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सुपोषण वृक्ष मुनगा के रोपण को जन आंदोलन का स्वरूप देने का आह्वान किया है। श्रीमती राजवाड़े ने सभी जनप्रतिनिधियों से वर्षा ऋतु के दौरान जल स्रोतों के आसपास, ग्राम पंचायत परिसरों, सार्वजनिक स्थलों तथा हितग्राहियों के घरों में मुनगे के पौधे लगाने का आग्रह किया है। उन्होंने सभी नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाकर सुपोषित छत्तीसगढ़ के निर्माण में योगदान देने की अपील की है। लोरमी में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती समारोह में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की अमर मिसाल है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आगामी 23 जून को नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। जांजगीर चांपा जिले के कोड़ाभाट गांव में तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोंडागांव द्वारा कल 19 जून को कलेक्टोरेट परिसर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में आयोजित आचार्य पदारोहण और सहस्रावधान तपस्या महोत्सव में हुए शामिल। युवाओं और आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने प्रदेश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। और सक्ती पुलिस ने 1,45,00,000 रुपए कीमत के गांजे के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: यार कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना।
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: प्रादेशिक समाचार अभी हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। FM मैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं और अब लीजिए सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम। ईमेल करें, गीत सुने।
5: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
6: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
5: मैं फसल की नहीं NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
6: मास्टर

0: जी, ये NPS संचय क्या है?
1: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
2: कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने सुनने वाले सभी श्रोता साथी, स्वीकार कीजिए आपकी अपनी रेडियो साथी खुशबू का प्यार भरा नमस्कार।

प्रस्तुत हूँ कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत, लीजिए सुनिए मन्ना डे की आवाज़ में। मंजिल फिल्म से मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है और HD बर्मन का संगीत। पसंद आई है हमारे इन सभी श्रोता साथियों की। रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र जोयामनी उमा तिवारी, हांसी से राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू बबीता सुभाष योगी और धुर्रा बंधम हाटापारा से है प्रमोद साहू, देव नवीन युवराज साहू, खमरिया से पसंद साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार की। ये श्रोता है पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, राजकोट से राजेश, कृष्णा स्वाति और ख्याति कुमारी, बुल्ढाणा वटसिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई दीपाली और श्लोक कुमार, लगान पंडरिया से हैं उत्तम कुमार बघेल, रुखमणि साहिल और भारती बघेल। और ये मेल हम तक भाटापारा से आया है बचकमल, मोतीलाल यादव, सियाराम चौरव वर्मा, सूरज पारिकर, नारायण यदु और भुवन कामरी का। रसेड़ा से पसंद मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, डिकेश, वासु, डॉली, पूर्वेश साहू की। नरवेल महाराष्ट्र से PS नहवाकर, निर्मला विशाल नहवाकर, रायपुर से नीलूमेघ, वंदना कुमार, बिट्टू और साथी। वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत और अर्पिता ने भी इस गीत को पसंद किया है। मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित और तानिया नारंगा। और इसी गीत को महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश प्रज्ञेश और प्रीतेश संघई ने भी सुनना चाहा है। ये श्रोता है भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र दुष्यंत और राघवेंद्र साहू। और इसी गीत को धरदेई सरगांव से चंदूलाल पटवा, सुनीता हर्ष, विनीत कृष्टि पटवा ने सुनना चाहा है। बिलासपुर से पसंद आई है छनूलाल शिवास, अनीता पुष्पांजु, योगिता रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी की। कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश लोकेश, आशीष रवि, शनि रियांश, कान्हा आदित्य देवांगन। बुड़गहन से है रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति। और गंडई पंडरिया से पसंद पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन का आया है। इसी गीत को सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु सोनाली नारंग ने पसंद किया। ये श्रोता है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर रतनमाला और ओम कुमार सुरलकर। खोंधला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी करिश्मा सुमार साय, कलेश्वर सुखराम हीरामणि और ऐश्वर्या पैकरा।

0: मंजिल फिल्म का गीत तमन्ना डे की आवाज़ में अभी आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना थी और संगीत था SD बर्मन का।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने। बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
2: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
1: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
0: और अब आपको सुनवाते हैं फिल्म पड़ोसन का ये गीत, स्वर किशोर कुमार का, राजेंद्र कृष्ण के बोल और RD बर्मन का संगीत। पसंद नरगोड़ा से आई है कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी की। और ये श्रोता है बिलाईगढ़ से खीकराम देवांगन, रेनू, रजनी, प्रियंका देवांगन। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजभिये। मजनू कटिल्ला से हैं कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा। सोंगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित और साथ में हैं देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार चंदन। पोड़ी भाटा कलतरा से दिलीप, चोराम यदु, निखिल वसुंधरा और प्रांजल चंदन का मेल हम तक पहुंचा है। मदनपुर से हैं पसंद करता श्रवण कुमार साहू, योगेश राहुल साहू। कुम्हार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा प्रतीक्षा चंदन। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित, गर्व और हिमाक्ष। तिवर्ता डबरीपारा जिला कोरबा से पसंद महेंद्र प्रताप मरकाम, जया जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र, मोहन सिंह, सहोद्रीबाई, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई, चंद्रपाल मरावी और लक्ष्मी थदवानी का। और ये मेल चिरमिरी कुरासिया कालेरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ साथ में, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश कालिंद्री लहरे। रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी का मेल हम तक पहुंचा है। और ये श्रोता है जगराव से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गव्या, सुच्चा सिंह पाठक। मेरठ केंट से दिग्दर्शन कविता कर्ण, शक्ति रियजय और दर्शन भाई का मेल हम तक पहुंचा है। तो लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर पड़ोसन फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़।

0: पड़ोसन फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में आप तक पहुंचा रहे थे, और अब इसी गीत के साथ ही ईमेल करे गीत सुने यहीं समाप्त हुआ। FM एंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। अब रिले करेंगे दिल्ली से केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला, विषय है विरासत।
1: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत में बीते 12 वर्षों में जो विकास यात्रा का हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दौर देखा है, नए कीर्तिमान हमने देखे हैं, इस संबंध में आज हम कार्यक्रम में एक खास बातचीत आपके लिए लाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीते 12 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत की बदलती हुई तस्वीर को हमने देखा है, इस बदलती पिक्चर को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से ये संभव हो पाया है, किन कदमों की बदौलत ही हो पाया है?
2: तो पूर्वोत्तर भारत में जो विकास हुआ है उसके मुख्यतः जो कारण है वो सस्टेन्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा टारगेटेड प्रोग्राम डिलीवरी और तीसरा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। और ये सब जो कार्य हुआ है इसमें कोई एक सिंगल स्कीम जो पूरी कहानी को नहीं बताती है, ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स का एक साथ समावेश होना, उनका कॉन्वर्जेंस होना जो ये चेंज दिखाई पड़ता है उसको दर्शित करता है। 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मैकेनिज्म जो 55 भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज जहां पर 50,000 करोड़, SARDP नॉर्थ ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज, इनमें उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहाँ तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल्स अब कनेक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूं तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूं, अष्टलक्ष्मी में राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं, उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है।
1: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट में, पीएम डिवाइन। तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है?
2: पीएम डिवाइन स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है पिछली फाइनेंस कमीशन साइकिल में। बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत समझ लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के बीच के बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि जो बड़ी गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको पूरी की जा सके, उस पर्पस से पीएम डिवाइन को लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन करके लॉन्च किए जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे उनकी बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में रहें, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, आईटी पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स। और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सिलेक्शन, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और टाइमली मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके, ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकें।
1: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत ने पीएम डिवाइन योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था, थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजना धरातल पर, जमीन पर उतरकर काम कर रही है और कैसे एक नए तरह से इस योजना से विकास को देखा जा रहा है और कैसे इससे और भी चीजों को, जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
2: कई राज्यों में, इनफैक्ट ऑल दी 8 अष्टलक्ष्मी राज्यों का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। बालेडुंगा में जो ये स्काई वॉक की आप जो बात कर रहे हैं, अपने आप में एक बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहाँ मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो ना केवल जो स्काईवॉक वहाँ पे तैयार हो रहा है पर जो ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहाँ पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काईवॉक जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज़्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज़्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली ये टॉप

0: 1, 2, 3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा। और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहाँ पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। 2 प्रोजेक्ट्स मेघालय में, सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। और उन सब प्रोजेक्ट्स से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है, जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो, या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5 स्टार हो या 3 स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहाँ जो उसका इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, साथ ही साथ गाइड्स। और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सकें, खासतौर पे सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें।
1: बिल्कुल
0: और हाल ही में इस बजट में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इम्प्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
1: आपने जैसे कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा। कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं?
0: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, ना केवल भारत के लिए, मैं तो कहूँगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब जो यूएसपी डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें जो यहाँ की प्रीमियम वेराइटीज़ हैं, चाहे वो लेकाडोंग टर्मेरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइनएप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो हैं, इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके।
1: आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा हब बने, इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में और सरकार इसे कैसे देख रही है?
0: जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है, उसी के अनुपात में अब बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनीज और छोटी एमएसएमईज भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें। बहुत पोटेंशियल है, ना केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में, बट टूरिज्म में, साथ ही साथ चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था, लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, एमओयूज और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे। उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएँ और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकें। कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा।
1: एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर भारत के विकास में, वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है, प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है और कैसे इससे और विकास को तेजी मिल रही है?
0: गृह मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति है और उस शांति का जो बेसिस है वो एक सस्टेन पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं और खास तौर पे एग्रीमेंट्स हैं। उन एग्रीमेंट्स के टाइमली इंप्लीमेंट

0: इम्प्लीमेंटेशन के लिए डोनर मिनिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। उन डेवलपमेंट पैकेजेस को इम्प्लीमेंट करना जो एग्रीमेंट का पार्ट है, खासतौर पे लाइवलीहुड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये इंश्योर किया जाए कि सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज़ तक पहुँचे जिन्होंने इस एग्रीमेंट में अपने योगदान दिए हैं। और ये सारे इनिशिएटिव्स हमें हेल्प करेंगे आने वाले समय में वहाँ पर शांति को बरकरार रखने के लिए और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नॉर्थ ईस्ट की इन एग्रीमेंट्स के का एक मेजर आउटकम के तौर पर निकलेगा।
1: पहले कभी जो लुक ईस्ट का नजरिया था पूर्वोत्तर भारत का, वो एक्ट ईस्ट में सरकार ने बदला है, तो कैसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको आप देखते हैं, इस रणनीति को कैसे सरकार पूर्वोत्तर भारत को इस नजरिए से देख रही है?
0: तो इस सिग्नल का जो अर्थ है वो ये है कि इट इज़ अ मूवमेंट फ्रॉम पैसिव डिप्लोमेटिक ओरिएंटेशन टू अ प्रोएक्टिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद द ईस्ट। एंड हियर नॉर्थ ईस्ट इज लाइंग एट द हार्ट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एंड इट मीन्स दैट बाय स्ट्रेंथनिंग द फिजिकल कनेक्टिविटी, प्रमोटिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, पीपल टू पीपल लिंक्स एंड इंटीग्रेटिंग द रीजन इन टू ए रीजनल वैल्यू चेन विद द साउथ ईस्ट एशिया। एंड आई थिंक ऑल द स्टेट स्पेसिफिक इनिशिएटिव एक्चुअली टेक अस टू दैट पर्टिकुलर पैराडाइम। एंड इट्स ऑल्सो एसेंशियल दैट दिस अप्रोच रिकग्नाइजेज नॉर्थ ईस्ट एज बोथ अ नेशनल एसेट एज वेल एज अ गेटवे टू एक्सटर्नल मार्केट्स। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अस बैलेंस द स्ट्रेटेजिक एंड डेवलपमेंट प्रायोरिटीज।
1: तो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का आप आने वाले समय में किस तरह का कुछ विजन के बारे में बताना चाहेंगे, और कैसे जो आज हमारे जो 8 राज्य हैं वो आने वाले समय में विकसित भारत में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं?
0: हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का बैठक हुआ था शिलोंग में। माननीय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी, हमारे डोनर मिनिस्टर, साथ ही साथ समस्त राज्यों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ने उस बैठक में शामिल हुए थे। और उसका एक सबसे मेजर जिस बार जो योगदान रहा है वो 8 राज्यों में को मिलाकर 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस बनाई गई थी जो चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड थी, और उनमें दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया था। पहली बार ये प्रयत्न किया गया था कि हर राज्य अपने खुद के राज्य को ही ना देखे, वो पूरे रीजन को देखे, और उस रीजन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन हाई लेवल टास्क फोर्सेज में आई है। साथ ही साथ एक विजनिंग एक्सरसाइज हुई है जो 2047 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें विकसित नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान रहेगा वो भी इस लक्ष्य का पार्ट है। अब ये सारी हाई लेवल टास्क फोर्सेज जो बनी है इनका इम्प्लीमेंटेशन आने वाले समय में समस्त राज्यों को मिलाकर, यूनियन मिनिस्ट्रीज को मिलाकर, स्टीयरिंग ग्रुप्स के द्वारा होगा, और जिससे हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में आने वाले समय में ऑलरेडी विकास की जो गति है वो बहुत तेज है। हर स्टेट डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ हासिल कर रहा है, हर स्टेट 5-5, 6-6 साल में अपने आप को डबल कर रहा है इकोनॉमिक साइज में। तो ये सब और आने वाले समय में आगे बढ़ सके और नॉर्थ ईस्ट का जो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल नेशनल जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में और आगे जा सके, इस सब का इसमें प्रयत्न पूरा शामिल है। तो आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा फोकस जो है इट विल रिमेन ऑन कॉन्वर्जेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ग्रीन डेवलपमेंट, सो दैट द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर इंटीग्रेटेड इन टू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, एंड वेन दे डू दैट दे ऑल्सो रिटेन देयर यूनिक आइडेंटिटी।
1: थैंक यू सो मच सर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बारह साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन दिस स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू विद आर मुकुंदन, प्रेसिडेंट कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII। इंटरव्यूअर इज शिशिर सिन्हा, जर्नलिस्ट।
4: नमस्कार। मोदी गवर्नमेंट इज कंप्लीटिंग 12 इयर्स। ड्यूरिंग दोज 12 इयर्स वी हैव सीन वेरियस अप्स एंड डाउन इन द इंडियन इकॉनमी। We have seen challenges like COVID. We have seen challenges like Russia-Ukraine war, and now the current West Asia crisis. Despite all those things, Indian economy has grown more than 7% during those 12 years. And now the expectation is it will grow at much faster rate. So what kind of role India Inc. has to play in this entire growth journey?

सावन को आने दो, इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा की थी। गोहर कानपुरी की रचना, संगीत राजकमल का था। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी ये सूचना सुनिए, अब से थोड़ी ही देर में यानी 7:55 पर हम प्रसारित करेंगे पत्रोत्तर कार्यक्रम चिट्ठी मिली। प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन और अंतरा चक्रवर्ती की। और अब कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अगला गीत लीजिए, सुनिए बात एक रात की। इस फिल्म से हेमंत कुमार की आवाज में यह गीत है। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, एच डी बर्मन का संगीत।

0: बात एक रात की। इस फिल्म का गीत हेमंत कुमार और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में आप अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार एचडी बर्मन। और अब इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत का ये अंक यहीं समाप्त हुआ।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
1: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 7:55 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चिट्ठी मिली, प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन और अंतराग चक्रवर्ती की।

0: चिट्ठी मिली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को सुप्रिया
1: और अंतरा का नमस्कार।
0: अंतरा, बारिश का इंतजार हम सबको हो रहा है, लेकिन मानसून कहीं भटक सा गया है। 3-4 दिन से खंड वर्षा पूरे राज्य में यत्र तत्र हो जरूर रही है, लेकिन फिर भी आसमान की तरफ आंखें लगी हैं और हमारे किसान भाई अपने खेतों में बहुत सारा काम पूरा करके बारिश का इंतजार कर रहे हैं। तो हम भी इस इंतजार में शामिल हैं आप सबके साथ, और यही कामना करते

0: हैं कि हमारे किसानों को ना उम्मीदी ना हो और बारिश समय पर आए और उनका जो काम है वो समय से पूरा हो। लेकिन समय की बात जब होती है तो कार्यक्रम चिट्ठी मिली अपने समय पर हाजिर हो जाता है और हमेशा की तरह चाहे कोई भी मौसम क्यों ना हो ढेर सारे पत्र हमारे साथ हैं। तो पत्रों का ही सिलसिला शुरू करें।
1: बिल्कुल, चिट्ठी मिली कार्यक्रम का ये पहला पत्र उठाते हैं जो आया है उड़नताल दगौरी से। लिखने वाले हैं श्यामता प्रसाद गायकवाड़, हेमलता जागृति, सरला पल्लवी और समीर गायकवाड़ का।
0: क्या लिखते हैं?
1: ये लिखते हैं 10 जून को प्रसारित अमराई कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा और सुनील चिपड़े द्वारा फोन इन कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद की भी इन्होंने सराहना लिख भेजी है।
0: तो चलो पत्र के लिए इनका भी धन्यवाद देते हैं। आप कार्यक्रम सुनते रहें और पत्र भेजते रहें। अगले कुछ ईमेल मेरे पास हैं। ये लोरमी ग्राम चचड़ी से भेजे हैं हमारे श्रोताओं ने अंतरा। ये हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी के। इन्हें भी 11 जून का ईमेल करें, गीत सुने कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, रत्ना जी को बधाई दे रहे हैं। और आगे 15 जून के ईमेल करें, कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं और मदन पांडे को बधाइयां दे रहे हैं। तो पत्र के लिए इनका भी धन्यवाद दे देते हैं।
1: जी, अगले ईमेल की ओर बढ़ते हैं जो आया है पोटिया कला दुर्ग से। लिखने वाले हमारे साथी हैं संजय साहू, सुजाता साहू। ये लिखते हैं कि 12 जून को सुबह 8:30 पर इनसे मिलिए कार्यक्रम में आईआईटी भिलाई के निर्देशक प्रोफेसर डॉक्टर राजीव प्रकाश से दीपक हटवार जी की बातचीत इन्हें अच्छी लगी।
0: क्या बात।
1: और 16 जून के लिए ये लिखते हैं कि सुबह 8:30 पर मोर भुइयां कार्यक्रम भी इन्हें बहुत अच्छा लगा जिसमें सुरजीत नवदीप से समीर शुक्ल जी की बातचीत इन्हें सारगर्भित लगी।
0: क्या बात है। चलिए बहुत अच्छा लगा, आप लगातार हमारे ये कार्यक्रम सुनते हैं। पत्र के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और ये कुछ ईमेल हमारे पास आए हैं बनियापारा धमतरी से। रामचंद माखीजा, काफिर भाई, सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या माही, पूजा छुटकी, शरद और उनका पूरा परिवार
1: जी।
0: कई सारे कार्यक्रमों की बड़ी विस्तृत समीक्षा इन्होंने लिख भेजी है। एक एक शब्दशः इन्होंने गीत के बोल भी लिखे हैं और कार्यक्रम के बारे में भी लिखा है। 12 तारीख का कार्यक्रम गुंजेश्वर गांव के इन्हें बहुत अच्छा लगा जो कि गाथाओं पर केंद्रित था, इसके लिए बधाइयां दे रहे हैं। और 10:30 आपकी पसंद कार्यक्रम भी इन्हें बहुत अच्छा लगा जिसे सीमा जी ने प्रस्तुत किया था, उसके लिए भी हमें बधाइयां दे रहे हैं। 13 तारीख को 8:15 रजनीगंधा इन्होंने सुना, प्रेम धवन पर केंद्रित इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया था आरती ने, ये कार्यक्रम इन्हें अच्छा लगा। और 15 तारीख को सुबह 10:00 तुम्हर गोठ हमर गीत भी इन्होंने सुना, मदन को भी बधाइयां दे रहे हैं
1: जी।
0: और आगे लिखते हैं कि 16 तारीख को 8:00 इन्होंने भुइयां की बोली कार्यक्रम सुना जिसमें प्रकृति, पर्यावरण और हमारी संस्कृति पर केदार दुबे की बातचीत थी और सनत तिवारी जी से काव्य पाठ प्रसारित किया गया था जो पर्यावरण पर केंद्रित था। ये कार्यक्रम भी इन्हें बहुत अच्छा लगा, विशेष रूप से सारे शब्दों को, गीतों के बोलों को ये यहाँ पर लिख रहे हैं और हमें बधाइयां दे रहे हैं। और आगे लिखते हैं कि 17 तारीख को हेलो आपकी पसंद कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, संज्ञा टंडन की प्रस्तुति थी, श्रोताओं से बातचीत और गीत बड़े अच्छे लगे, इसके भी काफी विस्तार से वर्णन इन्होंने किया है। और पत्र के लिए हम इनको भी धन्यवाद देते हैं कि लगातार हमारे सारे कार्यक्रमों को इतने ध्यान से सुनते हैं
1: जी। अगला ईमेल है लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, राजा मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी का। ये एक शिकायती ईमेल लग रहा है मैम। और ये लिखते हैं कि 1 महीने से ये ईमेल लगातार कर रहे हैं लेकिन इनका मेल शामिल नहीं हो रहा है। क्या कारण है? पहले तो मेल शामिल हो जाता था,
0: अभी नहीं हो,
1: अब नहीं हो रहा है।
0: सही बात है अंतरा, कई बार नेट में आई कुछ कुछ गड़बड़ियां, जैसे इन्होंने खुद भी लिखा है कि आईडी कहीं ब्लॉक तो नहीं हो गया। हम देखते हैं, आपने शिकायत की है, आपने अपनी बात रखी है, तो हम भी अपनी तरफ से देखते हैं कि कहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं आई है। यदि ऐसा है तो हम उसको दूर कर देंगे और आपका पत्र शामिल हो जाएगा। पत्र के लिए आपका भी धन्यवाद देते हैं। और ये अगला मेल हमारे पास आया है चांदनी चौक गंडई पंडरिया से, पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू रविन्द्र, रौनक सेन। और छत्तीसगढ़ भुइया को, माटी को, बोली को नमन करते हुए बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं और लिखते हैं कि 11 जून को महावीर बरगाव और मोनाली ठाकरे की आवाज में चिट्ठी मिली कार्यक्रम बड़ा ही अच्छा लगा, इसकी तारीफ कर रहे हैं। तुहर गोठ हमर गीत भी ने इस हफ्ते का अच्छा लगा, मदन को बधाइयां दे रहे हैं। और आपकी पसंद ईमेल करे गीत सुने, सभी कार्यक्रम लगातार सुने हैं इन्होंने, सभी कार्यक्रम इन्हें पसंद आए और सभी कार्यक्रमों के लिए सभी प्रस्तुतकर्ताओं को ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं।
1: क्या बात है। अगला मेल भी है हमारे साथियों का, जांजगीर से लिखने वाले हैं हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद, अंजुलता, उमाबाई, मीनाक्षी, अमन कुमार, विष्णु प्रसाद तिवारी का। ये लिखते हैं हेलो आपकी पसंद, इन्हें बहुत अच्छा लगा।
0: क्या बात है, चलिए आपकी खुशी बरकरार रहे। पत्र भेजिएगा, पत्र के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं
1: जी।
0: और ये अगला ईमेल हमारे पास आया है नांदगांव कातल बोर्ड से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री, टिकेश्वर और ऋतु राजपूत का। इन्होंने भी 15 जून को प्रसारित चिट्ठी मिली कार्यक्रम पसंद किया है और

0: मोनाली जी और महावीर बरगाव को बधाइयां दी हैं। अमराई कार्यक्रम भी इस दिन का अच्छा लगा, आज सुबह भी अच्छा लगा। तुहर गो ठमर गीत के लिए मदन भैया को बधाई दे रहे हैं और 17 जून के हेलो आपकी पसंद की मनमोहक प्रस्तुति के लिए संज्ञा टंडन को भी बधाइयां दे रहे हैं। पत्र के लिए आपका भी धन्यवाद
1: जी। एक और मेल है मेरे हाथ में इस वक्त, मगर पारा बिलासपुर से लिखने वाली है रेणु शुक्ला, राजेश कुमार, वैभव शुक्ला और विनी मिश्रा का। ये लिखते हैं कि 17 जून को प्रसारित हेलो आपकी पसंद संज्ञा टंडन जी की प्रस्तुति में इन्हें बहुत अच्छा लगा। आपन के गीत और माटी के स्वर जैसे कार्यक्रम भी इनके दिल को जीत लेते हैं। प्रशंसा और सराहना इन्होंने लिख भेजी।
0: क्या बात है, आप लोग के दिल तक हमारे कार्यक्रम पहुंचते हैं, इससे बड़ी उपलब्धि हमारे प्रस्तुतकर्ताओं की और क्या हो सकती है। पत्र के लिए इनका भी धन्यवाद देते हैं। और ये अगला ईमेल अंतरा जो मेरे हाथ में ये आया है, कतियापारा जूना बिलासपुर से लिखने वाले हैं सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रेयांश, कान्हा, आदित्य देवांगन। 11 जून का चिट्ठी मिली कार्यक्रम इन्हें भी अच्छा लगा, मोनाली और महावीर को बधाई दे रहे हैं। और 14 तारीख का सुबह की सभा के जो कार्यक्रम थे उसमें श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर इन्हें बहुत अच्छा लगा। 15 जून को तुहर गो ठमर गीत मदन को बधाई दे रहे हैं। 16 तारीख को मानस जी ने ईमेल करे गीत सुने में बहुत सारे श्रोताओं के ईमेल शामिल किए, शानदार प्रस्तुति के लिए उन्हें भी बधाई दे रहे हैं। 17 जून को हेलो आपकी पसंद के लिए संज्ञा को बधाइयां जा रही हैं। और लिखते हैं कि बहुत दूर दूर से श्रोता भाई भाग लेते हैं, वहां की जानकारी देते हैं तो मन खुश हो जाता है, मीठी मीठी बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो सभी प्रस्तुतकर्ताओं को सप्ताह भर के कार्यक्रमों के लिए बधाई देते देते बुजुर्गों और छोटे छोटे बच्चों का विशेष ध्यान देने की भी बात कर रहे हैं। और अभी जो मौसम है वाकई में बड़ा खतरनाक सा है अंतरा, क्योंकि एक तरफ उमस बढ़ रही है, गर्मी बरकरार है, भले ही हम तापमान देखें तो वो 35-36 है, लेकिन जो उसका एहसास है वो 42-43 जैसा हो रहा है।
1: बिल्कुल।
0: तो हमें विशेष करके छोटे बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान देना और खूब पानी पीना है, हर एक घंटे में आधा ग्लास पानी पीते रहिए तो बहुत सारी तकलीफों से हम बचे रहेंगे, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं।
1: अगले मेल की तरफ बढ़ते हैं जो आया है बरेली कैंट चनहेटी उत्तर प्रदेश से। लिखने वाले हमारे साथी हैं विनेश कुमार श्रीवास्तव, रागिनी और मुस्कान। ये लिखते हैं कि 11 जून को चिट्ठी मिली प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, जिन्हें प्रस्तुत किया था मोनाली मैम और महावीर बरगाह जी ने। 12 जून को कार्यक्रम आज सुबह की प्रस्तुति इन्हें बहुत अच्छी लगी। 13 जून को ईमेल करें, गीत सुने कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। 15 जून को सुरैया पर केंद्रित कार्यक्रम इन्हें अच्छा लगा। रजनीगंधा कार्यक्रम में भी सुरैया जी के करियर पर अच्छी प्रस्तुति सुनने को मिली। 16 जून को यादों के झरोके कार्यक्रम में पुराने गीत सुनने को मिले, शानदार प्रस्तुति के लिए सभी प्रस्तुतकर्ताओं को ये बधाई लिख भेजते हैं। एक और पत्र है मैम, ये आया है मंगला बिलासपुर से पद्मा रानी और रूबी का। इन्हें महिला सभा कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, इन्होंने सराहना और बधाई लिख भेजी है।
0: सच बात है, आपने जिन जिन प्रस्तुतकर्ताओं को बधाइयां भेजी इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी प्रस्तुतकर्ताओं तक ये बधाइयां पहुंच रही हैं, तो अच्छा लगा कि आप महिला सभा कार्यक्रम सुनते हैं। पत्र के लिए धन्यवाद देते हैं। और ये अगला ईमेल हमारे पास आया है चिनमरी कुरसिया कॉलरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंदी और उनके साथियों का। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में और केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर जितने सारे कार्यक्रम हमने अपने केंद्र से प्रसारित किए हैं इन्हें बहुत अच्छे लगे हैं। और बीच में साइकिल दिवस, बुजुर्गों का सम्मान, रक्तदान दिवस, ये सभी पर जो कार्यक्रम प्रसारित किए गए ये बड़े ही फायदेमंद इन्हें लगे। सभी कार्यक्रमों के बारे में इन्होंने लिखा है कि जितने भी प्रकार के कार्यक्रम हो, चाहे डॉक्टर की सलाह हो, ईमेल करे गीत सुने हो, हेलो आपकी पसंद हो, किसान वाणी हो, ये सभी कार्यक्रम ये सुनते हैं और इससे समाज को अलग अलग रूप से फायदा पहुंचता है। चलिए पत्र के लिए आपका भी धन्यवाद देते हैं।
1: और मैम मुझे लगता है कि इस मेल से एक चीज और आज बिल्कुल साफ हो गई है कि हमारे जो श्रोता हैं हर वर्ग के कार्यक्रमों को सुनते हैं।
0: सही बात,
1: महिलाओं की भी इन्होंने तारीफ की है, बच्चों के कार्यक्रम की भी तारीफ की है, तो बहुत खुशी होती है।
0: यही उद्देश्य है आकाशवाणी का, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का, और वहां पर जाकर जब ये सार्थकता महसूस होती है तो वाकई अच्छा लगता है।
1: अगला मेल पढ़ती हूँ जो आया है बुड़गहन से। लिखने वाले हमारे साथी हैं रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति का। ये लिखते हैं 11 जून को प्रसारित साप्ताहिक समीक्षात्मक कार्यक्रम चिट्ठी मिली सुनने को मिला, बहुत दिलकश अंदाज में मोनाली ठाकरे जी और महावीर बरगाह जी की प्रस्तुति अच्छी लगी। 17 जून को प्रसारित फोन इन कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद को प्रस्तुत किया संज्ञा टंडन जी ने, जो बहुत अच्छी लगी, बधाई प्रेषित कर रहे हैं। 17 जून को ही ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम भी, इन्हें बहुत अच्छा लगा। दिलकश प्रस्तुति के लिए ये प्रस्तुतकर्ताओं को बधाई और सराहना लिख भेजते हैं।
0: चलिए, पत्र के लिए आपका भी धन्यवाद। जुड़े रहिए, पत्र लिखिए और इसी तरह से इस कार्यक्रम में शामिल होते रहिए। और ये अगला ईमेल आया है अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश।

0: शर्मा कांतरा,
1: जी
0: ये लिखते हैं कि 13 तारीख को 8:30 बजे समन्वित कार्यक्रम, डॉक्टर की सलाह इन्होंने सुना, ये कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा। 15 तारीख को ईमेल करें गीत सुने, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, मदन जी को बधाई दे रहे हैं। 17 तारीख, हेलो आपकी पसंद कार्यक्रम अच्छा लगा, इसके लिए संज्ञा टंडन को बधाई दे रहे हैं। और पत्र के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और अब भाटापारा से हैं बचकामल मोतीलाल यादव, पसंद भृगु, विनय ठाकुर, चुवाराम, सूरज पारिकर और नारायण यदु का ये ईमेल।
0: क्या लिखते हैं?
1: ये लिखते हैं कि 11 जून को चिट्ठी मिली कार्यक्रम में मोनाली ठाकरे और महावीर बरगाह की प्रस्तुति इन्हें बहुत अच्छी लगी। 12 जून को अंशुल कुलकरी द्वारा पेश किया गया रजनीगंधा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। 13 जून को खुशबू जीत द्वारा प्रस्तुत आज सुबह और सदाबहार नगमे बेहद अच्छा लगा, सुंदर प्रस्तुति के लिए खुशबू को बधाई लिख भेजते हैं। 13 जून को ही आरती जी द्वारा पेश किया गया रजनीगंधा कार्यक्रम, जो गीतकार और संगीतकार प्रेम धवन जी की जयंती पर प्रस्तुत किया गया, ये भी बहुत अच्छा लगा। 14 जून को ग्राम सभा कार्यक्रम अच्छा लगा, जिसमें आप मन के गीत कार्यक्रम में राजू भैया की प्रस्तुति इन्हें मनमोहक लगी। 15 जून को अपेक्षा शर्मा द्वारा यादों के झरोके से कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा, जो गायिका और अभिनेत्री सुरैया जी पर केंद्रित थी। 15 जून को ही मदन पांडे द्वारा पेश किया गया रजनीगंधा कार्यक्रम अच्छा लगा। 16 जून को मदन पांडे जी की ईमेल कार्यक्रम पर प्रस्तुति इन्हें अच्छी लगी। 18 जून को अपेक्षा जी द्वारा माटी के स्वर कार्यक्रम की भी प्रस्तुति इन्हें बेहद अच्छी लगी।
0: सुबह के और रात के कुछ चुनिंदा कार्यक्रमों को ये बिना भूले बिना रुके सुनते हैं अंतरा, और इन सभी साथियों को हम पत्र के लिए धन्यवाद देते हैं। अगला पत्र आया है अंतरा लक्षनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश साहू का। 18 जून को 8:30 बजे प्रसारित माटी का स्वर कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, एक से बढ़कर एक गीत थे और पत्र भी बहुत सारे शामिल हुए। हमारे श्रोता खुश हो जाते हैं जब गीतों के साथ साथ पत्रों की भी बौछार हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: तो आपके पत्र के लिए धन्यवाद देते हैं। और एक शिकायती पत्र हमारे पास और है, इसमें लिखा है कि दतरंगी भाटापारा से हमारे श्रोता है हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। ये लिखते हैं कि 17 जून को इन्होंने युवा दिलों की धड़कन कार्यक्रम युवा जगत सुना, जिसे प्रस्तुत किया था श्रुति गौरहा ने। कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा, सवाल जवाब सुना, इनके सामान्य ज्ञान में भी इजाफा हुआ, लेकिन सही जवाब देने के बावजूद भी इनका मेल इसमें शामिल नहीं हुआ, जबकि किसी श्रोता का नाम दोबारा भी पढ़ा गया। ऐसी गलती वैसे होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन यदि हुई है तो इसका हमें खेद है। हम आगे से कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। हम देखेंगे कि कहीं आपका मेल हमें प्राप्त हुआ या नहीं। फिलहाल हम पत्र के लिए आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने इंगित किया कि ऐसी एक घटना इस कार्यक्रम में हुई। पत्र के लिए इनका भी धन्यवाद देते हैं।
1: बिल्कुल, और बढ़ते हैं अगले ईमेल की तरफ, जो आया है इंदिरा चौक तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल, मानस, चेतन और गंगा देवी विश्वकर्मा का।
0: क्या लिखते हैं?
1: ये लिखते हैं कि 11 जून को प्रस्तुत चिट्ठी मिली कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा। 12 जून को अंशुल गुलकरी द्वारा प्रस्तुत रजनीगंधा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। 13 जून को आरती दीदी द्वारा प्रस्तुत रजनीगंधा कार्यक्रम की भी एक सराहना लिख भेजते हैं। 15 जून को हमारे प्रिय मदन भैया जी द्वारा प्रस्तुत रजनीगंधा कार्यक्रम में सुरैया जी पर जो केंद्रित कार्यक्रम इन्होंने प्रस्तुत किया था वो कर्णप्रिय लगा, जिसके लिए बधाई प्रेषित करते हैं। 16 जून को महिला सभा कार्यक्रम के अंतर्गत क्रम परिसंवाद कार्यक्रम में बिलासपुर के DSP श्रीमती मंजुला क्रिकेट्टा से प्रभा कश्यप दीदी की जो बातचीत हुई ये इन्हें बहुत उद्देश्यपूर्ण लगी, ज्ञानवर्धक लगी, इसके लिए भी बधाई प्रेषित करते हैं। 16 जून को 8:30 बजे भुइया के बोली कार्यक्रम इन्होंने सुना है, जिसमें कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया दीदी, आप ही के नाम का पत्र है और आप ही की प्रस्तुति थी, ये इन्हें बहुत अच्छी लगी, इसके लिए भी ये बधाई लिख भेजते हैं। 16 जून को मानस तिवारी द्वारा प्रस्तुत रजनीगंधा कार्यक्रम जो रात शीर्षक पर केंद्रित था गजब लगा, इसके लिए इन्हें बधाई। 17 जून को हमारे प्रिय मदन भैया द्वारा प्रस्तुत ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम भी मजेदार लगा, इसके लिए बधाई। और 18 जून को सुबह 7:30 बजे प्रिय अपेक्षा दीदी द्वारा प्रस्तुत सदाबहार नगमे अति सुंदर लगा, इसके लिए भी ये बधाई प्रेषित करते।
0: तारीफ के जितने शब्द हमारे श्रोताओं के पास है ना अंतरा, उतने हमारे खजाने में नहीं है। इतने सारे अलग अलग ढंग के शब्दों से हमारी तारीफ होती है कि दिल एकदम गदगद हो जाता
1: बिल्कुल।
0: है। तो पत्र के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। लगातार सुनते रहिए, जुड़े रहिए, बहुत सारा एक टीम वर्क है। एक कार्यक्रम की प्रस्तुति के पीछे बहुत लोग रहते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग वाले हों, प्रोग्राम वाले हों, सब मिलाकर प्रस्तुतकर्ता के साथ जुड़े हुए सारे लोगों तक ये बधाइयां जा रही हैं। तो पत्र के लिए आपका भी धन्यवाद देते हैं। और ये अगला पत्र आया है रसेड़ा से, मुरलीधर साहू।

0: लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति और दिकेश साहू का। 17 तारीख का हेलो आपकी पसंद इन्हें भी बहुत अच्छा लगा। मेरी पसंद के गीत सुनवाने के लिए मैं बधाइयां दे रही हूँ, मतलब इनका फोन कॉल शामिल हो गया था, क्या बात है। 14 तारीख का ग्राम सभा आप मन के गीत कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, राजू भैया को बधाई दे रहे हैं। 18 तारीख का माटी के स्वर कार्यक्रम और आपकी पसंद बहुत अच्छा लगा, अपेक्षा को भी बधाई दे रहे हैं। और पत्र के लिए आपको भी ढेर सारा धन्यवाद।
1: बिल्कुल, और ये एक हमेशा की तरह रंग बिरंगा सजा हुआ पत्र आया है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहले तो इन्होंने शुभकामनाएं और बधाई लिख भेजी है। लिखने वाले हैं तेलीपारा बिलासपुर से रजन साहू, छन्नूलाल श्रीवास, सुशील देवांगन और SN प्रजापति। इन्होंने सिलसिलेवार लिखा है कार्यक्रमों के विषय में। 15 जून को यादों के झरोखे से इस कार्यक्रम में अपेक्षा शर्मा जी की प्रस्तुति अच्छी लगी। तुहर गोट हमर गीत कार्यक्रम में मदन पांडे जी की प्रस्तुति अच्छी लगी, बधाई प्रेषित करते हैं। 16 जून को फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में मानस तिवारी जी की प्रस्तुति अच्छी लगी। 17 जून को हेलो आपकी पसंद कार्यक्रम में संज्ञा टंडन की प्रस्तुति अच्छी लगी। और 18 जून को माटी के स्वर कार्यक्रम में अपेक्षा जी की प्रस्तुति फिर से इन्हें बहुत अच्छी लगी। सभी प्रस्तुतकर्ताओं को इन्होंने बधाई प्रेषित की है।
0: सच बात है, और इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी है, हम भी सभी श्रोताओं को बधाइयां तो देते ही हैं, लेकिन अनुरोध और अपेक्षा यही करेंगे कि आप भी जैसे नहाते हैं, ब्रश करते हैं, हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा योग भी बन जाए। जिस दिन ये हमारे जीवन में ऐसे ही शामिल हो जाएगा, उस दिन हमको इसका फायदा मिलने लगेगा और आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, एक सर्वांगीण विकास का रास्ता योग से निकल कर आ जाता है। तो पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में आज योग का जो डंका चल रहा है और ढिंढोरा पिट रहा है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने इसका प्रचार किया, बल्कि सदियों से इसके फायदे को महसूस करके ये समझ में आ गया है कि इसके अलावा और कोई विधि नहीं जो सर्वांगीण विकास के लिए इतनी उपयोगी हो।
1: बिल्कुल,
0: तो हमें इसका फायदा उठाना है। और ढेर सारे पत्रों को आज के इस कार्यक्रम में शामिल तो कर लिया है, समय भी चलने का संकेत दे रहा है। पहले अपने श्रोताओं का आज का पता बता दें ताकि आगे भी बहुत सारे ईमेल हमें मिले।
1: बिल्कुल, हमारा पता है पत्र ईमेल bsp@gmail.com।
0: और पोस्ट कार्ड भेजने का पता है
1: कार्यक्रम चिट्ठी मिली द्वारा के निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 49, नूतन कॉलोनी, सरकंडा, आकाशवाणी बिलासपुर। पिन कोड नंबर है 495006।
0: क्या बात। और जैसी की कामना है अच्छे स्वास्थ्य की, सब अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें, ध्यान रखें। और इंतजार है बारिश का, तो वो समय पे आए और किसानों को इतनी बारिश दे के उनका काम अच्छे ढंग से सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। आज के इस कार्यक्रम को इन्हीं अच्छी कामनाओं के साथ हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी श्रोताओं को सुप्रिया
1: और अंतरा का नमस्कार।

0: पत्रोत्तर कार्यक्रम चिट्ठी मिली अभी हम प्रसारित कर रहे थे। प्रस्तुति थी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन और अंतरा चक्रवर्ती की। FM एंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:15 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से हम रिले करेंगे 19 शासकीय भर्ती परीक्षाएं पास कर अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाली चारू पांडे से विशेष भेंटवार्ता।
1: शासकीय भर्ती परीक्षा पास कर अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाली चारू पांडे से विशेष भेंटवार्ता। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर की।

श्रोताओं नमस्कार। हमारे इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं रीना त्रिपाठी। श्रोताओं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा अक्सर कहा जाता है। लेकिन इस पंक्ति को छत्तीसगढ़ की एक होनहार बेटी चारू पांडे ने अपने जुनून से सच साबित कर दिया है। महज 23 साल की उम्र में चारू ने वह कर दिखाया है जिसका सपना लाखों एस्पिरेंट्स देखते हैं। उन्होंने एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और पुलिस समेत कुल 19 सरकारी भर्ती परीक्षाएं पास कर एक मिसाल कायम की है।

0: रायपुर जिले के तुलसी तिल्दा की रहने वाली चारू आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। उनकी सफलता यह साबित करती है कि दृढ़ संकल्प, मेहनत और सही रणनीति के साथ कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उनकी उपलब्धियों की चर्चा अब सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में हो रही है। और श्रोताओं, चारू इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम उनकी उपलब्धियों और उससे जुड़े संघर्ष के बारे में उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। चारू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी, थैंक यू।
0: चारू, सबसे पहले तो आपको बधाई आपकी उपलब्धियों के लिए। चारू, 23 साल की उम्र है आपकी। इस उम्र में आपने SSC, बैंकिंग, रेलवे और पुलिस समेत कुल 19 सरकारी भर्ती परीक्षाएं पास करके एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। आप अपनी इस उपलब्धि को किस तरह देखती हैं और क्या आपको कोई सम्मान भी मिलने वाला है इसके लिए?
1: जी, मुझे अभी राष्ट्रपति जी से सम्मान मिलने वाला है एट होम पे 15 अगस्त को। इस उपलब्धि को बस मुझे देख के खुशी होती है क्योंकि मैंने भी कभी ये इमेजिन नहीं किया था कि मैं इतने सारे एग्जाम्स क्लियर कर पाऊंगी।
0: चारू, 19 प्रतियोगी परीक्षाएं पास करना एक बड़ी उपलब्धि है। आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया था?
1: जी, एक्चुअली मुझे मतलब सोची नहीं थी कि कभी इतने सारे एग्जाम्स दूंगी, क्रैक करूंगी। बट ये था मुझे कि एक मुझे अच्छे डिपार्टमेंट पे जाना है। मेरा ड्रीम था कि मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही जाना है, या मैं कोई भी एग्जाम से जाऊंगी फाइनेंस डिपार्टमेंट ही चूज करना था।
0: जी
1: फिर किसी का रिजल्ट पहले आता था, किसी का रिजल्ट बाद में, इसलिए मैं सारे फॉर्म्स डालते जाती थी,
0: जी
1: सारे एग्जाम्स देते गई बस।
0: तो आपका लक्ष्य क्या था?
1: मेरा लक्ष्य यही था कि मैं किसी भी स्टेट जॉब हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, बस मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाना है, यही मेरा एम
0: मतलब
1: था।
0: आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट
1: हाँ,
0: में ही काम
1: फाइनेंस
0: करने का
1: डिपार्टमेंट
0: शुरू
1: में।
0: से मन था।
1: जी
0: जी चारू, आपने कौन कौन सी प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं? इनमें से कौन सी सफलता आपके लिए सबसे यादगार रही?
1: हाँ, एक्चुअली मैंने SSC के जितने भी एग्जाम्स क्लियर किए
0: जी
1: वो मेरे लिए एकदम ड्रीम कम्स ट्रू जैसा था,
0: जी
1: क्योंकि मैं एग्जाम्स देने के लिए जाती थी, तब मैंने ये एग्जाम देखा था जिसपे एकदम मतलब टाइम इतना कम हमारे पास,
0: जी
1: इतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे।
0: जी
1: फिर जब ये क्लियर हुआ तो बहुत अच्छा भी लगता था। उसके बाद जो मेरा ड्रीम जॉब था फाइनेंस डिपार्टमेंट में, जैसे कि मुझे ऑडिट डिपार्टमेंट में जाना था,
0: जी
1: सो मुझे SSC CGL के थ्रू ही उस डिपार्टमेंट पे मुझे हुआ,
0: जी
1: सो इसलिए SSC के सारे एग्जाम्स मेरे लिए बहुत वो है।
0: जी चारू, अभी आप कहाँ पोस्टेड हैं?
1: जी, एक्चुअली अभी मेरी पोस्टिंग SSC CGL के थ्रू हुई है। मेरी पोस्टिंग
0: जी
1: चेन्नई में है एज एन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर।
0: जी चारू, हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई करने की दिनचर्या क्या रहती थी? आपने किस तरह से तैयारी की?
1: जी, एक्चुअली मेरा एक टारगेट रहता था
0: जी
1: कि मुझे इतने टॉपिक्स एक दिन पे कवर करना है, तो वो जितना भी टाइम लगे मैं वो कवर करती थी। एक्चुअली रात को सोने में वही 12-1 बज जाती थी
0: जी
1: और मुझे सुबह 4 बजे उठना होता था।
0: जी
1: तो जैसे कि अब हम फोन पे अलार्म सेट करेंगे, क्या
0: जी
1: होती है वो हम ऑफ करके सो जाते हैं, इसलिए मैं अलार्म सेट नहीं करती थी। मेरी नानी थी, वो
0: अच्छा
1: मुझे डेली 3:40 में कॉल करके उठाती थी, क्योंकि
0: अच्छा
1: नानी का कॉल ऐसा रहता था, एक बार आप कट किए या नहीं उठाए तो वो बार बार कॉल करती थी,
0: अच्छा
1: तो उनका सबसे
0: तो वो
1: बड़ा
0: एक
1: वो
0: कॉल उनका
1: था।
0: अलार्म की तरह ही था
1: हाँ,
0: आपके
1: अलार्म की
0: लिए,
1: तरह ही था
0: तो उनकी
1: मेरे
0: बहुत
1: लिए।
0: बड़ी भूमिका है
1: हाँ,
0: इसमें।
1: बहुत बड़ी है
0: तो आप किस
1: जी।
0: तरह से पढ़ाई करती थी? दिन भर आपका शेड्यूल क्या होता था?
1: दिन भर एक्चुअली स्टार्टिंग के 3-4 मंथ्स तो मैं कोचिंग भी जाती थी, तो 7 to 10 मेरी कोचिंग होती थी।
0: जी
1: फिर कोचिंग से आने के बाद मैं पढ़ाई करती थी। जब ऐसा होता था कि रूम में पढ़ाई का मन नहीं होता था तो मैं लाइब्रेरी चले जाती थी, क्योंकि लाइब्रेरी पे ज्यादा अच्छे से पढ़ाई होती थी। अगर
0: जी
1: आप वहां नींद आएगा तब भी आप सब सबको देखोगे पढ़ते हुए, तो खुद को लगता था कि
0: और थोड़ा
1: पढ़ना है।
0: कंसंट्रेशन भी बना रहता
1: हाँ
0: है लाइब्रेरी में
1: जी,
0: ना।
1: इसीलिए फिर मैं लाइब्रेरी चले जाती थी, फिर थोड़ा ऐसे माइंड फ्रेश करने के लिए एकाग्र राउंड ऐसे ही घूम के फिर आके रूम में पढ़ाई करती
0: तो
1: थी।
0: पूरा दिन आप पढ़ते रहते थे?
1: हाँ, ऑलमोस्ट मतलब 7 मंथ्स जब तक मैं थी बाहर PG में, उस टाइम बस
0: जी
1: पूरा पढ़ाई ही की मैं।
0: यह भी बताएं कि अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपने कौन सी रणनीति अपनाई?
1: जी, एक्चुअली SSC में देखेंगे या रेलवे में देखेंगे, इस दोनों में सबसे कॉमन चीज होती है टाइमिंग,
0: जी
1: क्योंकि जितना जल्दी हम जितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए वो। दूसरी बात ये है कि इसमें हम लोगों को पहले ये समझना जरूरी होता है कि क्या क्वेश्चन हमें छोड़ना है,
0: जी
1: क्योंकि जो टाइम टेकिंग वाली क्वेश्चंस रहती है उसको हमें स्किप करना रहता
0: और
1: है।
0: किसी किसी में नेगेटिव मार्किंग्स
1: हाँ,
0: भी होती
1: निगेटिव
0: हैं।
1: मार्किंग्स भी होती है इस दोनों में ही, तो फिर वही मेन चीज समझना होता है कि क्या क्वेश्चंस हमें छोड़ना है।
0: जी
1: उसके लिए मैंने बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट दिए वो
0: जी
1: समझने के लिए। सिलेबस में मुझे ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा, किसी में कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा ऐड होती थी, किसी में कुछ टॉपिक्स कम होती थी।
0: जी
1: ये मतलब रेलवे के लिए मैं एक्स्ट्रा 2 आवर्स टाइम देती थी, क्योंकि उसमें
0: जी
1: थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाई करना होता था, बस बाकी एसएससी के

0: ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा, बस इसी के सिलेबस से हो गई वो फिर।
1: चारू, इस वक्त आपको बहुत सारी युवा श्रोता सुन रहे हैं, तो आप उन्हें समय प्रबंधन को लेकर क्या सुझाव देना चाहेंगी?
0: देखिए, इसका एक ही है कि एक दिन का आप टारगेट बना के रखिए कि इतना पढ़ना ही है।
1: जी
0: कभी भी हम लोग टाइम टेबल सेट करेंगे, उस टाइम टेबल पे हम लोग कभी पढ़ाई नहीं कर सकते।
1: जी
0: इसीलिए एक मतलब रखेंगे कि इस दिन पे मुझे इतने टॉपिक्स कवर करनी है। अभी पढ़ने का मन नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद कर लो, लेकिन जब तक वो टॉपिक्स कवर ना हो तब तक सोना नहीं है।
1: जी
0: तो वो सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट होगा, तो वो अच्छा होता है उससे। फिर सबसे ज्यादा मेरे काम वही आई।
1: क्या आपने कोई कोचिंग का सहारा लिया था या स्व अध्ययन पर ही भरोसा किया?
0: एक्चुअली अभी जितने भी एग्जाम्स किया मैंने, उसका कोचिंग मैंने नहीं किया। मैं सोशल मीडिया से पढ़ाई करती थी। सोशल मीडिया पे अलग अलग टीचर्स होते हैं, वो लोग सारे रील्स डालते थे, तो उनकी
1: जी
0: हेल्प से फिर मैंने पढ़ाई किया।
1: चारू, आजकल सोशल मीडिया का दौर है और जो लोग टॉप करते हैं या कोई बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं पास करते हैं, उन्हें अक्सर यह कहते सुना जाता है कि पढ़ाई के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूरी बनाई हुई थी। तो आपने किस तरह से सोशल मीडिया और पढ़ाई के बीच में सामंजस्य बिठाया?
0: जैसे कि उस पे मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ भी क्लियर किया हुआ है,
1: जी
0: जिसका नोट्स मैंने सोशल मीडिया से मैंने वो खरीदा, टॉपर्स का नोट्स। तो वो नोट्स और प्रीवियस ईयर सॉल्व करके ही मैंने यूजीसी नेट क्रैक किया। देखिए, जैसे कि वो ऐसा कंटेंट शो करते हैं सोशल मीडिया जिसपे हम इंटरेस्ट करेंगे।
1: जी
0: अगर एक बार हम स्टडीज वाला चीज देखेंगे तो वो हमें बस वही वही शो करेंगे,
1: हाँ जी
0: तो वो और अच्छे अच्छे सजेशन देके वो हमें और अच्छे अच्छे वीडियो सजेस्ट करते हैं, जिससे बहुत हेल्प होता है। तो जैसे कि अब जब हम पढ़ाई का ही देख रहे हैं, तो जब भी हम खोलेंगे सोशल मीडिया, पूरा हमें वही सब ही दिखाएगा, तो फिर डिस्ट्रेक्शन की तो बात ही नहीं है।
1: तो मतलब वो
0: जी
1: आपके लिए हेल्पफुल रहा,
0: जी
1: आपकी
0: बहुत
1: तैयारी
0: हेल्पफुल
1: के लिए।
0: रहा। जी
1: जी चारू, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती क्या रही?
0: नहीं, बस थोड़ा थोड़ा बीच बीच पे डिमोटिवेशन होता था कि कर
1: जी
0: पाऊंगी या नहीं,
1: जी
0: बाकी और कुछ दिक्कत नहीं हुआ। ऐसा कुछ होने से पेरेंट्स होते थे मतलब मोटिवेट करने के लिए वो लोग।
1: चारू, क्या आपको याद आता है कभी ऐसा भी समय आया हो जब आपको निराशा का सामना करना पड़ा हो? और अगर हाँ, तो उससे आप कैसे उभरी?
0: मुझे निराशा का सामना तभी करना पड़ता था जब मैं मॉक टेस्ट देती थी और मार्क्स
1: जी
0: कम आते थे।
1: जी
0: तो मतलब ऐसे ही देखते देखते मतलब पता चला, भी हमारे पास सबसे ज्यादा एआई का यूज करते हैं हम,
1: जी
0: तो वहां से मैंने एनालिसिस किया, तो एआई मेरे बहुत ज्यादा हेल्प किया। मतलब वो बताता था कि मैं कैसे मिस्टेक्स कर रही, कैसे इम्प्रूव करना है। तो अगर सबसे ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिला है तो
1: जी
0: एआई से मिला है।
1: आपने जो उपलब्धि हासिल की है, उसमें आपके परिवार और शिक्षकों की क्या भूमिका रही?
0: शिक्षकों की भी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि जितना भी मैंने उनसे पढ़ा उसी से ही जाके मैं पूरा सीखी। फैमिली फैमिली से मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, 100% सपोर्ट मिला।
1: जी
0: जो भी पढ़ना चाहती थी, जहां भी रह के पढ़ना चाहती थी, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मुझे। सबसे ज्यादा सक्सेस पे मेरा मतलब देखेंगे तो मेरे फैमिली से ऑलमोस्ट सारे टीचर्स, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंड मदर, सारे टीचर्स पैटर्नल देखेंगे या मैटर्नल देखेंगे, तो सबसे ज्यादा उनका वो रहा। मेरे दादा स्वर्गीय श्री हीरालाल पांडे जी,
1: जी
0: वो भी टीचर थे। जो मेरे नाना जी थे मतलब
1: जी
0: स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर तिवारी जी,
1: जी
0: मतलब उनका शुरू से बिलीव था मेरे ऊपर। जब मैं छोटी थी तब से ही वो मुझे बोलते थे मेरी अफसर बिटिया, वो
1: जी
0: तब से ही बहुत बिलीव था उनको मेरे ऊपर कि मैं जाके आगे कुछ ना कुछ
1: तो
0: अच्छा
1: आपने अफसर
0: करूंगी।
1: बन के दिखा दिया। और
0: जी
1: फ्रेंड्स का क्या रोल रहा आपके जीवन में?
0: फ्रेंड्स का बहुत अच्छा रोल था। मतलब जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, जब मुझे ये हुआ कि मुझे कोचिंग करना है, मतलब
1: जी
0: ये अब देखेंगे छत्तीसगढ़ पे सबसे ज्यादा कोचिंग होती है सीजीपीएससी की,
1: जी
0: तो मैंने बोला कि मुझे सीजीपीएससी की कोचिंग करनी है। तो तब दो फ्रेंड्स थे मेरे, वो मेरे साथ घूम घूम के पूरे डेमो अटेंड करते थे। फिर
1: अच्छा
0: जब मैंने बोला कि मुझे पीजी पे शिफ्ट होना है, उन्होंने पूरा मेरे लिए अच्छा सा पीजी ढूंढा। फिर अब पीजी पे रह रहे तो ऑब्वियसली हम लोगों को टिफिन सर्विसेज चाहिए होगी,
1: जी
0: सारा अरेंजमेंट्स वो लोग करते थे।
1: चारू, आज के युवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर काफी दबाव रहता है, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगी?
0: मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आज की डेट पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोगों को काम नहीं मिलेगी,
1: जी
0: कोई वर्क नहीं है। आज की मतलब इतने सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम, तो ऐसे निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स भी देखेंगे तो स्टेट सेंट्रल इतनी सारी होती है,
1: जी
0: अगर हम अच्छे से टारगेट करके मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ सक्सेस मिलेगा। अगर एक अटेम्प्ट में नहीं मिल रहा, 2 में नहीं, लेकिन वो मिलेगा फ्यूचर में कुछ ना कुछ। मतलब बस ये कहना चाहती हूँ कि एक एग्जाम में ना रहे वो, जैसे कि
1: ऑप्शंस बहुत
0: हाँ
1: अवेलेबल
0: उसके
1: हैं,
0: सिमिलर ऑप्शंस होते हैं उस पे वो ट्राई करना चाहिए उनको।
1: डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते
0: जी
1: हैं आजकल के
0: वही,
1: बच्चे और युवा जो
0: जी
1: हैं।
0: जी उनको बस वही है कि जो सिमिलर सिमिलर है उस पे भी ट्राई करते रहना चाहिए।
1: जी ऑप्शंस देखने
0: हाँ
1: चाहिए।
0: ऑप्शंस देखने चाहिए।
1: यदि आपको अपनी सफलता का मंत्र एक वाक्य में बताना हो, तो वह क्या होगा?
0: देखिए, उसके लिए तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, जितना पढ़ रहे उतना
1: जी
0: अच्छे से करे, सारा कंप्लीट करने के चक्कर

0: कर में पूरा वो खराब ना करें, जो पढ़ रहे हैं उसको 100% दें। 80% कंप्लीट कर लिया बाद में भूल जा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पढ़ रहे हैं वो ऐसा पढ़े कि दोबारा रिवीजन करने की भी जरूरत ना पड़े उनको। ऐसे धीरे धीरे फिर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद उनसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा वो मॉक टेस्ट दें, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से हर बार हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा।
1: और कुछ लोग ऐसा दिखने में आता है कि पढ़ते बहुत ज्यादा हैं लेकिन रिजल्ट जो होता है उनके अनुसार नहीं आता है, और
0: जी
1: कुछ लोग कम समय में भी पढ़कर अच्छा
0: जी
1: बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं, तो
0: जी
1: वो किस तरह कर पाते हैं?
0: देखिए,
1: जी
0: जैसे कि मैंने आपको बताया, पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है हम लोगों को।
1: जी
0: जो लोग ज्यादा टाइम तक पढ़ते हैं उनको देखेंगे आप, उनका स्ट्रेटेजी, तो वो लोग पूरे सिलेबस कंप्लीट करते हैं। लेकिन हमें स्मार्ट स्टडी करना है, जो पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ना है। देखिए, हमारे पास ब्लूप्रिंट्स होती है, पता
1: जी
0: चल जाती है कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा, तो बस वो सब फॉलो करके हमें पढ़ना चाहिए। रीजनिंग होती है, मैथमेटिक्स होती है, इसको जितना ज्यादा अच्छे से समझे हम वो उतना अच्छा है।
1: चारू, किसी भी परीक्षा का परिणाम आने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती थी? क्योंकि आपने कई परीक्षाएं पास की हैं, तो जब किसी का परिणाम आता था तो आपके मन में क्या बात आती थी कि बस हो गया या दूसरी परीक्षा की तैयारी करना है?
0: ऑलमोस्ट पैरेलली सबके रिजल्ट्स आते गए,
1: जी
0: तो ये था कि मतलब कोई से भी एक जॉब पे मुझे करना है, जो भी बेस्ट होगा उस पे ज्वाइन करना है मुझे। तो मतलब किसी का रिजल्ट पहले आया, किसी का लेट से आया। तो रेलवे पे जो मेरी पोस्टिंग हुई उदयपुर पे,
1: जी
0: तो स्टेशन मैनेजर पे पोस्टिंग हुई, तो जब मैं उस टाइम इस पे ज्वाइन कर ली थी, मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर पे, तो उस पे मेरा ज्वाइन करने का बहुत मन था। तब
1: जी
0: लगा कि ये छोड़ के वो ज्वाइन करती हूँ।
1: जी
0: बट जब मुझे पता चला कि उस पे मुझे स्टडी लीव नहीं मिल पाएगी,
1: जी
0: क्योंकि अभी मैं पीएचडी भी कर रही, सो वो फिर छोड़
1: तो
0: के फिर
1: अभी
0: वही।
1: आपका और लक्ष्य क्या है? अभी और आपको पढ़ाई करना है?
0: हाँ, एक्चुअली अभी मैं पीएचडी कंप्लीट करना चाहती हूँ, उसके
1: जी
0: बाद जैसे कि टाइम मिली तो फिर आगे एमफिल वगैरह करने का सोचा है मैंने।
1: तो अभी और भी प्रतियोगी परीक्षाएं देने का मन है आपका?
0: नहीं नहीं अब
1: तो आप
0: नहीं।
1: संतुष्ट हैं?
0: हाँ, मैं
1: जब कोई
0: संतुष्ट हूँ।
1: रिजल्ट आता था तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती थी?
0: मैं तो सबसे पहले पापा से वो शेयर करती थी। मैं को इतनी खुशी नहीं होती थी, बस पापा मम्मी की खुशी देख के मुझे बस वो खुशी होती थी। बस मुझे लगता था कि निकल गया एग्जाम, बस यही होता था।
1: जी, बहुत सारे युवा श्रोता आप इस समय आपको सुन रहे हैं प्रदेश भर से, आप उन्हें अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं बस उनसे यही कहना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो, बस कोशिश करते रहे। क्योंकि जितना हम मेहनत करेंगे, जैसे कि एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। वो क्लियर नहीं हुआ कुछ रीजन से, तो बस उस पर जाके देखे कि वो क्लियर क्यों नहीं हो पाया, कहाँ पे उनसे मिस्टेक हो रहा, और उस पर थोड़ा सा हार्डवर्क करके नेक्स्ट अटेम्प्ट दे। वो डीमोटिवेट बस ना हो।
1: चारू, अंत में एक बार आपको हमारे पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से पुनः बधाई। आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने श्रोताओं को अपने जीवन और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी कई सारी जानकारियां साझा की, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: तो श्रोताओं, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, अब हम आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।

आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अभी हम रिले कर रहे थे 19 शासकीय भर्ती परीक्षाएं पास कर अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाली चारू पांडे से विशेष भेंटवार्ता। एफएम एंड 103.2 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है और अब लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। श्रोताओं, भारतीय शास्त्रीय संगीत की मधुर और मनमोहक प्रस्तुति में संतूर वादन की दुनिया के विख्यात कलाकार पंडित भजन सोपोरी द्वारा संतूर पर प्रस्तुत है राग मिश्र पीलू में निबद्ध दादरा। राग मिश्र पीलू अपनी कोमल भावनाओं, श्रृंगार और लोक संगीत की मिठास के लिए जाना जाता है, वहीं दादरा ताल इसकी मधुरता को और भी आकर्षक बना देती है। संतूर के झंकारते स्वरों में सजी ये प्रस्तुति आपके मन को भाव विभोर कर देगी। तो आइए सुरों की इस मनोहारी यात्रा का आनंद लें और सुनते हैं पंडित भजन सोपोरी के संतूर पर राग मिश्र पीलू दादरा।

0: अभी आप सुन रहे थे संतूर के प्रख्यात वादक पंडित भजन सोपोरी द्वारा प्रस्तुत राग मिश्र पीलू का मधुर दादरा। संतूर के सुमधुर स्वरों से सजी ये प्रस्तुति निश्चित ही आप सभी श्रोताओं को आनंद और सुकून का अनुभव करा गई होगी। और अब इसी के साथ कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 हुए हैं। समाचार अब आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर

0: फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021, वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी, फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट

0: दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
1: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation at the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
0: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंट कोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंच ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027

0: इसमें शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गुर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया। तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
3: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं।

0: विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सुभद्रा रामचंद्रन विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at VivaTech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Education Minister Dharmendra Pradhan chairs high-level review meeting to assess preparations for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. Iranian President Masoud Pezeshkian describes newly signed MOU between Iran and US as a historic document. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. And Meenakshi Hooda advances to quarterfinals of World Boxing Cup 2026 in China. 4 Indian boxers to be in quarterfinal action tomorrow. Prime Minister Narendra Modi today projected India as a global hub of innovation and technology while addressing

अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में आप सुन रहे हैं तुमको ना भूल पाएंगे फिल्म से ये गाना, सलीम बिजनौरी के बोल, डब्बू मलिक का संगीत।

0: इसी गीत के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। फिल्म संगीत संसार में कई ऐसे संगीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में नहीं की, लेकिन जो फिल्में की उनके जरिए फिल्मी गीतों की दुनिया में अपनी गहरी और बुलंद पहचान बनाई है। ऐसे कम चर्चित संगीतकारों की एक लंबी फहरिस्त है। इनका काम अपनी क्वालिटी की वजह से ज्यादा जाना जाता है, क्वांटिटी की वजह से नहीं। और ऐसे ही संगीतकारों की फहरिस्त में नाम आता है फिल्म जगत के नामी संगीतकार दान

डांसिंग का जन्म जयपुर में सन 1927 में हुआ था। कहते ये हैं कि उनके पिता एक अध्यापक थे और ख्याल गायकी में भी अपना दखल रखते थे। जाहिर है कि संगीत डांसिंग के खून में था। उन्हें खेमचंद प्रकाश के रूप में संगीत के अपने गुरु मिल गए और हुआ ये कि खेमचंद प्रकाश के साथ उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। तकरीबन 1.5 बरस बीत गया। डांसिंग खेमचंद प्रकाश के पास रियाज करते चले जाते और खेमचंद प्रकाश सिर्फ और सिर्फ राग भैरवी की प्रैक्टिस करने को उनको कहते। हुआ ये कि एक बार वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या मामला है कि आप लगातार मुझे एक ही राग की प्रैक्टिस करवाते चले जा रहे हैं। तब खेमचंद प्रकाश ने ये कहा था कि संगीत की ये साधना बहुत लंबी खिंचती है। उन्होंने अपने एक शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने भैरवी सीखनी शुरू की तो अब 8 साल हो गए हैं और वो लगातार सीखते चले जा रहे हैं। खेमचंद प्रकाश को पता था कि डांसिंग की प्रतिभा

आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि दान सिंह ने अपना करियर संगीत की दुनिया में आकाशवाणी जयपुर से शुरू किया था। बाद में जब उन्हें ये लगने लगा कि उन्हें ऊंचे आकाश की जरूरत है, अपने आयाम फैलाने की जरूरत है, तो वो मुंबई आ गए थे। थोड़े दिन तक वो खेमचंद प्रकाश के सहायक भी रहे और उन्हें इस समय में कुछ फिल्मों के ऑफर भी मिले, जैसे रेत की गंगा नाम की एक फिल्म उन्हें ऑफर की गई। ये अलग बात है कि ये फिल्म बन नहीं पाई। सन 1965 में दानसिंह को जेपी शर्मा की फिल्म मिली भूल न जाना। गोरा गोरा

ये है कि फिल्म भूल न जाना भारत और चीन युद्ध पर बनी थी। दान सिंह ने बड़े मन से इस फिल्म के गाने तैयार किए थे और बहुत ही कमाल का संगीत था फिल्म भूल न जाना का।

0: आया है।
1: यहाँ आपको बता दें कि असल में B.N. शर्मा जिन्होंने भूल न जाना का निर्माण किया था, वो फ्लैट में दान सिंह के साथ ही रहा करते थे। दिलचस्प बात

फिल्म भूल न जाना, ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई इसलिए दान सिंह की उड़ान को वो आकाश नहीं मिल पाया जिसके दान सिंह हकदार थे। पर इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ी एक घटना आपको बताते हैं। सन 1964 मुंबई में ताड़देव का एक स्टूडियो, गीता दत्त दान सिंह का एक गाना गा रही हैं। ये वो समय है जब गीता दत्त की जिंदगी में, उनकी निजी जिंदगी में तूफान आया हुआ है, रिश्तों में दरार आ रही है और गीता दत्त ये गाना गा रही हैं।

गायने गाते गाते अचानक गीता दत्त की रुलाई फूट पड़ती है। रिकॉर्डिंग के बीच में वो सुबकने लगती हैं। एकदम स्टूडियो के माहौल तनाव से भर जाता है। दरअसल डांसिंग का ये गीत गीता दत्त के दिल पर बहुत भारी पड़ा है। जरा सोचिए, इतना गहरा था डांसिंग के संगीत का असर। भूल ना जाना के अलावा डांसिंग ने फिल्म माय लव में संगीत दिया। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर के अभिनय वाली ये फिल्म असल में डांसिंग के गानों के लिए ही याद की जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में डांसिंग के सहायक के रूप में लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन और प्यारेलाल ने वायलिन बजाई। पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर बजाया इस फिल्म के गानों में और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने बांसुरी बजाई। यही नहीं, मनोहरी सिंह का सैक्सोफोन भी फिल्म माय लव के गानों की शान है। जरा सोचिए, इतने बड़े नाम जुड़े थे इन गानों की रिकॉर्डिंग में। आगे चलकर शिव हरि की जोड़ी

इन संगीत के संगीतकारों की सरताज तो बनी ही। पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने संतूर और बांसुरी की स्वर लहरियों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, देश और दुनिया में नाम कमाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी तो हिट फिल्में देने वाली एक बेमिसाल संगीतकार जोड़ी बनी, और सेक्सोफोन के सरताज मनोहारी सिंह को भला कौन नहीं जानता। फिल्म माय लव के गानों की बात चल रही है, तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं।

जैसा कि हमने कहा कि डांसिंग फिल्म संगीत की दुनिया में जब बहुत ज्यादा नाम नहीं कमा पाए तो वो रेडियो से जुड़ गए थे। युवावस्था में उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत की कविता को संगीतबद्ध किया था और मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उन्हें गले लगा लिया था। डांसिंग बहुत ही गुणी संगीतकार थे, पर उन्होंने केवल 4 फिल्मों में संगीत दिया, माय लव, तूफान, बवंडर और भोभर। कुछ ऐसे संगीतकार होते हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पाता। हम संगीत के प्रेमी बस इसी विकलता में रह जाते हैं कि आखिर ऐसी प्रतिभाओं को और मौके क्यों नहीं मिले, ताकि हमें मिल सकते थे कुछ और बेमिसाल गाने। फिल्म भूल न जाना का मुकेश का गाया ये गाना सुनिए और दान सिंह की प्रतिभा की वानगी देखिए।

अफसोस, 18 जून 2018 को 78 बरस की उम्र में दानसिंह ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गए तो बस उनकी कहानी और उनकी

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था बेमिसाल संगीतकार दान सिंह पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। जिंदगी की भीड़ में बहुत से चेहरे मिले, मगर सुकून कहीं नहीं मिला। फिर तुम मिले और लगा जैसे भटकते हुए दिल को अपना किनारा मिल गया हो। अब हर मुश्किल आसान सी लगती है, क्योंकि तुम्हारा साथ मेरे साथ है। तुम मिल गए हो, बस अब और किसी सहारे की जरूरत रही ही नहीं।

तुम चाहे जितनी दूर चले जाओ, चाहे दुनिया की हर राह आजमा लो, दिल को सुकून आखिर मेरे पास आकर ही मिलेगा। क्योंकि कुछ रिश्ते दूरी से नहीं टूटते, वो हर मोड़ पर एक दूसरे को पुकारते रहते हैं। तुम्हारे कदम कहीं भी ठहर जाएं, मगर लौट कर आना तुम्हें मेरे पास ही है।

वो खफा क्या हुए, जैसे मेरी दुनिया ही खामोश हो गई। न बातों में पहले जैसी रौनक रही, न मुस्कुराने का कोई बहाना मिला। हर वक्त बस यही डर दिल में रहा कि कहीं उनकी नाराजगी उन्हें मुझसे दूर ना कर दे। अब तो हालत ये है कि उनकी एक मुस्कान के लिए दिल हर पल दुआएं मांगा करता है।

0: सी है, हर बात में कोई ना कोई शरारत छुपाई रखती है। कभी यूं ही बिना बात मुस्कुरा देती है, तो कभी छोटी छोटी बातों को लेकर अजीब सी बातें करने लगती है। उसकी आदतें कई बार समझ से बाहर लगती हैं, मगर वही अनोखापन उसे सबसे खास बना देता है। सच कहूं, उसकी ये नटखट अदाएं दिल को बार बार उसी का बना देती है।
1: अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूम घट तो जरा ओढ़ो अहमान का।

0: आह मानो कहा अब तुम हो जवां मेरी जान लड़कपन छोड़ो।
1: सावन की आहट क्या आई है, दिल फिर से पुराने ख्वाबों की बारिश में भीगने लगा है। हवाओं में जैसे तेरी यादों की खुशबू घुल गई हो और मन उसी एहसास में चुपके चुपके झूम रहा हो। तेरा ख्याल आते ही ये बेचैन दिल अब कहीं ठहरता ही नहीं, कभी इस राह पर निकल पड़ता है, कभी उस दिशा में खो जाता है। सच तो ये है कि मोहब्बत में पड़ा ये दिल अब एक दीवाने बादल की तरह घूम रहा है।

0: चुपके चुपके कोई ख्वाबों में आने लगा है, बिना आवाज दिए दिल के दरवाजे पर दस्तक होने लगी है। न जाने कौन है, मगर उसका एहसास हर पल साथ रहता है। कभी यूं ही मुस्कान बनकर होठों पर ठहर जाता है, तो कभी बेचैनी बनकर दिल को मचलाने लगता है। लगता है जैसे कोई धीरे धीरे मेरी दुनिया में उतर रहा हो, और दिल उसके आने की आहट से ही धड़कने लगता है।
1: कौन है जो सब

0: प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलीहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।